ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:00 हिंदी में समाचार। 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9:00 हिंदी में समाचार। 9:02 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10:00 अंग्रेजी में समाचार। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9:00।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के नियंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तीन दिन के दौरे पर जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल

सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। हंगरी में आयोजित पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने घरेलू दावेदार बालाज फार्कस को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप का 10वां संस्करण आरंभ हो गया है। ग्रुप एक के आरंभिक मैच में थाईलैंड ने हांगकांग की महिला टीम को 6 रन से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मेरा नाम है ऋचा और लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम सुप्रभात। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और सैटरडे मॉर्निंग है, सुबह इतना सुहाना दिन की शुरुआत हो चुकी है। मानती हूँ कि वीकेंड की शुरुआत आज से ही हो जाती है और 2 दिन की छुट्टियां हैं, कल फेस्टिवल था, और ऐसे में लगातार आपको 3-4 दिन का रिलैक्स मिल जाए, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी गाने के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जुड़े रहिए 102.6 MHz ऋचा के साथ।

अब देखिए ना, कुछ दिन से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो ट्रैफिक है वो जगह जगह पर रुक जाता है, जलभराव हो जाता है और लोग शिकायत करते हैं कि भला ये बारिश होती ही क्यों है। कुछ समय पहले गर्मी थी तो लोग शिकायत कर रहे थे ये गर्मी ही क्यों होती है, और उससे पहले जब सर्दियां थी तो लोग कह रहे थे सर्दियां खत्म ही नहीं हो रही, न जाने गर्मियां कब आएंगी। एक फितरत है इंसान की कि उसकी शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। गर्मी है तो सर्दी का इंतजार, सर्दी है तो गर्मी का इंतजार, और गर्मी ज्यादा है तो बारिश का इंतजार, और बारिश होते ही फिर से शिकायतें कि कितना जलभराव हो गया। याद रखिए कि कोई भी सुविधा बिना परेशानी के थोड़ी आती है, कोई हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। फ्री में तो भला कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, है ना। तो जो कुछ आपके पास है और जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर आ रहा है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, उसके लिए थैंक्स रहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। और जब ग्रैटिट्यूड रखेंगे ना तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद पॉजिटिव साइंस भेजने लगेगा। तो अगर आपने भी अब तक थैंक यू नहीं बोला है तो थैंक यू कहने की आदत डाल लीजिए, और शुक्रगुजार रहिए इस दुनिया की कि जिसने आपको ऐसा खूबसूरत सा जीवन दिया है, आपको खूबसूरत से दोस्त दिए हैं, परिवार दिया है। मैं हूं ऋचा, आपके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

यह है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ ऋचा आपके साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, सुप्रभात। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति का बहुत ही खूबसूरत सा मकान था। नाम था उनका राम प्रसाद, और राम प्रसाद शहर की एक बहुत ही पॉश लोकेशन पर बहुत ही अच्छे से घर में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। लेकिन न जाने क्यों उनको धीमे धीमे उस घर में रहना खटकना लगा, और लगा कि ये घर इतने भी अच्छे लोकेशन पर नहीं है, शायद इससे अच्छी जगह पर हमें घर मिल सकता है। और ये सोचकर उन्होंने अपने घर को बेचकर किसी और अच्छी जगह पर जाने का मन बना लिया, अखबार में ऐड दे दिया, और अखबार में ऐड देने के बाद किसी से कॉन्टैक्ट किया अखबार वाले से, और कहा कि मुझे अपने घर का ऐड देना है। डिस्क्रिप्शन मांगी गई, उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन बताई कि घर यहाँ पर लोकेटेड है,

इस तरीके का है। और एड लिखने वाले ने एक खूबसूरत सा एड लिखकर अखबार में छाप दिया। जानने वाले सभी लोगों से कह दिया कि अपना घर बेच रहा हूं और जल्दी से मुझे एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छा सा फ्लैट बताइए, बताएंगे तो फिर जल्दी से इस घर को निकालकर दूसरा घर ले लिया जाएगा। और ये सोचकर रामप्रसाद के सभी दोस्त सभी रिश्तेदार इस काम पर लग गए कि जल्दी से उन्हें एक घर दिलवाना है। हालांकि सभी जानते थे मन में कि उनका घर अभी बहुत ही अच्छी जगह पर है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ख्याल था कि उन्हें और अच्छी जगह चाहिए। होती है ना हमारे अंदर ख्वाहिश कि जो कुछ होता है उस पर संतोष नहीं होता और हमें हमेशा लगता है कि हमें और बेहतर चाहिए, और यही प्रयास शायद रामप्रसाद जी का भी था। एक बार एक दोस्त का कॉल आया और रामप्रसाद जी से कहा कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैट तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है, जैसा तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसा है। रामप्रसाद एक्साइट हो गए और उन्होंने अपनी अपनी धर्मपत्नी जी को बुलाया और कहा कि देखो जरा कि ये विक्की का फोन आया है और ये बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फ्लैट हमारे हिसाब का मिला है। डिस्क्रिप्शन देनी शुरू की गई, बताया गया कि फ्लैट कहाँ पर स्थित है, कितना बड़ा है, एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है उसके टेरेस एरिया पर, साथ ही लोकेशन भी बहुत अच्छी है, हवादार कमरे हैं। और जब ये सब कुछ बताया गया तो रामप्रसाद और उनकी बीवी सुनकर खुशी से उछल पड़े, बोले यही तो हमारे सपनों का घर है जो हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन पर। अब बिना देर किए वो विक्की से बोले कि नंबर शेयर करो, हम आज ही जाकर इस घर को देख लेंगे और फाइनल कर देंगे। जैसे ही विक्की ने नंबर बताना शुरू किया और जैसे ही उस घर का एड्रेस दिया, पता लगा वो तो वही घर था जो उन जिसमें वो रह रहे थे, यानी उनका खुद का घर। और धीमे धीमे उन्हें रियलाइज हुआ ये बात सुनने के बाद कि हमारे पास तो हमारे सपनों का घर खुद है ही, हम यूं ही बेवजह प्रयास कर रहे थे। कई बार जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड करना, जो कुछ मिला है उसका शुक्र करना। तो जरा सोचकर देखिए कि जिन चीजों पर आज आप झल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका केवल टाइम वेस्टेज और यूं ही बेवजह की टेंशन है। इसलिए दोस्त मुस्कुराइए और ग्रैटिट्यूड करते रहिए, थैंक्स करते रहिए उन सभी चीजों के लिए जो आज आपके पास है। 102.6 MHz पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। इसके अलावा आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए न्यूज ऑन एयर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं ऋचा, प्रोग्राम सुनते रहिए। सुप्रभात।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ ऋचा। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप हमें। और याद दिला दूं आपको कि न्यूज ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से आप हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी सुन सकते हैं, साथ ही अपडेटेड रह सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमें बड़ी टेकन फॉर ग्रांटेड लगती हैं। जरा सोच कर देखिए कि सब कुछ देखा जाए तो हमें ईश्वर की कृपा से ही तो मिल रहा है, या ये कहें कि लक से ही तो मिल रहा है, ये जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खुली हवा भी नहीं है, क्योंकि उनके कंट्री में इतना पोल्यूशन है कि वो खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। ज़रा सोचिए कि जो हमारे घर में अन्न के भंडार भरे हुए हैं ये भी तो कृपा ही है। कितने लोग ऐसे हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं, जहाँ सिविल वॉर्स चल रही हैं वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, कितनी लोग ऐसे हैं जिन्हें आप देखेंगे कि जिनके तन पर कपड़े भी नहीं असीब होते। आपको एजुकेशन मिल रही है, आप खाना खा पा रहे हैं, आपके पास सर

पे छत है, उस दुनिया के बारे में सोचिए जहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो केवल जिनके लिए लाइफ का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल से जिन्हें मिल पाता है, जो जाते हैं तो घूमने लेकिन उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आ पाते। कितनी सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो यूं ही बेवजह वेस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि अगले क्षण ग्रहण क्या होने वाला है। इस जीवन के हर एक क्षण को थैंक्स कहते हुए बिताइए, जिंदगी ऐसे जीजिए जिए जैसे कि हमारे पास ईश्वर की कृपा बरस रही है, और ये बेमतलब का स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए और थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्रिया कहते रहिए।

0: समय हुआ है प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण का।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के अष्टम अध्याय पर, जहां पर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से ऐसा उपदेश चाह रहे हैं जिससे अगर देह में कोई आसक्ति उनकी रह गई है तो वो भी चली जाए और वो अनासक्त होकर के भगवान के चरणों में मन लगाकर अपने उस देह रूपी कलेवर को त्याग कर सकें। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रभु की कथाओं का अगर कोई, उनकी लीलाओं का अगर कोई नित्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो उसे और कोई चेष्टा नहीं करनी होती, बहुत जल्दी ही भगवान उसके हृदय में उदित हो जाते हैं। और ये देखिए कितना शुभ समाचार है, भगवान अपनी लीलाओं को इस धराधाम पर इसलिए प्रकट करते हैं ताकि उनके बारे में सुनकर जीव उनमें अनुरक्त हो जाए, जीव आकर्षित हो जाए और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने लगे, कीर्तन करने लगे। भगवान अपनी लीलाओं

गोलोक धाम से इस प्रपंच में लाकर अवतरित करते हैं। प्रपंच में ये माया का संसार है, यहां सब कुछ जड़ है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है और यहां के जो जीव हैं बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख, बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर का दुख उनको भी दुख देता है। कोई अपना मर जाता है तो बड़ा दुख होता है, कोई बीमार हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, शरीर को कष्ट हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, कुछ कमा नहीं पाते हैं तो बड़ा दुख होता है, कोई हमसे ज्यादा तरक्की कर लेता है तो बड़ा दुख होता है। यहां दुख की कमी नहीं है, दुख ही दुख, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है ना। कोई हमें कष्ट देता है या हमारा मन ही हमको कष्ट दे देता है, कभी प्रकृति हमको कष्ट देने लगती है, कष्ट ही है इस जगत में। लेकिन इस जगत में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत आनंद में रहते हैं। अगर देखा जाए ध्यान से तो कई बार उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं होता है उनके घरों में जिसे हम कहें भाई बहुत बड़ा फर्नीचर है, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर घर है, बहुत गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं, कहीं भी पड़े हैं छोटे से कमरे में। ऐसे भक्त जिनके पास उनकी संपत्ति के रूप में होते हैं कुछ ग्रंथ और उन ग्रंथों का स्वादन करते हैं वो, उनके पास उनका धन होता है सत्संग, भक्त संग, भक्त संग में वो भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन करते हैं और अत्यंत आनंद में रहते हैं। निरानंद तो उनको छू भी नहीं जाता, कोई दुख उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता, वो अतिशय सुख में रहते हैं। दुख वहां होता है जहां वासनाएं होती हैं, दुख वहां मिलते हैं जहां कामनाएं होती हैं, दुख वहां मिलते हैं जहां अपने शरीर से प्रेम हो जाता है या शरीर से जुड़े हुए लोगों से प्रेम हो जाता है, दुख वहां मिलते हैं। लेकिन जहां आसक्ति भगवान के चरणों को केंद्रित कर लेती है, भगवान की लीला कथाओं में मन डूब जाता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन ये मन करने लगता है, भगवान की निकटता का एहसास होने लगता है, भगवान पर मन आश्रित हो जाता है, ये जीवन आश्रित हो जाता है, उनका आश्रय ले लेता है, तब वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान ऐसे भक्त को आत्मसात कर लेते हैं और इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि हजारों साल की कोई तपस्या करे तब भगवान हृदय में प्रविष्ट होंगे, नहीं, या कोई भूखा रहे, प्यासा रहे तो भगवान आ जाएंगे, नहीं, या कोई बहुत उच्च कुल में जन्म ग्रहण करे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, या कोई अपने बाल बच्चों की खूब सेवा करे, पत्नी पति की खूब सेवा करे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे प्रकट होंगे? तो उसी का उपाय बता रहे हैं, सबसे आसान उपाय है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं बिना देर लगाए जब श्रद्धा के साथ हम उनकी कथाएं सुनते हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रविष्टः कण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए महाराज परीक्षित जो इतने मन से हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा मन से सुन रहे हैं, वो इतने मन से कथा क्यों सुन रहे हैं? तो हमें ये जानकारी तो है ही, सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया ही कि भगवान की कथा सुनने से ही कल्याण होगा, कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री हरि अपने भक्तों के दास सख्य आदि भाव रूपी कमल आसन में कथा के रूप में ही प्रविष्ट होते हैं और अपने भक्त के समस्त पाप काम क्रोध आदि मलिनता को सर्वतोभाव से अर्थात कुछ भी अवशेष ना छोड़ते हुए दूर कर देते हैं।

और ये भाव हमारे संस्कारों के अनुसार प्रकट होते हैं। किसी के हृदय में भगवत कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति दास्य भाव प्रकट हो सकते हैं, किसी के हृदय में वात्सल्य भाव का प्राकट्य हो सकता है, किसी के हृदय में मधुर भाव का प्राकट्य हो सकता है। तो ये भाव ही मानो भगवान के बैठने का कमल आसन हो। अगर कोई भगवान की कथा सुन रहा है और उसके हृदय में कोई भाव ही उत्पन्न ना हो तो क्या भगवान उसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होंगे? तो उत्तर है कि अगर कोई श्रद्धा से भगवान की कथा सुन रहा है तो कथा सुनकर के हृदय में भाव उपजेंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान की कथा सुने तो भाव ना उपजे, यह असंभव है। अगर किसी को भूख लगी हो, वो भोजन कर रहा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेट नहीं भरा। अगर पेट भर करके भोजन किया गया है तो पेट भरेगा ही, है ना? तो ऐसे ही कोई भगवान की कथा सुन रहा है श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि हाँ भगवान की ये लीलाएं चिदानंदमयी हैं, ये लीलाएं अप्राकृतिक हैं, यहाँ प्राकृत अंश कुछ नहीं है, श्री हरि सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, भगवान की लीलाएं भी चिदानंदमयी हैं, यहाँ जड़ता कुछ नहीं है, माया यहाँ छू नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, माया का प्रवेश नहीं है, लीलाएं जैसी भी हों पर वो माइक नहीं है। तो जिसको ये पूर्ण विश्वास हो भगवान पर, भगवान की लीलाओं पर, उनकी कथाओं पर, तो इसे ही कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा शरणागति से ही उत्पन्न होती है, ये भी याद रखना होगा। यानी अगर कोई भगवान की कथा सुन रहा है और भगवान के प्रति शरणागत है, शरणागति के लक्षण यही है कि प्रतिकूल से वर्जनम और अनुकूल से संकल्प। जो अनुकूल है भगवान की भक्ति के, उसका संकल्प कि हाँ मुझे ये करना है, और जो प्रतिकूल हैं उसको त्यागना है। मेरी वो रक्षा करेंगे ही, और बड़ी विनम्रता के साथ भगवान की कथाओं का सेवन करना है, श्रवण करना है, भगवान में पूर्ण विश्वास रखना है। तो इस तरह से शरणागति के साथ ही अगर कोई भगवान की कथा सुनता है तो ये कहा जाएगा कि वो भगवान में श्रद्धावान भक्त है। इसीलिए यहाँ कहा प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम्, भावसरोरुहम्। यानी जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जिन्होंने भगवान के चरणों की शरणागति ले ली है, तो वो भगवान की कथा सुनते सुनते हो जाते हैं भावुक भक्त। जब भगवान के लिए भाव उत्पन्न होते हैं तो भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराने के लिए उस भक्त को कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस भगवान की कथा सुनते सुनते वो भावुक रहे, दास्य सख्य आदि किसी भी भाव का उदय उसके हृदय में होगा और तब उस भाव रूपी कमल का आसन भगवान ग्रहण करते हैं कथा के रूप में प्रविष्ट होकर। तो अगर कोई ये कहे कि अच्छा दास सख्य आदि भाव अगर भक्त में उत्पन्न हो ही गया तो फिर मलिनता रह ही नहीं जाएगी, फिर भगवान कैसे पाप और काम क्रोध आदि मलिनता को दूर करते हैं? जब भाव आ गए तो इसका अर्थ यही है ना कि पाप समाप्त हो गए, काम क्रोध आदि मलिनता समाप्त हो गई। तो उत्तर ये है कि भाव तो प्रकट होने लग जाते हैं परंतु मलिनता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। हमारे जो संचित कर्म हैं, संचित पाप हैं, प्रारब्ध हैं, ये सब अभी भी पड़े रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं आहा कथा सुनते सुनते ये भक्त मेरे प्रति दास्य भाव से युक्त हो गया, सख्य भाव से युक्त हो गया, तो भगवान उसके हृदय में कथा के रूप में प्रविष्ट होते हैं और समस्त पाप काम क्रोध आदि मलिनता को सर्वतोभाव से यानी पूरी तरह से दूर कर देते हैं, पूरी तरह से।

0: और यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया ये कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं है, इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। कहा गया कि जैसे शरद ऋतु आती है तो समस्त नदियों और सरोवरों का जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, यानी मलिनता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो भगवान ही भक्तों का इतना हित साधते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के कान के छिद्र से हृदय रूपी कमल में प्रविष्ट करके काम क्रोध हिंसा आदि समस्त मलिनता को नष्ट कर देते हैं और कथा रूप में प्रविष्ट होते हैं। हालांकि देखा जाए तो भगवान तो परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सदा ही हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, अवस्थित हैं, लेकिन वो उदासीन भाव से अवस्थित हैं, यानी हम कुछ भी कर लें वो मना नहीं करेंगे। और साक्षी हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, दृष्टा है, अनुमंता है, साक्षी हैं, पर उदासीन भाव है। परंतु जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान कानों के छिद्र के द्वारा भक्त के हृदय कमल में प्रविष्ट होकर जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहाँ उनकी उदासीनता नहीं है, जो अंतर्यामी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में है, चाहे जीव नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे पापी हो, चोर हो, हत्यारा हो, कैसा भी क्यों ना हो, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं उदासीन भाव से, इनडिफरेंट होकर के, यानी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देख रहे हैं, ना वो मना करेंगे ना वो अपनी ओर आकर्षित ही करेंगे। परंतु भक्तों के भगवान कानों के छिद्र के द्वारा भक्तों के हृदय रूपी कमल आसन में विराजमान हो जाते हैं और भक्तों को अपने प्रति आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। ये भगवान ही की शक्ति है कि माइक आवेशों से युक्त जीव को पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के प्रति आकर्षित हो सके, उन्मुख हो सके, बस वो एक इच्छा व्यक्त करता है कि मैं आपकी तरफ मुड़ना चाहता हूँ, वो इच्छा व्यक्त करता है मैं आपका होना चाहता हूँ, बाकी कार्य तो भगवान ही कर देते हैं। हमें तो सिर्फ भगवान की कथा सुननी होती है और बस बाकी तो काम होता चला जाता है, फिर हम वैसे ही चलते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं और वैसा ही सब कुछ होता है जीवन में जो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति के अनुकूल हो। यानी अब प्रेम मिलेगा तो इससे पहले भगवान अब हमें ये दिन दिखाएंगे, ऐसा होगा, सब कुछ के नियंत्रक भगवान हो जाते हैं। एक भक्त का जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाता है भगवान के आश्रय को प्राप्त करके। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भक्त के कानों के छिद्र से कथा के रूप में भक्त के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और भक्त के भाव अनुसार, यानी उसका भाव भगवान के प्रति यदि दास्य भाव का है, सख्य भाव का है, उस भाव के अनुसार भगवान उसके हृदय रूपी कमल पर विराजमान होते हैं और उस भाव के अनुसार ही भगवान भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वरना जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को अपने बल पर प्राप्त कर सके। हमने ये बात जानी, है ना।

और फिर भगवान धीरे धीरे शमलम यानी काम क्रोध आदि मालिन्य को दूर करते हैं। अगर कोई कहे ठीक है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, भाई ज्ञानी और योगी भी तो ये कर सकते हैं, तो इसके उत्तर में ही कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी घड़े में जल है और उसमें फिटकरी डाल दी गई, तो कलश का जल जो है वो शोधित हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन नदी, पुष्करणी, सरोवर का जल शोधित नहीं होता है। हम उसमें कुछ ऐसा नहीं डाल सकते हैं कि नदी का जल शोधित हो जाए। मन तो नदी की तरह ही है ना, चलायमान चलता रहता है, चलता रहता है हा? और अगर मान लीजिए फिटकरी डाल दी जाए जल में, गंदे जल में जो कि घड़े में है, और लगा कि साफ हो गया, परंतु वो पूरी तरह साफ कहाँ होता है, वो जो मल है वो कलश के अंदर ही नीचे बैठ जाता है। थोड़ा सा हिलाया जाए उस जल को तो फिर से उसमें गंदगी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो या तपस्या हो, ये सब चित्त की मलिनता को पूरी तरह दूर नहीं कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में बदलाव आता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, और पूरी तरह से तो वो बदलाव भी नहीं आता है हा? तो थोड़ा बहुत मलिनता ये साधन दूर कर सकते हैं निश्चित रूप से, परंतु पूरी तरह से व्यक्ति बदल जाए, एक क्रोध ही महाप्रेमी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो किसी प्रकार से सामान्य हृदय की मलिनता ही दूर हो पाती है, लेकिन फिर से अगर विषय का संग मिल गया तो चित्त में फिर से काम आदि मलिनता आ जाती है। जिस प्रकार से प्रथम स्कंध में व्यास नारद जी का जो संवाद था उसमें देवर्षि जी ने कहा था, यमादि भी अर्थात नियत काम लोभ में आसक्त चित्त व्यक्ति मुकुंद की सेवा की तरह जिस प्रकार क्षमता प्राप्त करता है, पवित्र होता है, इस प्रकार यम नियम आदि योग पथ के द्वारा भी नहीं हो पाता है, यम नियम योग आदि के द्वारा इस प्रकार आत्मा की शांति नहीं हो पाती जिस प्रकार भगवान में आसक्ति के द्वारा हो पाती है। तो हृदय में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण सबकी मलिनता को पूरी तरह से अपसारित कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका दृष्टांत दिया महाराज परीक्षित ने, उन्होंने कहा जैसे शरद काल आता है, शरद ऋतु आती है, तो नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, सब पूरी तरह साफ हो जाते हैं, मलिनता पूरी तरह समाप्त हो जाती है ना। तो कोई सोचे हम तपस्या या ध्यान के द्वारा प्रायश्चित कर लेंगे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे, तो उत्तर है नहीं नहीं, सारे पाप कहाँ दूर हो पाते हैं, पाप का अवशेष रह जाता है, और वो भी यानी तपस्या, ज्ञान मार्ग, ये भी सबके लिए संभव ही कहाँ है। और अगर किसी के लिए संभव हो तो किसी किसी का पाप कुछ अंश में कुछ काल के लिए ही शांत होता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के रूप में हृदय में जब प्रविष्ट होते हैं तो समस्त जीवों के समस्त पाप पूरी तरह से शोषित कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, इसीलिए उनका एक नाम हरि है ना, हरि हरि। जिस तरह से शरद ऋतु के आगमन से सरोवर नदी का मैलापन समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से एक और श्लोक जिसका हमने आस्वादन किया था प्रथम स्कंध में, श्रृणवताम स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम, कि जो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान अवस्थित हो जाते हैं और वहां जितनी भी अभद्रता है, मलिनता है, भगवान उसे दूर कर देते हैं। तो हालांकि श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप में यानी परमात्मा के रूप में, क्योंकि परमात्मा भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश हैं श्री कृष्ण के, तो वो परमात्मा अंतर्यामी रूप में तो जीव के हृदय में सदा है ही, पर हमने जैसा जिक्र किया कि उस अवस्था में भी वो उदासीन भाव से ही विराजते हैं। परंतु

वो कथा के रूप में जीव के कर्ण द्वार से होकर प्रविष्ट करते हैं, तब वो अपने बैठने के स्थान पर विराजमान होते हैं और तब जीव के हृदय में दास से सख्य आदि भाव को प्रस्फुटित कर देते हैं और इसके द्वारा आनुषंगिक भाव से जीव के हृदय का काम क्रोध आदि मल धीरे धीरे दूर हो जाता है, भगवान ही दूर करते हैं। तो वही वाली बात है, अगर कोई ये कहे ज्ञानी योगी भी तो अपने काम क्रोध आदि रूपी मल को दूर कर ही देते होंगे, तब हरि कथा का श्रेष्ठत्व कहाँ है। उसके उत्तर में ही बोला गया था कि जिस प्रकार घड़े में स्थित जल को किसी वस्तु को मिलाने से, चाहे वो फिटकरी हो चाहे कोई और वस्तु, उसके द्वारा शोधन किया जाता है, तो वो जो घड़े में जल है बस वही शोधित होता है, पर अन्य पात्र में जो जल है वो शोधित नहीं होता है। नदियों का जल शोधित नहीं होता है और ये जल भी शोधित होता है, रिफाइंड होता है, साफ होता है, तो भी जो मैलापन है वो कुंभ के यानी जो घड़ा है उसके तल देश में ही जमा रह जाता है ना। तो इसी प्रकार से काम क्रोध आदि रूपी मल कुछ समय के लिए समाप्त दिखते जरूर हैं, परंतु थोड़ा सा अगर हिलाया जाए, थोड़े से अनर्थ आए, तो फिर से ये प्रकट हो जाते हैं ज्ञानियों तपस्वियों के हृदय में, मगर एक भक्त के हृदय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां वो अपनी चेष्टा से प्रयास कर रहे हैं और यहाँ भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा एक बद्ध जीव की आत्मा जिस प्रकार से शांत होती है, वैसी शांति अष्टांग योग ज्ञान कर्म आदि के उपदेशों के द्वारा वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ज्ञान कर्म योग आदि द्वारा अनावृत शुद्ध कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। जागतिक कथा जिस प्रकार से देश काल पात्र आदि द्वारा सीमित रहते हैं, वैसी कृष्ण कथा नहीं है, है ना। यहाँ देश काल पात्र का कोई महत्व नहीं है, कृष्ण कथा और कृष्ण एक ही वस्तु है, ये आपको बताया था। श्री कृष्ण ही कथा के रूप में स्वयं सेवा को प्राप्त करने की, जिन जीवों में उन्मुखता है भगवत सेवा को प्राप्त करने की, उनके हृदय रूपी कंदरा में प्रविष्ट हो जाते हैं ठाकुर जी कथा रूप में, और जीवों के समस्त प्रकार के हृदय मल को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए जो लोग श्री कृष्ण कथा को तप कर्म ज्ञान और योग के समकक्षा में रखते हैं, उनके समान समझते हैं, तो वो नाम अपराधी हो जाते हैं और फिर वो कृष्ण कृपा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कथा साक्षात श्री कृष्ण है, ये जानना होगा। इसलिए श्री कृष्ण कथा का श्रवण, श्री कृष्ण कथा का कीर्तन जीव मात्र का ही परम साध्य और साधन है, जीव मात्र का ही। अगर सफलता हासिल करनी है, और सफलता की जो परिभाषा है वो यही कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, इस मनुष्य जीवन में भगवत सेवा की प्राप्ति हो, यह सफलता। पैसा प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, लोगों का सम्मान प्राप्त हो, यह सफलता नहीं है। इसको तो हमारे यहां विष्ठा कहा गया है, ये पंक है, पंक कीचड़, जिसमें आदमी एक बार गिरा तो वो उसे अमृत मान लेता है, वहां से निकल नहीं सकता है, ना ही वो निकलना चाहता है, तो फिर कहां से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कैसे भजन ही होगा। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और इसे ही जारी रखेंगे हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में। सुनते रहिए समर्पण, इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता के साथ तीसरा विमान भेजा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फॉर्कस को 3-0 से हराया। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज श्रीलंका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। थाईलैंड ने कल हांगकांग को 6 रन से

नमस्कार दिली, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजगी, नए दिन का जोश और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर आप सभी का स्वागत है रेनबो स्टेशन 102.6 पर, जहां प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग दिली विद योर आरजे खुशी।

चाहे प्यार हो या नाम, फॉरएवर वो ही रहता है जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। आज है 29th of August, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जो खेल होता है ना, वो सिर्फ मेडल जीतने का नाम नहीं होता। खेल हमें सिखाता है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, टीम वर्क और सबसे ज़रूरी है गिर के फिर से उठना। आज का दिन समर्पित है भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को। वो नाम जिन्होंने अपने खेल से दुनिया भर में भारत का परचम जो था ना, वो लहरा दिया था। तो आज की सुबह ना एक छोटा सा सवाल है जो खुद से अब जरूर पूछिएगा कि जिंदगी के इस मैदान में जो आपने चुना है, क्या आप उसे अपना बेस्ट दे रहे हैं? इस पॉजिटिव एनर्जी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ दिस ट्रैक फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन।

0: आज है 29 अगस्त और आज की तारीख को जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है काजी नजरुल इस्लाम, जो कि प्रसिद्ध बंगला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे। साथ ही सुधीर कुमार वालिया, जो कि भारतीय थल सेना के जाबाजों में से एक थे। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

0: का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

टाइम पर स्टूडियो क्लॉक 7:22 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। आज है 29th of August यानी कि 29 अगस्त और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताऊं तो 1831 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने पहली बार ट्रांसफॉर्मर का प्रदर्शन किया था। साथ ही 1947 में भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की थी। 1998 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी जो कि अब ऑफिशियली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इस रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही 2010 में परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया था, इसलिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ साथ मनाया जाता है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
2: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
1: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

FM चांदनी चौक टू चाइना से ये ट्रैक चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर, जहां प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। आज के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 1905 में जन्मे मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी रहे। साथ ही 1968 में जन्मे बिक्रमजीत कंवर पाल, जो कि हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे और उन्होंने कई धारावाहिकों में भी काम किया। 1980 में जन्मे माधव श्रीहरि अणे, जो कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और इनके साथ 1969 में जन्मे मेजर मनोज तलवार, जो कि भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 13 जून को कारगिल में दुश्मनों को ढेर करने के बाद टुरटक की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराने के बाद वे शहीद हो गए थे। मेजर मनोज तलवार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। ऐसे होते हैं वीर कि जब वो चलते हैं तो दुश्मन के दिल हिलते हैं।

0: ये मूवी ना उन मूवियों में से एक है जो एक ना एक बार तो जरूर देखनी चाहिए भाई, मोटिवेशन आ जाती है। और अगर ये हॉल पे दोबारा लग जाए ना, तो इस गाने में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सच में, जब वो म्यूजिक में जो बीट्स आती है वो हो, जब हॉल में सुनते हैं ना, तो वो उसका मजा ही अलग होता है और रिस्पेक्ट और ज्यादा दुगनी चौगनी हो जाती है हमारी भारतीय सेना के लिए। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं लीना चंद्रवाकर के साथ, जो कि भारतीय पूर्व अभिनेत्री रही हैं और जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय भी किया है। इनका जन्म 29 अगस्त 1950 को हुआ था। साथ ही नागार्जुन अक्कीनेनी के साथ, जो कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्माता है, और इनका जन्म 29 अगस्त 1959 को हुआ था। इन्होंने तेलुगु सिनेमा में और बॉलीवुड में भी काम किया है। तो इनको और जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जन्नत तो नहीं दिखा सकती लेकिन खेल की दुनिया में आपको जरूर लेकर जा सकती हूँ। खेल जगत की ताजा खबरें आपको देकर। नामीबिया की जीत हो गई है क्योंकि नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को ट्राई सीरीज में 18 रन से मात दे दी है। इसी के साथ कुश्ती में सख्ती हो गई है क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने कड़े एंटी डोपिंग दिशा निर्देश जारी किए हैं और पहलवानों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही स्क्वैश की अगर आपको अपडेट दे दूं तो वेलवन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन्स के फाइनल में पहुंच गए हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रिचा आ गई है स्टूडियो में. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम में. बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ.

आकाशवाणी दिल्ली पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन के अमरीका के दौरे पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारिणी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता के साथ 3रा विमान भेजा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सकता है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेल समाचार में हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकर्स को 3-0 से हराया। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज श्रीलंका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। थाईलैंड ने कल हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। ये थे अब तक के मुख्य

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और देश की जुड़ी हुई वो सारी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, दिल्ली एनसीआर की स्पेशली लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और कोशिश रहेगी कि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे और बेहतरीन से बेहतरीन गाने भी पहुंचे, यानी आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या है, 102.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्टेशन से कहीं भी नहीं जाना है और ट्यून इन करे रहना है। चैनल चेंज करने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। एंजॉय कीजिए इस पहले ट्रैक को।

भाई हट तो बादल चुके हैं आसमान से। जी हाँ, अब आप कल भी, आपको पता है कि आसमान गिरे रहे थे, लेकिन हम दिल्ली वाले अंदाजा लगाते रहे कि अब बारिश हुई, अब बारिश हुई, लेकिन कल भी बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की कहीं पर बूंदाबांदी दर्ज की गई है, वैसे तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन उमस पूरी बनी रही, गर्मी बनी रही। कल का तापमान जो है वो 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था। तो आपको बता दूं कि आज भी आसमान में जो है वो बादल नहीं दिखाई देंगे आपको, मौसम गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा, और बारिश के जो आसार हैं वो लगभग बिल्कुल ना के बराबर हैं। ये जरूर हो सकता है कि हल्के बादल छाए रहें और वहीं हवाएं भी चल सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उमस और तेज धूप की वजह से गर्मी आपको पक्का परेशान करने वाली है। अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कुछ समय से अखबार की सुर्खियों में ये छाया हुआ था कि बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे क्या कहेंगे आप कि आज बारिश तो नहीं होगी, गर्मी रहेगी। अब आप बताइए जरा कि आप इस बात को सुनकर खुश होंगे या खफा होंगे। खैर, जो भी आप करें वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने शहर के मौसम का हाल। तरीका बहुत ही आसान है, 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या आपके शहर में बारिश हो रही है। भाई आपके शहर की बारिश सुनकर ये हम राहत की सांस ले लें, ये जरूर करेंगे। और इसके अलावा कहाँ पर ट्रैफिक का हाल कैसा है, ट्रैफिक अगर स्मूथ है तो भी बताइए, ट्रैफिक अगर कहीं पर बहुत ज्यादा हैवी है वो भी शेयर कीजिए। जल्दी से मुझे शेयर कीजिए 9868107070 पर। मेरा नाम है ऋचा, प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और देखिए मैसेजेस मेरे पास आने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश रुक रुक कर हो रही है, ये हमें बताया है वंदना ने। साथ ही राजकुमार जी भी कहते हैं कि इनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश जल्दी से हो। धनबाद से विकास जी भी कह रहे हैं कि डेली बारिश हो रही है धनबाद में, क्या बात है, थोड़ी सी बारिश यहाँ भी भेजी क्योंकि उमस से यहाँ तो भाई बड़ा बुरा हाल है। और मैसेज आया है हमारे पास पंकज जी का, ये भी कहते हैं कि यहाँ पर भी सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे जब ये बारिश होती है ना हल्की हल्की तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है ना, तो ऐसे ही खूबसूरत से और खास करके जब वीकेंड हो, आपके पास बहुत सारा समय हो कि आप इस बारिश को रुक कर ठहर कर अच्छे से इंजॉय कर सकें, तो फिर बात ही क्या है। और ऐसे में एक गुड न्यूज़ आपको मिल जाए कि आपका कोई एग्ज़ाम पास हो गया तो कितनी खुशी होती है ना। वैसे आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स, जी हाँ यूजीसी नेट जून 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। और अगर आपने इस बार जून में ये एग्ज़ाम दिया था, 84 सब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सारे रिजल्ट्स एक साथ अनाउंस कर दिए गए हैं, तो अगर आपने भी एंट्रेंस ये जो एग्ज़ाम है दिया है और आप जानना चाहते हैं अपना रिजल्ट, तो ugcnet.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आप जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, जो कैप्चा है वो फिल कीजिए, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इस बार 400 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं, और अगर उनमें से एक नाम आपका है तो आपको ढेरों बधाई। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को ढेरों सफलता मिले, और अगर आज आप रिजल्ट देख रहे हैं अपना तो आप उसमें जरूर पास हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे। इसी के साथ ऐसी ही काम की जानकारी मैं आपके लेकर आती हूँ। नाम है मेरा रिचा, प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं 102.6, बिल्कुल सही इसी फ्रिक्वेंसी पर। तो चैनल चेंज करने की गलती मत कीजिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

ये है आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ ऋचा आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमें न्यूज ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है ना, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा कि हमारे फोन में तो रेडियो है ही नहीं। और इस ऐप के माध्यम से आप हमें कभी भी कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं और कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। तो अब शो पे की बातों पर वापस लौटते हैं और अब मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लाई हूँ जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो अपना हेल्थ है ना, वो पहला धन है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप के पास चाहे कितनी धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, आप उनका लाभ नहीं ले सकते, आप उन्हें लेकर कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनका लाभ उठा ही नहीं पाएंगे अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि मौसमी फ्लू और डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों जैसे लक्षणों वाली एक बीमारी है H1N1 वायरस की, ये फैल रही है बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं उन्हें इनिशियली तो लगता है कि एक नॉर्मल फ्लू है, लेकिन बाद में जाके मालूम पड़ता है कि ये जो बीमारी है ये दरअसल उससे कुछ ज्यादा है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको खांसी आ रही है, आपको छींकें आ रही हैं और मौसमी फ्लू जैसे लक्षण हैं, तो एक बार H1N1 टेस्ट जरूर करें। साथ ही अपने जो लोग हैं आसपास के लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथों को जरूर धोएं, बार बार धोएं, और साथ ही एक मास्क जरूर वेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक मास्क जरूर पहने पब्लिक प्लेसेस पे जाने से पहले, ऑफिसेज में जाने से पहले, और खांसते और छींकने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें या फिर उन्हें साबुन से अच्छी तरह कम से कम 2 मिनट तक वॉश करें। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन अ सेफ्टी इन्वायरमेंट फॉर अस फॉर आर पीपल। तो ये बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, साफ सफाई रखें, ताकि इस तरह की जो बीमारी है ये एक बार फिर से हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी करे और बाकी लोगों के लिए भी करे, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है। तो बस अपना खूब सारा ध्यान रखिए और देखिए धीमे धीमे कर कर जब हमने कोविड जैसी बीमारी को भगा दिया तो ये H1N1 क्या चीज है। इसलिए केवल हमें सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है अपना और अपनों का भी। मैं हूं ऋचा आपके साथ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

हम बातों को ट्विस्ट बिल्कुल नहीं करते, हम चाहते हैं जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसी आप तक पहुंचे ताकि आप उसका लाभ ले सके। मैं हूं ऋचा और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही दिल्ली की ही एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो नर्सिंग प्रोग्राम की पहली काउंसलिंग लिस्ट जारी कर रही है और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आईपी यूनिवर्सिटी इंद्र

प्रस्त यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और इसमें नर्सिंग प्रोग्राम के दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है पहली काउंसलिंग। 31 अगस्त तक की डेट दी गई है और आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने नीट यूजीसी का एग्जाम दिया है तो उसमें उत्तीर्ण छात्राएं इस काउंसलिंग में भाग ले सकती हैं। आपको इसके लिए शुल्क जमा करना होगा और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप 31 अगस्त तक जमा कर सकती हैं और उससे पहले ही आपको फॉर्म में जो संशोधन करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो आपको जो भी चीज़ें करनी है, इन सभी की लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज ही विजिट करें। अगर आपने नीट यूजी का एग्जाम दिया है, नीट यूजी का एग्जाम अगर आपने दिया है तो इसमें आपको काउंसलिंग के लिए आप भाग ले सकती हैं और 31 अगस्त तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो नर्सिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, जो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 31 अगस्त यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल मात्र 2 दिन हैं, संडे का और मंडे का दिन है, तो इन 2 दिन को यूटिलाइज कीजिए, जाइए ये फॉर्म फिल कीजिए और अपना करियर्स बनाइए। क्योंकि पता है जब एक बार आप अपने जो आपका मुकाम है, जो आपने सोचा है, जो आपका करियर है, उसमें एस्टैब्लिश हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाइफ सेटल हो जाती है ना। तो अपने सपनों को पंख दीजिए और जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचता हुआ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये है आकाशवाणी रेनबो और कोशिश रहती है कि आप तक सारी काम की खबरें पहुंचती रहें कि भाई कैसे कैसे आप तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और आपकी जो लाइफ है उसे बेहतर किया जा रहा है। तो देखिए एक और ऐसी खबर है जिसे सुनकर जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं ना वो बड़े ही खुश होने वाले हैं। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खबर ऐसी है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है इसके दोनों किनारे लगभग 61 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे इलाके हैं जैसे कि ढांसा से लेकर बसई दारापुर या शहरी जो क्षेत्र हैं उत्तम नगर, विकासपुरी, नजफगढ़, बिछवासन, छावला, गोयला डेरी, द्वारका, बापरोला, निलौटी, पश्चिम विहार, राजौरी गार्डन और आईजीआई एयरपोर्ट जैसे जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। साथ ही पैदल चलने वाले, जॉगिंग करने वाले और साइकिलिंग ट्रैक भी अलग से बनाए जाएंगे यहां पर। और इसका निर्माण होगा कैसे कि जो छटीकरा ब्रिज है वहां से छावला ब्रिज तक बाएं किनारे पर 5.94 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क बनेगी जबकि छावला से बसईदारापुर तक ड्रेन के दोनों किनारे पर 27.415 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण किया जाएगा। जो दोनों किनारे हैं इनकी मिलाकर लंबाई लगभग 54.83 किलोमीटर हो रही है और कुल विकसित लंबाई 61 किलोमीटर होगी और 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। और इसके क्या होगा, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य शहर से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही क्या होगा कि लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। ये जो मार्ग है ना, ये आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, शिवाजी मार्ग, पंखा रोड, UER2 यानी कि जो NH9 रोहतक रोड से कनेक्टिविटी, नजफगढ़ रोड और जो अन्य इंटर कनेक्टिविटी की सड़कें हैं उन्हें भी ये जोड़ेगा। बसईदारापुर में इनर रिंग रोड, केशवपुर में आउटर रिंग रोड, विकासपुरी में पंखा रोड, ककरोला में नजफगढ़ रोड और धूलसिरस में UER2 के माध्यम से एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेस वे का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा और इसकी वजह से लोगों को बहुत ही फायदा होगा। लोगों को बड़ी आसानी से ये लोग जुड़ पाएंगे, शहरों तक पहुंच पाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी टेंडर जारी कर दिए हैं। तो बहुत जल्द ये जो कॉरिडोर है रेडी हो जाएगा और दिल्ली की जो वेस्ट दिल्ली की जनता है उसको बहुत लाभ होगा, आने जाने में आसानी होगी। मैं हूं रिचा आपके साथ और ऐसी ही काम की खबरें आप सुनते रहेंगे 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

यह है आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ ऋचा आपके साथ। जीवन के जो जितने भी चरण होते हैं, जितने भी फेजेस आते हैं ना, हर एक फेज का ना अपना एक मजा है। अब देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो खिलौनों में, अपने माता पिता में ही पूरा जीवन ढूंढते हैं, है ना। हमें लगता है कि इससे बढ़कर दुनिया कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो लगता है कि बच्चों को भी लगने लगता है कि अब उनकी जो दुनिया है वो उनके दोस्तों तक सीमित है। धीमे धीमे जब बच्चे अपना घर संसार बढ़ा लेते हैं और अपनी दुनिया बसा लेते हैं तो माता पिता बड़े अकेले पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं और अब बच्चे अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों की अपनी अपनी फैमिलीज हैं। ऐसे में अकेलापन महसूस होना ना एक बड़ी आम सी बात है। इसे एक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी। लोगों को लगता है कि अब उनका जो घोंसला है, जिसे उन्होंने इतने प्यार से बसाया था, जो घरौंदा, अभी धीमे धीमे खाली होने लगा है। अब कोई है नहीं हमारे साथ बात करने को, हमसे हमारी कहानियां सुनने को, क्योंकि आजकल दादी नानी की कहानियों की जगह भी मोबाइल फोन्स ने ले ली है। अब ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके की जो राइम्स वगैरह हैं वो फ़ोन पर ही सुन लेते हैं, कहानियां फ़ोन पर सुन लेते हैं। तो ले देकर नानी दादी का रोल यहाँ भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे में जो ये वृद्ध लोग हैं, इनके लिए समय काटना एक बड़ी मुसीबत बन जाता है और यही इनके रोगों का कारण भी बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर वरिष्ठ नागरिक बैठकर बातचीत कर सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये केंद्र रोजाना खुले रहेंगे। यहां पर योग से लेकर खेल तक की सुविधा नागरिकों के लिए रहेगी। साथ ही मासिक चिकित्सा शिविर भी लगेंगे, प्राथमिक उपचार की किट भी यहां मौजूद रहेगी। और दिल्ली में ऐसे सामुदायिक स्थान अब धीमे धीमे बनने जा रहे हैं जिसके लिए 8

डब्ल्यूएच आरडब्ल्यूएस जो हैं और साथ ही सीजीएचएस और सामुदायिक स्थान में चौपाल जैसे चलने वाले केंद्र भी शामिल हो सकेंगे। तो जो हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं श्री रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगी कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन भी सम्माननीय हो, एक सक्रिय जीवन हो और साथ ही सामाजिक जुड़ाव भी उनका सुनिश्चित हो। ऐसे सरकार केंद्रों को बनाएगी जहां पर लूडो, कैरम से लेकर योग ध्यान की कक्षाएं भी लगेंगी, कूलर, टेलीविजन, कंप्यूटर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें भी रखी जाएंगी ताकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। स्वास्थ्य और फिटनेस क्लासेस भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी, आउटडोर टूर्स भी होंगे, कहानी सुनाने के सेशंस भी आयोजित होंगे, पेंटिंग, क्राफ्ट, पॉटरी, न्यूट्रिशन संबंधी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इंडोर और आउटडोर खेल जैसी गतिविधियां भी आयोजित कराई जाएंगी। ये जो मनोरंजन केंद्र हैं ये सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुलेंगे और प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे खुलेंगे। यहां पर वेंटिलेशन, टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी और इसे हमेशा एक ग्राउंड लेवल पर ही इसे आयोजित किया जाएगा और अगर लिफ्ट होगी तभी यह फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर जाएगा। साथ ही महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग से कार्यक्रम होंगे। आपात की स्थिति में जल्दी सहायता पहुंचे इसलिए नजदीकी पुलिस थाने और अस्पतालों में भी इसका संपर्क रहेगा। इस योजना के तहत ऐसी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक केंद्र में 200 से अधिक सदस्य रहें और इनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक रहे। तो देखिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एक आइसोलेशन फील करते हैं सोसाइटी में, उन्हें एक मौका मिलेगा बातचीत करने का, अपनों से जुड़ने का, अपनी परेशानी शेयर करने का। और आपको पता है कि जब मन का बोझ हल्का हो जाता है ना तो आपका शरीर भी खुद ब खुद अच्छा महसूस करने लगता है। खैर ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और आप भी कोशिश कीजिए कि अगर जब कभी आपके आसपास इस तरह के केंद्र खुलें तो आप भी अपने माता पिता को लेकर, अपने बड़ों को लेकर यहाँ पर जाएं ताकि वो लोग इनमें शामिल हो सकें और इंजॉय कर सकें, अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज कर सकें। एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा।

0: आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ ऋचा। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और उम्मीद करती हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, है ना। और साथ ही एक चीज और आप ध्यान रखिए कि जैसे कि बारिश का मौसम है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना आसपास का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कहीं भी आपको पानी नहीं भरने देना है। अगर आप अभी भी कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो जो कूलर का पानी है वो बार बार चेंज कीजिए। अगर आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा टेरेस गार्डन है तो गमलों में चेक करते रहिए कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने पाए। अगर आपने अपनी छत पर पुराने बर्तन फेंक दिए हैं तो एक बार जरा घूम कर चेक कर लीजिए। सैटरडे संडेज को केवल 10 मिनट निकालने हैं आपको और पूरे घर में एक बार घूम के चेक करना है छत वगैरह पर कि कहीं पर भी पानी का भराव तो नहीं है। अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो उसे साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, गमलों का ध्यान रखिए। देखिए जो पौधे होते हैं ना, दरअसल वो हमारे बच्चों जैसे ही होते हैं, हमें उनका भी बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना होता है। एक्सेस पानी उनकी जड़ों को नुकसान देता है, उन्हें गला देता है, इसलिए उस पानी को ड्रेन करना बहुत जरूरी है। सर ये जो सीजन है ना बारिश का, इसमें आप अच्छे से गुड़ाई करते रहिए अपने पौधों की ताकि उनमें पानी पहुंचे और साथ ही पानी इजीली निकल भी सके। उनके ऊपर काई बिल्कुल मत जमने दीजिए। अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए और कहीं भी पानी जमा होने से डेंगू का मच्छर पनप सकता है, चिकनगुनिया का मच्छर भी साफ पानी में ही होता है, तो ऐसी बीमारियों को भला अपने घर में जगह क्यों देना, है ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं आप और हम मिलकर। तो सैटरडे संडेज को स्पेशली रखिए केवल इस बात के लिए कि आप अपने घरों को अच्छे से साफ करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं पर भी पानी ना भरा हो। ये तो हुई घर की बात। अब अपने घर के बाहर आसपास कहीं कोई ऐसा गड्ढा है जहां पर पानी इकट्ठा है तो उसे भी अपनी ही जिम्मेदारी समझिए। ये मत सोचिए कि मैंने तो अपने घर में देख लिया कहीं पानी नहीं भरा है, अब बाहर भरा है तो भाई मैं क्या जानूं। याद रखिए कि मच्छर ना ये नहीं देखते कि इनका घर साफ है तो इनके लोगों को नहीं काटना, इसलिए पानी कहीं भी भरा होगा और मच्छर पनपेंगे तो हो सकता है कि वो आपके परिवारजनों पर भी हमला करें। इसलिए अपना सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना है। अपने आसपास कोई भी गड्ढा देखें जहां पर पानी भरा हुआ है तो उसे मिट्टी से भर दें और पानी इकट्ठा ना होने दें। आप हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर इस समस्या से लड़ सकते हैं। खैर मेरे जाने का भी वक्त हो गया है तो एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर और खुशबू, बहुत सारी खुशबू लेकर आई हैं, बहुत अच्छा गाने लेकर आई हैं आपके लिए और दिल के तराने गाने नए पुराने में बहुत सारे म्यूजिक होगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा। तो जुड़े रहिए आप इनके साथ और एंजॉय कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे बहुत जल्द।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज 6 दिन के अमरीका के दौरे पर हैं। वहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत ने अमरीका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई। 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शीघ्र शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन खिताब अपने नाम किया। हॉकी बंगाल आज कोलकाता में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 आयोजित कर रहा है। ये समारोह राष्ट्रीय खेल दिवस और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 121वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिल के तराने, गाने नए पुराने, आपकी आरज खुशी के साथ जहां पर आप सुनेंगे बॉलीवुड के ट्रैक, वो भी बैक टू बैक। और साथ ही 7:30, 9:45 यानी कि 9:15, 9:30, 9:45 पर लगेगा बॉलीवुड की ओल्ड डायरी से ओल्ड वाले गोल्ड वाले जो गाने हैं उनका तड़का, यानी ओल्ड इज गोल्ड वाले जो सॉन्ग्स होते हैं ना उनका तड़का बीच बीच में मैं आपको देती ही रहूंगी और साथ ही साथ आप इंजॉय करते रहेंगे बैक टू बैक बॉलीवुड का म्यूजिक।

0: नालसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आकाशवाणी के रेडियो की इस रेडियो की स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 9:15। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए एक गाना लेकर आऊंगी, तो फिल्म तेरे घर के सामने से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए।

ये ट्रैक था फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज अरिजीत सिंह की आवाज में ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6 जहां प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के ट्रैक्स और वो भी बैक टू बैक टाइम बस स्टूडियो क्लॉक इज 30 मिनट्स पास्ट 9 और रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ फिल्म ज्वेल थीव से ये गाना किशोर दा की आवाज में।

0: प्यार होता।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर
2: आपकी आज खुशी के साथ। और इस वक्त दिल्ली का तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस। वैसे कहने को तो इस वक्त बादल छाए हुए होने चाहिए थे, लेकिन मुझे सूर्य देवता की रोशनी पूरी दिखाई दे रही है। तो ये लुका छुपी का खेल पूरे हफ्ते चलता रहेगा। कभी बादल दिखेंगे, कभी बरसातें होंगी, कभी बिजली कड़क सकती है, कभी सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कपड़े सुखा रहे हैं ना, तो उनका ध्यान रखना बाहर, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी सूर्य की किरणें उन पर पड़ सकती हैं। वैसे अगर बता दूं पूरे हफ्ते का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, तो पूरे हफ्ते मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा वो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस तक और मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोटे से ब्रेक के बाद।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
6: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
7: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
6: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आकाशवाणी पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। आकांक्षा आने वाली है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर्स, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जो आप सुनेंगे 10 से 11, 11 से 12 आपके साथ रहेंगी साइमा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में, और किसी न किसी एक को बनाएंगी बॉलीवुड का सरताज। 12 से 1 आपके साथ रहेंगी आकांक्षा प्ले इट कूल प्रोग्राम में, 102.6 पर आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग, और मैं बता रही हूँ अपने नाम के साथ अपना फेवरेट सॉन्ग रेडियो पे सुनने का ना मजा ही और है। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे साइमा के साथ, दीपांशी अरोड़ा और माला नेगी के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना 2 से 3, और रेनबो पर ये सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा।

आज खुशी यानी कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि रोज रोज बस एक एक ऐसा काम करो जिससे सेहत अच्छी बनी रहे, क्योंकि हम लोग 10 काम तो ऐसे करते ही हैं कम से कम जिससे बीमार हो सकें, तो कम से कम एक काम तो एक ऐसा कर लें जिससे हमारी सेहत अच्छी बने। बेशक जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कपालभाति कर लो, प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो, अरे एक सेब ही खा लो, एक सेब ही रोज खा लो, लेकिन कोई ना कोई एक काम जरूर अच्छा करो जिससे कि हमारी जो सेहत है, हम सबकी सेहत अच्छी बनी रहे। इसी विचार के साथ आज खुशी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लवली लिसनर्स एंड म्यूजिक लवर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू द मैचलेस म्यूजिक कार ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो एंड आई एम आकांक्षा मोहन। इट्स अ सैटरडे टुडे एंड द वीकेंड मॉर्निंग्स आर मेड एग्जैक्टली फॉर दिस। अ कप ऑफ चाय और कॉफी एंड नो रश and an hour of music that never gets old. So let's begin with something from the very heart of the doo-wop era. Here is Magic Touch by the Platters.

0: The Hole is there with On a Carousel. That jangly spinning guitar riff really does make you feel like you are in one. Now it's time to take a short break, so stay tuned, we'll be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी

0: तैयारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक कार ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। Now it's time for a very first Hindi classic of the morning. A beautiful romantic number from one of Hindi cinema's earliest true suspense thrillers. Composed by Hemant Kumar and voiced by Mohammad Rafi, here is Bekarar Karke Hame Yu Na Jaiye.
4: Bekarar Karke Hame Yu Na Jaiye, Aapko Hamari Kasam Laut.

0: That was such a gentle, understated song, much like the film itself, which was based on a short story by Manu Bhandari and became a quiet landmark of Hindi parallel cinema. Directed by Basu Chatterjee, it also won the Filmfare Award for the Best Movie. Now it's time to take a short break, so don't go anywhere and stay tuned.
1: PM Jai ab garibon ki jai ban gayi hai.
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
2: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक कार, only on 102.6 MHz, Akashwani Rainbow. Now, for all you sports person, to celebrate National Sports Day on August 29th, Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan is offering exclusive free entry for athletes and sports persons today, alongside complimentary access to the Rashtrapati Bhavan Museum. So don't miss this one. Let's pick the energy back up now with a soft rock duet that became one of its era's most successful crossover hits. Here is Stumbling In by Suzy Quatro and Chris Norman.

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक कार ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। आई हैव अ फ्यू मैसेजेस फ्रॉम राजकुमार जी फ्रॉम अकोला, डॉली जी फ्रॉम दिल्ली एंड रोलन फ्रॉम दिल्ली हु आर ट्यून्ड इन एंड आर विशिंग माइकल जैक्सन अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग ऑल द स्पोर्ट्स पीपल हियर अ वेरी हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड दे सेड दे लव्ड द प्लेलिस्ट टुडे एंड दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। And if you are in or around Delhi and you want to experience the culture of Uttarakhand, you can visit the Uttarakhand Lok Mahotsav 2026, which is on till the 14th of September at Ramlila Maidan, Sector 16, Rohini. Entry is free, so go and enjoy the traditional music and dance, and of course, food too. Now back to music. If you're waiting for that one perfect moment to define your Saturday today, it might just be the soundtrack for you. It's a song for the dreamers and everyone who believes that the best is yet to come. With vocals by Lou Gramm, here is Waiting for a Girl Like You by the band Foreigner.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अब आप सुनिए आकाशवाणी पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमरीका के दौरे पर हैं। भारत ने अमरीका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हुई। 1924 लोग अब भी लापता। भारत नेपाल को लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आखिर में भारत के वेलवन सेंथी कुमार PSA बुडापेस्ट सकवॉश ओपन का खिताब जीता। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। मैं हूं सायमा, आपके साथ लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम आज एक बार फिर बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड ट्रेल्स में क्या कुछ है खास, बॉलीवुड की गपशप, कौन सी खास मूवीज आ रही हैं और आप थिएटर पे कौन सी मूवीज देख सकते हैं, सितंबर आने वाला है, कौन कौन सी मूवीज इस मंथ से उस मंथ तक जाने वाली हैं, कुछ नया कुछ पुराना OTT पे रिलीज होने वाला है, क्या कुछ है खास, बातें होती रहेंगी। लेकिन खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा।

बेहद खूबसूरत गाना अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रेनबो पर. मैं हूं सायमा आपके साथ और इस वक्त आपका अपना प्रोग्राम चल रहा है भला कौन सा, बॉलीवुड ट्रेल्स. बॉलीवुड से जुड़ी बातें क्या करें, कुछ खास. और क्योंकि देखिए ना, अब ये वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स में सब अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं. कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, ऐसे में क्या करें, कुछ तो घर बैठे बैठे करने का दिल कर जाता है ना. और ऐसे में अगर हम OTT पर रिलीज हुई जो खास मूवीज़ हैं उनकी बात कर लें और थोड़ा सा एंजॉय घर पे बैठ के कर लें तो कहना ही क्या. अगर आप इन कहते हैं ना कि इस लॉन्ग वीकेंड पे घर बैठ के कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको शुरुआत से आखिर तक स्क्रीन से मान ले, तो थ्रिलर फिल्मों का ये खास कलेक्शन आपके लिए है. अब इसमें क्या है कलेक्शन में, कुछ दमदार सस्पेंस हैं, बेहतरीन है, शानदार क्लाइमेक्स से सजी ये कुछ खास फिल्में जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं ना, ये आप OTT पर स्ट्रीम कर सकते हैं. किस्म किस्म के सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ ये बेहतरीन फिल्मों का सफर जो अभी मैं शुरू करने वाली हूं आपके साथ में और बताने वाली हूं कि आप कौन सी फिल्में देख सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं. और अगर बात करें कुछ खास फिल्मों की, तो ये कन्नूर स्क्वाड करके है एक जो खास आप देख सकते हैं. मुफ्ती का बेहद साधा हुआ मजबूत अभिनय इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा. इसके साथ साथ सूक्ष्म दर्शनी करके मूवी है जो आप देख सकते हैं. नजरिया और नाजिम और बसील जोसेफ की शानदार एक्टिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी. और थलावन करके आप OTT पर देख सकते हैं. बीजू मेनन और आसिफ अली के बीच दो पुलिस जो अधिकारी हैं उनके ईगो की बात आ जाती है और डिप्लोमेटल दुश्मनी का जो बेहतरीन ड्रामा है वो इसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है. अगर बात करें कुछ और मूवीज़ की, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी खास मूवीज़ हैं जो आप OTT पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, मतलब घर बैठे OTT पर एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं. और क्या कुछ है मेरे पास खास, बातें होंगी लगातार और इसी तरह से खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा. फिलहाल मेरे जो दोस्त हैं ना, मुझे पता है बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई आज बॉलीवुड सरताज की जब बात होगी तो क्या कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सवाल भी आपसे पूछूंगी, जवाबों का इंतज़ार रहेगा. लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा सस्पेंस, जब बात सस्पेंस की हुई तो बना रहना चाहिए. फिलहाल एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, दिल से दिल तक.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हुसैम आपके साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आऊंगी करूंगी आपसे और बहुत सारी बातें। कहीं मजा आइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।

एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हूँ फिर आपके साथ। और क्या है बॉलीवुड में खास, चलिए जानते हैं। देखिए सितंबर अब आने वाला है और अगस्त की बात करें तो बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। कल ही एक और ख़ास मूवी रिलीज़ हो चुकी है, यानी कि 28 अगस्त को बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन सेप्टेम्बर में कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं? सुपर स्टार यश की टॉक्सिक जो मूवी है वो सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद फैंस को और किन फिल्मों का इंतज़ार है, इसकी एक लिस्ट पर बात कर लेते हैं, है ना। अब बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर द मूवी जो है ये 4 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। और इस फिल्म के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो लिस्ट में पहले नंबर पर मिर्ज़ापुर द मूवी है, क्योंकि फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी आपको देखने के लिए मिलेंगे, अली अफजल और दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और श्वेता त्रिपाठी, इनके साथ साथ श्रिया भी आपको इसमें काम करती नजर आएंगी। आपको इन ये जो कहते हैं ना कि मिर्ज़ापुर जो है वो एक बड़ी मज़ेदार सी मूवी रही है, और ऐसे में क्या कुछ ख़ास है अब जो आने वाली है, यानी कि 4 सितंबर को जो रिलीज़ होगी उसमें क्या कुछ ख़ास है, जो कलाकार नज़र आएंगे फिल्म सिनेमाघरों में अब ये रिलीज़ होने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात करें आई एम गेम, ये एक और मूवी है जो 3 सितंबर को रिलीज़ होगी। और आई एम गेम जो एक मलयालम भाषा की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, फिल्म को नहास हिदायत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में दुलकर सलमान और एंटनी वर्गिस और मिस केसन और कियादू लोहार और इस तरह के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपको काम करते नजर आएंगे, उनकी अदायगी आपको देखने के लिए मिलेगी। और फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी 3 सितंबर को। इसके साथ साथ अगर बात करें द पैराडाइज, ये मूवी होगी सेप्टेम्बर में ही रिलीज होगी, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में रिलीज होने वाली है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 10 मूवीज की जो सितंबर में रिलीज होने वाली हैं।

ये 24 सितंबर को रिलीज होगी और इस मूवी का भी मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से इंतजार करेंगे। और कई बार होता है ना कि जो साउथ की मूवीज होती हैं बॉलीवुड मूवीज के साथ साथ, वो भी बड़ा धमाल मचा देती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती हैं। अब अगली मूवी की बात करते हैं। अगली मूवी है वाइब, जो 18 सितंबर को रिलीज होगी और वाइब को कुणाल खेमू ने डायरेक्ट किया है। और दो दोस्त जो मुश्किल से अपनी जिंदगी को संभाल पाते हैं, वो गलती से कहते हैं ना, एक ऐसी चीज में फंस जाते हैं जो कैसे ना कैसे वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, कैसे ना कैसे चीज़ों से अपने आप को संभालना चाहते हैं। इस फिल्म में कुणाल खेमू जो हैं वो प्रीति जिंटा के साथ काम करते नजर आएंगे। अब कौन सी और मूवीज़ हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इसी तरह हमसे बातें होती रहेंगी, लगातार खूबसूरत गानों का सफर भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स और अब बिना देरी करे आपसे पूछ लेती हूँ सवाल। आज मेरा सवाल क्या है, फिलहाल ये बता दूं कि आज हमारे कुछ जो बॉलीवुड अदाकार हैं ना उनके बर्थडेज भी हैं। लीना चंद्रवरकर, उनका आज जन्मदिन है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नागार्जुन की तो उनका भी आज जन्मदिन है। और उन्हीं के रिगार्डिंग आज मेरा आपसे सवाल है। साल 1995 में यानी कि 1995 में नागार्जुन और मनीषा कोइराला की कौन सी मूवी आई थी? आपको हमें जवाब जल्दी से भेज देने हैं। और फिलहाल इनकी अदायगी की अगर बात करें तो सच में काबिले तारीफ। और लीना चंद्रवरकर की अगर बात करें, जो ये कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड मेलोडीज और जितने खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं पुरानी मूवीज़ के, और जितनी प्यारी ये रही हैं अपनी अदायगी से, इन्होंने लोगों को खूब अपना दीवाना बनाया है। बिना देरी करे इनका प्यारा सा गाना सुनते हैं इनकी मूवी से, और आई होप इस गाने को आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि कई बार जो होता है ना, जो पुराने गाने होते हैं वो समा बांध देते हैं। फिलहाल दिन है, लेकिन यहाँ पर दिन के साथ साथ अगर लीना चंद्रवरकर की एक जो मूवी आई थी हम जोली, उसमें उन्होंने जितेंद्र के साथ में काम किया था, और उसका एक बहुत प्यारा सा गाना आपके लिए, दिल से दिल तक।

अब सायमा को दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, और एक से दो फिर रहूंगी आपके साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग लेकर के. तब तक बाय एंड टेक केयर.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून लिसनर्स, दिस इज प्लेट कूल ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो। आई एम आकांक्षा मोहन एंड होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल सैटरडे एंड एंजॉयिंग योर वीकेंड। सो लेट्स बिगिन दिस आवर ऑफ सम कूल म्यूजिक। टुडे हैपेंस टू बी द बर्थडे ऑफ द किंग ऑफ पॉप हिमसेल्फ, माइकल जैक्सन, who would have turned 68 today. So let's kick things off with one of his songs. Here's Black or White.

0: That was Ricky Martin with a song that ended up kick-starting an entire Latin pop movement in music. So now as we slip into a short break, send me your answers about your best sporting moment which you've ever witnessed, or which sport did you play growing up and do you still play it? The WhatsApp number is 9868-1070. So send me your answers.
1: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ओनली ऑन 102.6 MHz आकाशवाणी रेनबो। Before the next one, do you know, 18-year-old squash player Anahat Singh made history just last month, becoming the first ever Indian to win the World Junior Squash Championship. Future of Indian sports looks bright. The next song here is a surprise and also has a surprise Indian connection hiding inside. A Grammy-winning hip-hop hit. Can you guess it? Listen to this song first and I'll tell you.

0: Katy Perry there with Roar, co-written with Bernie Mackey, Max Martin and Dr. Luke, one of her biggest number ones. And I have a very nice message from Ira and Eka, who say their best sporting moment was witnessing the semi-finals in the stadium at recently concluded Badminton World Championship held in Delhi. The whole experience of cheering for the players and watching the world champions playing live would be etched in a memory always. Certainly so, watching live has its own benefits and charm. And before we move on, a big shout out to Team India at this year's Commonwealth Games in Glasgow, which wrapped up just last month. India finished fourth overall with 39 medals and boxing leading the way. Now it's time for a short break and stay tuned for some more cool stories and music on the other side.
1: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनल।

0: Skip Marley there, reimagining his grandfather Bob Marley's classic, One Love. A fresh take released earlier this year, carrying that same message of unity right through it. Now please stay tuned as we slip into a short break.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
0: Welcome back to Play It Cool, only on 102.6 MHz, Akashwani Rainbow. And now as we move towards the end of the show, here's the official anthem of this year's FIFA World Cup, performed live at the opening ceremony in Mexico City's Estadio Azteca. Here is DNA.

के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत नेपाल को लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा NJC ने UGC नेट 2026 के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत रहे हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अभी आप सुन रहे थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं सायमा आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। और मेरे वाले सॉन्ग में क्या कुछ है मेरे पास खास, आपके मैसेजेस। आपके जो मैसेजेस है ना, उनका बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आपका जो पसंदीदा गाना है ना, जिसे आप कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग, बिल्कुल आप तक पहुंचाया जाएगा, आपको सुनवाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपके जो मैसेज हमें मिल रहे हैं ना, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें, आपसे बहुत सारी बातें करें। आपके जो सुनने वाले गाने हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके पसंदीदा साउंड ट्रैक्स हैं, वो आपको सुनवाए जाएं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक। मैं हूं सायमा आपके साथ।

हाय, देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना। कितना खूबसूरत गाना है ना, लेकिन कहाँ देर हुई, मैं अभी थोड़ी देर पहले थी फिर आपके साथ हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हम जो है ना हमारे साथ इसी तरह से साथ देते रहेंगे, हमें प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजते रहेंगे। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा। और बिना देरी करे देखते हैं हमें मैसेज किसने भेजा है। ये मैसेज हमें भेजा है किसने, मैसेज हमें भेजा है, ये कहते हैं रेन गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ अनेजा गाजियाबाद से हमें मैसेज भेज रहे हैं, ये कहते हैं दोस्त मेरी कोई सॉन्ग चॉइस तो नहीं, मैं तो बस शो इंजॉय करता हूँ। क्या बात है, आप शो इंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे से बातें करते रहिए अपने मैसेजेस के थ्रू। फिलहाल एक

है आपके प्यारे प्यारे साउंड ट्रैक्स, जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनवाएं। अच्छा, अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैसेज हमें किसने भेजा है, ये है अमरावती महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग, गुड आफ्टरनून आरजे साइमा मैम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ये कहते हैं गीत जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, फिल्म महबूब की मेहंदी से लता मंगेशकर की आवाज़ में हमें सुनवा दीजिए। देखिए दोस्त, क्या बात है, आपको याद है, आज पता है आपको, जो आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं लीना चंद्रवरकर, उनका आज बर्थडे है, और उन्हीं की मूवी से आज एक प्यारा सा साउंड ट्रैक इनकी फरमाइश पे आपके लिए।

0: हाय, कितना प्यारा सा गाना है ना। सीरियसली, कहीं दिल पे जाके ऐसी, बस क्या बोलूँ, ऐसा लगता है ना दिल और दिमाग पे। और लता जी की आवाज़ की बात की जाए तो सच में उनकी आवाज़ आज भी अपना दीवाना बना जाती है। कितनी खूबसूरत आवाज़ है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और आपकी जो फरमाइशें हैं ना, वो भी हम तक लगातार आ रही हैं। और बिना देरी करे देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। ये मैसेज हमें भेजा है, कहते हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और ये भी ठीक है। मैं भी आपको सुन रहा हूँ। आई एम अनुभव फ्रॉम बिहार। आपकी आवाज़ अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी आवाज़ पसंद आई और आपके प्यारे प्यारे मैसेज भी हमें बहुत पसंद आ रहे हैं। आपका जो मैसेज है ना, जो आपने हमें भेजा है, ये भी बहुत प्यारा है। फिलहाल ये कहते हैं, आपका शो भी अच्छा है। आई एम अनुभव जी। अनुभव, शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, मेरा वाला सॉन्ग एक गीत सुनना चाहते हैं, हम आपके हैं कौन, ये मौसम का जादू। और ये हमें मैसेज भेजा है विजेंद्र गहलोत ने, अकोला महाराष्ट्र से। तो ये लीजिए आपका प्यारा सा साउंड ट्रैक जो आप सुनना चाहते हैं ना। और इसी तरह हमें मैसेज करते रहिए। आपके मैसेजेस को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जब तक 1 घंटे, मतलब 1 घंटा यानी कि 2 बजे तक जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपके जितने मैसेज कोशिश करूंगी कि अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। आपका प्यार इसी तरह आप हमें देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए। फिलहाल ये प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। और सीरियसली, मौसम का जादू तो है, जब साथ में होते हैं, बातें होती हैं, आपके मैसेजेस मिलते हैं, तो एक समा अपने आप बन जाता है। और फिलहाल मौसम कुछ गड़बड़ सा है, ह्यूमिडिटी है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जब इंजॉय करते हैं मौसम को तो जादू अपने आप चल जाता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि जो आपके साउंड ट्रैक्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, जो आप हमें भेज रहे हैं और हम कोशिश करें कि आपको सुनवाएं, उम्मीद करती हूँ कहीं अगर किसी दोस्त का एक आधा मैसेज, पूरी कोशिश करूंगी कि ऑन एयर करूं, लेकिन समहाउ वक्त की वजह से अगर मैं मैसेज ऑन एयर ना कर पाऊं तो दोस्त दिल पे ना लेना, क्योंकि आपको बुरा लगे, आप कहीं अफसोस में रहें तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मजबूरी है, वक्त की कमी भी कई बार होती है। लेकिन अभी तो है, काफ़ी वक्त है, बातें होती रहेंगी इसी तरह, और प्रोग्राम भी लगातार चल रहा है। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ देखते हैं, कौन हमें मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज हमें भेजा है किसने, सलीम अख्तर ने, रेशमा बेगम ने, अलीगढ़ से। और ये आदाब अर्ज कर रहे हैं जी, आदाब। अगला मैसेज हमें किसने भेजा है, ये हमें मैसेज भेजा है राहत और गुलजार ने, नैतूर बिजनौर यूपी से। और ये परदेश

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

एक छोटे से ब्रेक के बाद साइमा प्रिया आपके साथ, और इसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा आपका अपना मेरा वाला सॉन्ग। और आपके जो प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं ना, कोशिश रहेगी कि आपको सुनवाए जाए। फिलहाल एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक बताऊंगी आपको किसने किया इसकी फरमाइश, लेकिन पहले गाना सुनिए।

0: बेहद खूबसूरत गाना भी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना। और सीरियसली कहते हैं ना, ओल्ड इज एवर गोल्ड, हमेशा पुराने गानों की तो बात ही क्या है, जब सुनो तब ऐसे लगते हैं नए, वाह वाह क्या आए आए। दिल को छू गया गाना। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मैसेज, ये तो बता दूं कि गाना हमसे फरमाइश किसने की थी, जो मैसेज हमें भेजा था ना, ये हमें भेजा था, ये कहते हैं नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल और अमर खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी हमसे सुनने के लिए। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये मैसेज देखते हैं कौन है। ये हमें मैसेज भेज रहे हैं कोला रोड भोपाल से, रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, और ये भी फरमाइश कर रहे हैं खूबसूरत सा गाना सुनने के लिए। इसके साथ अगर अगले मैसेज की तरफ रुख करें तो ये कहते हैं नमस्कार जी, और ये कौन है, देखिए कहते हैं ना हमारे जो दोस्त हैं ना प्यारे प्यारे से, वो हमेशा कुछ ना कुछ खास करना चाहते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना और सुनते हैं, किसने भेजा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक साउंड ट्रैक के बाद सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए आकाशवाणी रेनबो पर।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग और आपके लगातार प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल बिना देरी करे अगले मैसेज का रुख करते हैं। वक्त की कमी भी है, साउंड ट्रैक्स लंबे हैं, लेकिन दोस्त सच बताओ ना, दिल पे बड़ा जोर सा पड़ता है जब आप हमें ऐसे मैसेज कर देते हैं ना और कह देते हैं कि भैया आप हमारा मैसेज ऑन एयर नहीं कर रहे। लेकिन माजरत चाहती हूँ इस बात के लिए, कई बार कोशिश पूरी होती है लेकिन आप समझ सकते हैं कि वक्त एक कहते हैं ना कि वक्त हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए हमें बांध के रखता है, रोक के रखता है। और जितना हो सकता है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस को इस प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोशिश यही है अभी भी कि जितना हो सके आपके मैसेजेस को अपने प्रोग्राम में लेते रहें, आपको आपकी जो फरमाइशी गीत हैं वो सुनवाते रहें। फिलहाल अगला मैसेज ये कहते हैं, आदाब आरजे सायमा जी, तुसी क्या रेडियो मिर्ची जनाब, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं कौन सी सायमा हूँ। मैं रेनबो वाली सायमा हूँ दोस्त। देखिए, जब आप प्यार करते हैं तभी आप जानना चाहते हैं किसी से कि भई आप कौन हैं। मैं रेनबो वाली सायमा हूँ और हमारा जो ये आकाशवाणी का रेनबो का परिवार है, मैं उसकी सायमा हूँ। और आपसे इसी तरह बातें होती हैं, आपसे मुलाकातें होती हैं प्रोग्राम के ज़रिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके सवाल करना जायज़ है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप हमें मैसेज भेजेंगे नहीं। आपके सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और अगले मैसेज का जो जवाब है वो मैंने आपको दे दिया, लेकिन साथ में उनकी एक फरमाइश भी है। ये मैसेज फिलहाल हमें किसने भेजा है, ये कहते हैं सॉन्ग तुमसे ही और जब वी मेट थैंक्स आरजे सायमा जी और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, जनकपुरी, न्यू दिल्ली से नियर मजेंटा मेट्रो स्टेशन से हमें मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल इसी तरह आपसे बातें होती रहेंगी और आपका जो ये प्यारा सा साउंड ट्रैक जो आप सुनना चाहते हैं आपके लिए डेडिकेटेड है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और हमारे पास वक्त की कमी भी है, जाना भी है, लेकिन बिना देरी करे जल्दी जल्दी से हमारे दोस्त जिन्होंने हमें मैसेज किया, कोशिश करूंगी कि उनके नाम ज़रूर ऑन एयर कर दिए जाएं। फिलहाल ये हमें मैसेज भेजा है किसने, भुवनेश्वर से नेताम ग्राम तरोंडी ज़िला कोंडगांव छत्तीसगढ़ से। और दोस्त, जब आप हमें नाम भेजते हैं ना, अपनी जगह का नाम तो भेजा जहाँ आप रहते हैं, लेकिन अपना नाम लिखना ना भूलें।

0: अगला मैसेज ये है, गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले से, बेडवान गांव से, सभी दोस्तों के गाने एंजॉय कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आज का भी प्रोग्राम अच्छा लगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा। देखिए नाराज़गी मैं नहीं चाहती कि आप लोग नाराज़ हों, बार बार आप अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, लेकिन माजरत चाहती हूँ, सॉरी फील करती हूँ कि कहीं आपके मैसेजेस अगर मैं ऑन एयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वक्त की कमी भी है हमारे पास और जाना भी है। अगला मैसेज हमारा ये भेज रहे हैं कौन, नमस्कार जी आपको, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हारपुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश, कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवी, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, बिल्कुल आपको गाना सुनवाया जाएगा। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, ये कहते हैं सत्येंद्र मौर्य दिल्ली करण विहार से, ये भी फरमाइशी गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपका जो फरमाइशी गाना है आपको ज़रूर सुनवाया जाए, और किसी वजह से, वक्त की कमी की वजह से अगर मैं नहीं सुनवा पाती तो फिर सॉरी। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, ये कहते हैं गुड आफ्टरनून, मेरा वाला सॉन्ग में किशोर कुमार की आवाज़ में गाना सुनवा दीजिए। अभी दोस्तों हमने बहुत सारे गाने सुने किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला मैसेज, नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून, मैं नवलू वर्क गाँव मलपण ज़िला उत्तर गोवा से, आज मुझे एक गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको एक प्यारा सा साउंड ट्रैक सुनवाया जाए। अगला मैसेज देखते हैं, ये हमें किसने भेजा है, अगला मैसेज हमें है, हेलो मैम, माय नेम इज़ पूजा कश्यप, आई लिव इन दिल्ली, सोनिया विहार, और ये भी एक प्यारा सा साउंड ट्रैक सुनना चाहती हैं। अगला मैसेज, आदाब सायमा जी, मोहम्मद इम्तियाज़ एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से, ये भी हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज, यूपी हकीमगंज से बोल सुनना चाहते हैं एक प्यारे से साउंड ट्रैक की, आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, बादशाह, और ये भी हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज देखते हैं किसका है, अगला मैसेज ये कहते हैं थैंक्स आरजे सायमा जी, नाम और सॉन्ग मेरी तो दिन बना दिया आपने आरजे सायमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दिन तो सभी का अच्छा रहता है, और उम्मीद करती हूँ जितने भी हमारे दोस्त हमें मैसेजेस भेज रहे हैं उन सबका दिन बहुत अच्छा रहे। कोशिश यही है कि आपके नाम पढ़े जाएँ, आपके जो मैसेज हमें भेज रहे हैं आप वो ऑन एयर कर दिए जाएँ। और इसके साथ साथ अगला मैसेज, नमस्कार सायमा जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आप मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए जितना वक्त उतनी कोशिश कि आपको आपके साउंड ट्रैक सुनवाया जाए, लेकिन हाँ आपने हमें मैसेज भेजा है, इसका कोशिश पूरा ये रहेगा मेरा कि मैं आपके जो नाम है वो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ, आपको सुनवाऊँ कि आपने हमें मैसेज भेजा है। ये कहते हैं कांड से मोहम्मद फुरकान, सायमा मैम गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं जनाब, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है आप ये भी एक प्यारा सा फरमाइशी गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते मेरे पास वक्त की कमी भी है। सायमा जी नमस्कार जी, नमस्कार, मैं आपके शो को एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम अनुभव, थैंक यू सो मच अनुभव, आपने हमें पहले भी मैसेज भेजा था, फिर भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज जैद और हुदा हमें भेज रहे हैं गाज़ियाबाद से, हेलो ब्रदर, मूवी से प्यारा सा साउंड ट्रैक। देखिए कोशिश पूरी है कि आपके मैसेजेज ऑन एयर करूँ, लेकिन चलते चलते कहते हैं ना कि वक्त की कमी भी है। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम रिंकू कुमार, गाँव खकौंडा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ट्यून प्यार की, बिल्कुल बहुत प्यारा सा साउंड ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस हमें भेजने के लिए। और देखिए कहते हैं ना कि कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि मैं आपको आपके प्यारे प्यारे साउंड ट्रैक सुनवा दूं, लेकिन क्या करूं वक्त की कमी भी है, मुझे जाना भी है स्वादे के साथ, अगली बार फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम को लेकर के नए अंदाज में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। सायमा को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों

संख्या बढ़कर 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत नेपाल को लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.79 रूपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

प्रकृति भी सिखाती है जीवन जीने की कला, सुदृढ़ होकर भी वृक्ष देते हैं लताओं को पनाह। वेल, आप सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियां मैंने क्यों कही। इसलिए कही क्योंकि जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं ना, तो हम शायद रियलाइज नहीं करते इस बात का, जाने अनजाने हम संज्ञान नहीं लेते कि ये जो प्रकृति है, ये जो पौधे हैं, वृक्ष हैं और खूबसूरत से फूल हैं, ये हमें ना जाने जीवन के कौन कौन से ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे पहलू दिखा देते हैं और समझा देते हैं जो शायद हम बाद में समझ पाते हैं। नहीं तो आज हमने सोचा क्यों ना इस कार्यक्रम आशियाना में आपको एक बार फिर से ऐसी एक खूबसूरत जगह की सैर कराई जाए, जहाँ पे आप भी महसूस करेंगे कि जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं, उसे सराहते हैं, तो हमारा जो सोचने का नजरिया है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो कितना चेंज होता है। कहाँ जा रहे हैं, क्या खूबसूरत देखने को मिलेगा, बस यही बताऊंगी आपको कार्यक्रम आशियाना में आकाशवाणी FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, आप सभी का करती हूँ तहे दिल से स्वागत।

0: बिल्कुल, अब उन हंसीवादियों में मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि आज हम जिन हंसीवादियों का सफर आपको कराने ले जा रहे हैं ना, वो आप आज हमारी नजरों से महसूस कर पाएंगे। वेल, इससे पहले कि ये जो सस्पेंस है जो मैंने अभी तक क्रिएट किया है ये और बढ़ता जाए, आपको जल्दी से मिलवाती हूँ अपनी साथी आरजे माला से, जो कि आज पहुंची है अमृत उद्यान। जी, आज अब हम आपको फिर से लेके जा रहे हैं अमृत उद्यान, और ओवर टू यू माला, अमृत उद्यान के बारे में आप ज्यादा बताएं तो बेहतर है हमारे श्रोताओं को। माला, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो,
1: हाय।
0: या माला, आप हमारे श्रोताओं को बताएं, आज आप अमृत उद्यान पहुंची हैं और उसके बारे में बाकी सारी चीजें आप बताएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, मैं ही बताऊंगी, क्योंकि फूलों की बगिया के बीच में मैं सबसे पहले अपने सारे FM रेनबो के लिसनर्स का स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर हूँ जहाँ पर इतनी ज्यादा धूप होने के बावजूद भी इतना सुकून है। और अगर आप कोई एक पेड़ के नीचे का कोना पकड़ के बस निहारते रहे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, तो आपको बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि बहुत तेज धूप है आज के दिन। लेकिन अगर अमृत उद्यान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अगर लिसनर्स का मन है आने का तो जरूर आए, अपना एक वीकेंड जरूर यहाँ के लिए प्लान करें। और बात करें कि अगर आना चाहते हैं और आएंगे कैसे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बता देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि आज 29 तारीख है और अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और सितंबर के आधे महीने तक ही अब अमृत उद्यान विजिटर्स के लिए खुला रहेगा। तो इसलिए 15 सितंबर से पहले पहले, यानी कि अगर आपको 15 को भी आना है तो आपको 14 तारीख के हिसाब से सुबह 10 बजे तक अपनी 15 सितंबर की टिकट्स जो है वो बुक कर लेनी है, अपनी बुकिंग कंफर्म कर लेनी है। और 10 से 6 के बीच का टाइम होता है जब यहाँ पर आकर जो लिसनर्स हैं वो विजिट कर सकते हैं अमृत उद्यान को, और लास्ट एंट्री जो है वो शाम को 5 बजे की है, क्योंकि 6 बजे जो है अमृत उद्यान बंद हो जाता है, तो उसके लिए लास्ट

0: एंट्री जो है वो शाम की 5 बजे की ली जाती है। और जब भी प्लान करें ये जरूर ध्यान रखें कि आप मंडे के दिन यहाँ ना आएं, क्योंकि मंडे के दिन यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए अमृत उद्यान को बंद रखा जाता है। और मेंटेनेंस से रिलेटेड भी जो चीजें हैं उनको लेकर काफी सारी और भी चीजें हैं जिनके रखरखाव के लिए यहाँ पर स्पेशली एक दिन को रखा जाता है कि वो उस दिन जनरल पब्लिक की एंट्री बंद रहेगी। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मंडे के लिए प्लान मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एंट्री है। एंट्री के लिए आप गेट नंबर 35 से आपको एंट्री मिलेगी जो कि नॉर्थ एवेन्यू रोड पर है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से शटल सर्विस आपको मिलेगी यहाँ तक आने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम मेट्रो से नहीं आएंगे, हम तो पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, तो फिर उस केस में ये है कि अगर आप पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं तो फिर आपको गाड़ी से ही आना होगा। और अगर आप गाड़ी से आने का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर पार्किंग भी मिलेगी, तो आप पार्क कर सकते हैं नॉट इनसाइड राष्ट्रपति भवन, बट डेफिनेटली बाहर आपको कई ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां पर आप गाड़ी को पार्क करके और अंदर आ सकते हैं। अगर आप 6 लोग एक बारी में आ रहे हैं तो सिंगल टिकट पर आप आ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप लिमिट जो है वो 6 लोगों की है। और अगर आप किसी स्कूल की तरफ से आ रहे हैं या आपका कोई अपना ही कोई ऑफिस का ग्रुप है तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अपने जो टिकट्स हैं पहले से ही आप अपने बुक कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली टिकट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी जानकारी, इसीलिए क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना जब भी हम किसी अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं कि चलिए आज जा रहे हैं अमृत उद्यान घूमने के लिए, पर ये तो पता होना चाहिए ना कैसे पहुंचा जाए और क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए। टिकट ऑनलाइन बुक करनी है, आप टिकट वहाँ पर नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क ये टिकट है, इस पर कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है। साथ साथ कौन सा दिन ऐसा जो बंद रहेगा, वेल आई एम श्योर आप सभी के पास ये इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो माला द्वारा पहुंच गई है। बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि जब मेरी माला से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो सिर्फ देखकर ही उस खूबसूरती को किस तरह से जज्ब कर रही हैं और किस तरह से इंजॉय कर रही हैं अपना वहां होना। तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी हमारे लिस्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मौका मिले, टाइम मिले, क्योंकि विंडो भी आई एम श्योर माला बहुत लंबा है, 16 अगस्त से शुरुआत हुई है, 15 सितंबर तक खुला रहेगा, तो आई एम श्योर इतना समय तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि एक बार अमृत उद्यान घूमा जाए और ये जो प्रकृति की छटा बिखरी है वहां उसे सराहा जाए।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ और ऐसे सरप्राइजेस हैं जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। जैसे आज का दिन एक प्लेजेंट सरप्राइज रहा मेरे लिए। क्या था वो प्लेजेंट सरप्राइज, ये मैं आपको बताऊंगी। आप एक बेहतरीन गाना हमारे लिसनर्स को सुनाएंगी तो उनका ये जो क्यूरोसिटी है ये और ज्यादा बढ़ेगी, और उसके बाद जब सरप्राइज खुलेगा तब समझ आएगा कि वाह क्या खास बात है आज और क्या खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, अब तो जो माला है ना, माला भी समझ गई है कि आज हम आपको ये जो सस्पेंस है ना इसका सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और हम आपकी क्यूरियोसिटी को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। क्या कुछ खास बताने वाले हैं माला आपको, क्या खास दिन है, और अगर आज खास दिन है तो अमृत उद्यान में आज क्या खास है। बस जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। इस प्यारे से खूबसूरत से गाने के बाद फिर से जुड़ेंगे माला के साथ और जानेंगे उस खास दिन के बारे में।

0: वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज आशियाना में सैर करते करते हम पहुंचे हैं अमृत उद्यान, और अमृत उद्यान में आज हमारे साथ जुड़ी हैं माला। माला, बिल्कुल एक बार फिर से आ गए हैं हम, पहुंच गए हैं आपके पास, और आप कुछ खास दिन के बारे में आज कुछ बता रही थी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: जी, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो उन्हें आज के दिन के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ वो उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज 29 अगस्त के दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे का दिन है आज का, और ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका एक खास कनेक्शन अमृत उद्यान के साथ भी है। और वो खास कनेक्शन ये है कि आज के दिन अमृत उद्यान को खास तौर पर डेडिकेट किया गया है उन विजिटर्स के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है, और अभी मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में हूँ, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये जानने के लिए कि किस तरह से उन्होंने अमृत उद्यान का प्लानिंग की, और किस हिसाब से या कितने लोगों के साथ वो आए हैं, कैसा माहौल है, और कितना प्रिविलेज्ड फील करते हैं वो जब अमृत उद्यान के लिए उनको स्पेशल इनविटेशन मिलता है। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी आपका,
2: वीरेंद्र चौहान।
1: वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे अमृत उद्यान का जब इनविटेशन या पता चला आज के दिन की ये खास तौर पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, तो कितना एक्साइटमेंट और कितनी खुशी फील होती है इस बात की?
2: वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है और प्राउड भी फील होता है, क्योंकि हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाते भी हैं और आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट भी होता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में।
1: जी, कौन से स्कूल से आप आए?
2: मैम, SBB बिनोर नगर, नूर नगर। सर्वोदय बाल विद्यालय नूर नगर, जामिया नगर।
1: ओके, तो जब आपको ये पता लगा कि अमृत उद्यान आज के दिन खास तौर पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, तो आपने किस तरह से अपनी बुकिंग को कन्फर्म किया, वो प्रोसेस हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: मैम, बुकिंग के लिए ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड है, हम उस पर गए और उसमें ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल भी आता है और ग्रुप के साथ भी आता है, तो जैसे भी आपको सही लगे आना हो उस हिसाब से, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे कोई चार्ज वगैरह भी नहीं उसका।
1: हमारे साथ है एक और स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं,

0: जी. आपका नाम सर सबसे पहले?
1: मेरा नाम कुमार सुशीराज हुआ. मैं बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन से हूँ, जो कि जिसके बच्चे पूरे देश स्तर पे, वर्ल्ड स्तर पे अभी योगासन योग गेम में मेडल जीते हैं. और काफी अच्छा सौभाग्य था कि हम अमृत उद्यान में, मैंने देखा इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं देखा था. तो काफी ज्यादा मैं इसे सौभाग्य भी कहूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन का ओकेजन था. मैं अपनी सिस्टर से राखी बंधवाने आया था यहाँ पे पालम, जीजा जी इन्हें वाला ऑफिसर है, और उसी के साथ पास में अमृत उद्यान भी था. और यहाँ मैंने देखा कि आज स्पोर्ट्स डे भी मनाया गया, उसी को लेकर मैं आया था. और मैं सभी से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इजिली आप इंस्टाग्राम पे भी QR कोड दिया गया है राष्ट्रपति भवन के साइट पे, उसे स्कैन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अभी 16 सितंबर तक आप लोग आ सकते हैं. तो काफी शानदार रहा, और अपनी फैमिली के साथ मैं घूम रहा हूँ.
0: तो आपके लिए तो बेहद खास है, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, और ये बड़ा ही, जैसे कहते हैं कि प्लेजेंट सरप्राइज हो गया कि इतनी दूर से आप राखी के लिए आए, और उसके बाद आपने एक स्पेशल आज का विजिट अमृत उद्यान का भी प्लान कर लिया, तो डबल मजा हो गया.
1: बिल्कुल मैम, ये तो सौभाग्य ही कहा जाएगा इसको, कि दोनों काम हो गए, रक्षाबंधन भी हो गया, स्पोर्ट्स डे पे एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते हो गया, और फैमिली भी आ गई, और जब परिवार साथ में होते हैं तो डबल मजा हो जाता है किसी भी चीज का.
0: तो अब और भी जो लोग हमें सुन रहे हैं आज और अमृत उद्यान आना चाहते हैं, उनको एक खास बात आप अमृत उद्यान के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: खास बात ये है मैम कि यहाँ पे आके दिल्ली में भी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में, और कह सकते हैं कि हमारे देश की राजधानी ही है, वहाँ पे आके इतना शांति का वातावरण, इतने पेड़, इतना सुंदर, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन आपको घूमने का मौका मिल रहा है. तो इस मौके को आप लोग न गवाएं, बिल्कुल 16 सितंबर से पहले आप लोग आके जरूर घूमें यहाँ पे. जो दिल्ली का सेक्रेटेरिएट है वो मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से बसें यहाँ पे आ रही है, आप लोग आके जरूर घूमें.
0: बहुत बहुत शुक्रिया. तो दीपांशी, जैसे कि आपने जाना कि फैमिली के साथ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक तो अपना जो करियर है वो इतना प्यारा करियर है उनका कि वो बहुत पसंद करते हैं, और फिर उसके साथ साथ अगर उन्हें उसी करियर की वजह से ये मौका मिले कि अपनी फैमिली के साथ फन और एंटरटेनमेंट का एक डबल मजा उनको मिल जाए, तो वो आज अमृत उद्यान की तरफ से उनको दिया गया है.
2: बिल्कुल माला, मुझे लगता है कि बहुत ही एक परिवार, पूरे परिवार के लिए बड़ी गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि वो खेलों से जुड़े हुए हैं, और आज जब हर एक खिलाड़ी के लिए इतना स्पेशल डे है कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, उस दिन जाकर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, और इतनी खूबसूरती, इतनी शांति. एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी जब आपने उनसे पूछा कि यहाँ क्या खास लगा, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसी शहर में जहां पे हर कोई व्यस्त है, जद्दोजहद में है और भाग रहा है, दौड़ रहा है, वहां आपको सुकून के कुछ पल मिल जाए और आप बिल्कुल प्रकृति के बीच में बैठ जाए, तो क्या बात है. ऐसा दिन शायद हर कोई इंजॉय करना चाहता है, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रही है. उसके साथ एक जरूरी बात और, अभी हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े थे, विजिटर जुड़े थे, उन्होंने एक बात और बताई कि जब आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो मेट्रो से आप जब पहुंचेंगे अमृत उद्यान, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट शटल बसेस भी चलाई गई हैं, एंड मुझे लगता है कि हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पर चल रही हैं. एम आई करेक्ट माला, आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पर ये शटल बसेस का जो सुविधा है उपलब्ध कराया गया है?
0: बिल्कुल, और उसके हिसाब से भी देखा गया है कि अगर विजिटर्स बहुत ज्यादा हैं तो विजिटर्स को ज्यादा इंतजार भी ना करना पड़े, तो उसके हिसाब से भी अल्टरनेट अगर उनको रूट्स बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा.
2: बहुत खूबसूरत. चलिए एक बार माला फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, और इतने प्यारे विजिटर्स के साथ हमारी बातचीत कराने के लिए, हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर से लौटते हैं, और उससे पहले इंजॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक.

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।

0: रे, कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
1: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
2: इग्नोर नहीं, याद करो।
3: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज आशियाना के इस खूबसूरत सफर में आप हैं मेरे यानी दीपांशी के साथ। आज हम आपको सैर करा रहे हैं अमृत उद्यान की। एक बार फिर से लौटेंगे उसी खूबसूरती के बीच। आप एक गाना एंजॉय कीजिए, मैं माला के साथ जल्दी से वापस आई।

0: वेलकम बैक। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम आशियाना में।
1: एक बार फिर से जो हमारे
0: चलते हैं उस खूबसूरत सफर पर जहां अमृत उद्यान से हमारे साथ जुड़ी हैं माला जी। माला, एक बार फिर से स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशी। और जैसा कि आप सुन भी रही होंगी कि मैं अभी यहाँ पर अमृत उद्यान की गार्डन मेंटेनेंस की टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ और बड़े एक्साइटमेंट के साथ सब मुझे यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से गार्डन को मेंटेन किया जाता है, कितने पहले से तैयारी की जाती है और जब मेंटेनेंस होती है तो उस समय किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं उन्हीं के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
3: नमस्कार मैम, मैं नवीन चौहान, गार्डनर राष्ट्रपति भवन
2: जी। जानना चाहेंगे आपसे अमृत उद्यान साल में कितनी बार खुलता है और उसकी मेंटेनेंस के लिए आप जनरली किस तरह के एफर्ट्स करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं?
3: मैम जनरली दो बार खुलता है और एक सर्दियों में खुलेगा, बाद में फरवरी से जनवरी और मार्च तक, और एक अभी 16 अगस्त से और 15 सितंबर तक खुला
2: जी।
3: तो उसके लिए हमें मतलब गार्डन खुलने से पहले 4-5 महीने तैयारी करनी होती है
2: जी।
3: जैसे अभी अब खुल रखा है 15 सितंबर तक, तो ये पौधे उखड़ेंगे फिर हम आगे की तैयारी करते हैं, तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: और जब यहाँ पर विजिटर्स आए तो एक से एक बेहतरीन जो फूल हैं उसकी वैरायटी उनको देखने के लिए मिले, इसके लिए आप किस तरह के खास तैयारियां करते हैं और कई बार फंस भी जाते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, वो क्या है? जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आपका नाम?
3: मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और हम सीनियर गार्डनर हैं और यहाँ पे हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इस पे 3 महीना काम करना पड़ता है, उसके बाद हमें फ्लावर मिलते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी के डहलिया हो या हमारा जरबेरा हो या ट्यूलिप हो, ट्यूलिप के लिए भी हमें अच्छे काम करने, या गुलदावरी हो, या हमारे पास जो कम से कम 42 क्वालिटी का गुलाब है इसमें भी हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद हमारा ये आप जनवरी फरवरी और मार्च तक जो फ्लावर मिलते हैं सब टॉप क्वालिटी के, इसके लिए हम लोग लग जाते हैं 15 सितंबर के बाद से कंटिन्यू और ओवर टाइम करके ही हम लोग करना मेंटेनेंस करना पड़ता है। इतने करना पड़ता है कि जो हमारे जो जनवरी लास्ट में 26 जनवरी से हम लोग को देखा जाता है कि 26 जनवरी के टारगेट किया जाता है कि उस समय हमारे एट होम यहाँ पे होते हैं सारे, जितने विदेश से भी कुछ लोग आते हैं डेलीगेट और हमारे यहाँ के पीएम होते हैं सारे, तो उस समय ही हमारा
4: गार्डन तैयार होता
3: है। मेरा फोकस 26 जनवरी का होता है और 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी से हमारा गार्डन आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है, वो 31 मार्च तक होती है।
2: अच्छा, तो वो काफी लंबा टाइम है।
3: हाँ,
2: यहाँ पर खूबसूरती का, प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद
4: उठाने के लिए 2 महीने के लिए वो खुल जाता है।
2: एक आपसे थोड़ा टफ सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कभी गार्डन को मेंटेन करने में या कभी अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसी तरह की कोई समस्या फेस करते हैं आप?
4: नहीं, कभी समस्या हमारे साथ ऐसी हुई नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है रात को भी दिन में भी काम करके एक्स्ट्रा टाइम में भी लगा करके हम उस काम को पूरा कर लेते हैं। सोमवीर
2: जी, सर आपसे जानना चाहेंगे जब गार्डन को मेंटेन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक जो प्रजातियां हैं फूलों की, पेड़ों की, तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो जो फूल है या वो जो पेड़ है वो उसका सीजन नहीं है, तो इसलिए उसमें अच्छी आपको प्राकृतिक छटा देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसे में आप क्या करते हैं?
5: नमस्ते मैडम, मेरा नाम हरिंदर सिंह है, मैं सीनियर माली हूँ अमृत उद्यान में। तो हमारे को मैडम उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है, हमारे को जैसे पता है कि 1 महीने के लिए गार्डन खुलता है तो उसको उसी हिसाब से हमारे को या तो गमले में उसको तैयार करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले खिल के तैयार हो जाता है, तो हमारे को उसी हिसाब से उसका देख रेख करनी पड़ेगी और गमले में तैयार करके, ताकि हम पहले वाला अगर समाप्त हो जाता है तो दूसरे को हम उसको रिपेयर कर देते हैं।
2: तो मतलब बहुत त्वरित कार्रवाई होती है और बिल्कुल ये कोशिश की जाती है कि जो भी यहाँ पर विजिटर्स आए उनको प्राकृतिक छटा देखने का पूरा आनंद मिले और उसके लिए हर

0: हमारे पास है, गजनिया है, और जो भी हमारे गलेडिया हुआ, ये जो बाकी कसमस हुआ, कहना हुआ, ये इनका
1: अपराजिता हो गया।
2: अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये आप तो गार्डनर्स हैं, आपको तो सारी किस्मों के बारे में पता है, अगर एक आम दर्शक यहाँ आता है और वो जानना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में, तो वो कैसे जान पाएगा?
3: मैडम बार कोड लगे हुए हैं, जगह जगह बार कोड लगे हुए हैं, और आप पढ़ के, और उसमें अब तो गूगल का भी है सारा, तो आप उसमें भी देख के आप पता कर सकते हैं। बाकी हमारे से भी हमारे गाइड लगे हुए हैं यहाँ पे गार्डन में, अगर आप उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं।
2: तो गार्ड्स जो है वो सरकारी है, गाइड्स जो है वो सरकारी है,
4: वो प्राइवेट है, उनको ये इसीलिए रखा जाता है हर एक महीने और अगले दो महीने।
2: तो क्या उनको कुछ पे करना होता है उनकी?
4: हाँ जी, हाँ जी, उनकी तनख्वाह है, एक पर डे 1000 रुपया उनकी मंथली सैलरी है।
2: तो गाइड्स को किस तरह से बुक किया जा सकता है, यहाँ आने के बाद बुक कर सकते हैं?
1: नहीं, ये तो सर अंदर के गाइड आप बुक नहीं कर सकते, ये यहाँ अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना, हर एक पॉइंट बना उस पॉइंट पे जाइए, गाइड मिलेंगे, आप उनसे जो भी पूछना है ना वो बताएंगे। अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम गार्डनर गाइड तो जो भी है, हम गार्डनर किसी से आप किसी कोई भी क्वेश्चन करें, हमारे जो भी टीम है, हमारे गार्डन के जितने स्टाफ है तत्पर रहते हैं बताने के लिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, 100% सही और सटीक जवाब देंगे।
2: तो जो आपने कहा गाइड्स हैं, गाइड्स को क्या विजिटर्स को पे करना होगा?
1: नहीं, कोई विजिटर कोई नहीं, ये हमारे राष्ट्रपति भवन पे करती है।
2: अच्छा, तो गाइड्स कैसे मिलेंगे, क्या उनका कोई यूनिफॉर्म होता है, हम कैसे पहचाने?
1: उनके पास यूनिफॉर्म होता है, वो अमृत उद्यान और गाइड, उनके पीछे गाइड लिखा हुआ होता है,
4: लिखा हुआ होता है अमृत उद्यान।
2: अच्छा, तो अमृत उद्यान की उन्होंने जैकेट पहनी है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि वो यहाँ गाइड है,
4: यहाँ का गाइड है।
2: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, और खास तौर पर जो आपने बताया कि यहाँ पर गाइड्स अवेलेबल हैं, और वो आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में भी अगर आप जानना चाह रहे हैं, पौधों की या फिर पेड़ों की, तो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट।
5: माला, आप मुझे सुन पा रही है? माला,
2: हाँ जी, हाँ जी
5: जी। माला, आपके साथ ना जो ये बागवान जुड़े हुए हैं, इनके लिए, इनके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जो मेरे मन में आया, मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रश्न उनसे पूछने से पहले कुछ पंक्तियां, क्योंकि हमारे इतने श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी FM रेनबो के माध्यम से, और आप अभी जिनके साथ हैं, ये जो पूरा अमृत उद्यान का हम इतने दिनों ये इस प्रकृति की जो अनोखी छटा बिखरी हुई है ना, इसका जो आनंद ले पाते हैं, केवल इन्हीं लोगों की वजह से है, क्योंकि दिन रात ये जो इतनी मेहनत करते हैं उस बगीचे को बनाने में। तो कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप उनको सुना पाए।
2: बिल्कुल, वो सुन रहे हैं।
5: सूखी डाली को छाटता प्यार से, सींचता पौधों को दिलो जान से, धूप हो कड़क या छांव घनी, पूरी करता हर क्यारी की बनी, हाथों में लेकर खुरपी पानी, वह लिखता हर पौधे की कहानी। इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, आपसे मेरा केवल इतना प्रश्न है, इस खूबसूरत काम के पीछे, जहां आपको पता है कि कभी बहुत कड़क धूप है और कभी छाव भी है, दिन रात इन पौधों को अपने बच्चों की तरह सींचना पड़ता है, तब जाकर ये वो अपने खूबसूरती में, अपने उस पूरे रूप में आते हैं जो हम देख पाते हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा है कि आप इस काम के साथ जुड़े हुए हैं?
2: जी
6: मैम, इसके पीछे प्रेरणा क्या है कि जो हम यहाँ भर्ती हो रखे हैं, तो हमें ऐसा ही नहीं कि मतलब कहीं उठा के ला रखे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पहले से डिप्लोमा है, फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेरे साले बढ़ते हैं वैसे हमें एक्सपीरियंस होता रहता है
5: जी।
6: तो हमें मतलब ये है कि हम ऐसा है कि जैसे घर हमारा जो घर घर से भी हम बागवानी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैम हमें आदत पड़ी हुई और तन मन धन से हम इस कार्य को मतलब सुचारू रूप से करते हैं।
2: और दीपांशी, कुछ अपनी तरफ से भी हमारे गार्डनर टीम के एक सदस्य आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
6: मैम मैंने भी पिछले जब दिसंबर में खुला था जनवरी में, तो मैंने उस टाइम मीडिया की टीम आई थी, तो कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने।
5: अरे प्लीज प्लीज बताएं,
6: मैं लिखता भी हूँ, तो उसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। अमृत उद्यान की हरियाली में राष्ट्रपति भवन की अद्भुत शान, दिल्ली की धरती पर ऐतिहासिक गाथा की अमिट पहचान। अमृत उद्यान में उद्यान कर्मियों के हाथ हर पौधे को देते हैं नया जीवन नया खुशबू का साथ, हर जीवन नया जीवन नया खुशबू का साथ।
2: क्या बात है, तो ये तो दीपांशी जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया, चार लाइनें आपकी और चार लाइनें यहाँ की, और कुल मिला के खूब सारा प्यार, खूब सारा एंटरटेनमेंट।

0: एंटरटेनमेंट और खूब सारा उत्साह जो दोनों तरफ से है, अमृत उद्यान की टीम की तरफ से भी और आकाशवाणी एफएम रेनबो की टीम की तरफ से भी।
1: बिल्कुल, आज आपने हमें जब इन बागवानों से मिलाया ना, तो सच मानिएगा ये जो अमृत उद्यान का हमारा ये जो सफर है ना, ये और खूबसूरत आपने बना दिया है। तहे दिल से आपको भी शुक्रिया माला कि आप इनके साथ जुड़ी और इनकी ये जो दिल की बातें हैं और किस तरह से ये तन मन से जुड़े हुए हैं अपने इन प्यारे फूलों के साथ और ध्यान रखते हैं इसका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं तो मुझे अभी शायद मेरे जो शब्द है ना वो इस बात के साथ शायद न्याय ना कर पाए कि मुझे कितना अच्छा लगा इन सभी लोगों को सुनकर कि किस तरह से बच्चों की तरह सींचते हैं इन पौधों को, किस तरह से बच्चों की तरह सींचते हैं इन फूलों को, किस तरह से अपना तन मन लगा देते हैं उस बगिया को संवारने में, उस प्रकृति को निखारने में, उस पौधे की हर कहानी को लिखने में, और किस तरह से वो एक खूबसूरत सी कहानी पहुंचाते हैं हम दर्शकों तक जब हम जाते हैं इन पौधों से मिलने के लिए, प्रकृति में बिखरी हुई यह खूबसूरत सी छटा को देखने के लिए। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ कार्यक्रम आशियाना में। आज हम सैर कर रहे हैं अमृत उद्यान की और अमृत उद्यान से हमारे साथ जुड़ी हुई है माला। कहीं जाइएगा नहीं, ये सफर अभी थोड़ा सा बाकी है। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं आपके साथ दीपांशी।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। और आइए एक बार आखिरी बार चलते हैं माला के साथ, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। माला बिल्कुल कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं हम, तो
5: जी
4: कुछ अंत पे जो कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से।
5: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि हमारा ना ये सपना होता है, जब हम शहरों में रहते हैं तो हमारा ये सपना होता है कि हम प्राकृतिक सुंदरता को बिल्कुल सामने से देखें। हमने कई बार जहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ वाला एरिया होता है, जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड होता है, वहां से हमें दूर से मोर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज मैंने सामने से मोर देखा है यहाँ पे और वो बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे कोई साथ में मेरे कोई साथी चल रहा हो और वो बिल्कुल निश्चिंत होके यहाँ पे घूम रहा है। दूर से मैं सुनते हुए आ रही थी कि मोर की आवाज है, लेकिन सामने जब मैंने देखा मोर तो उसके अंदर भी कोई घबराहट नहीं है कि इंसान मेरे सामने चल रहा है। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा है। और ऐसी ही बहुत सारी ब्यूटिफुल चीजें लोगों को भी देखने को मिलेंगी अगर वो अपना प्लान करते हैं अमृत उद्यान की विजिट के लिए। और एक खास बात जो चलते चलते मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आज राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया गया और यहाँ पर बुलाया गया खिलाड़ियों को, उसी तरह से 5 सितंबर को टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर यहाँ पर टीचर्स को इनवाइट किया जाएगा और उस दिन जनरल विजिटर्स के लिए एंट्री नहीं होगी। तो इस चीज का बस ध्यान रखें। उसके अलावा आप बिल्कुल सितंबर के महीने में भी प्लान कर सकते हैं और अमृत उद्यान को देखने आ सकते हैं।
4: बिल्कुल, तो माला बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें अपनी नजरों से ये जो खूबसूरत सफर आज कराया है अमृत उद्यान में, जो छटा बिखरी हुई है उससे रूबरू कराया है हमें और हमारे श्रोताओं को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: बहुत बहुत शुक्रिया।
4: तो माला हमारे साथ जुड़ी थी अमृत उद्यान से और आज जिन लोगों के साथ हम जुड़े, बात की, अमृत उद्यान उनकी नजरों से देखा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि अब मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है घूमने जाने के लिए वो है अमृत उद्यान। और आप सभी से ये निवेदन है, टाइम मिले, समय अगर इजाजत दे

तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो एक खूबसूरत मौका मिला है, सच मायने में खूबसूरत मौका है, इस मौके को मिस ना कीजिएगा, जाइए और ये जो प्रकृति की छटा बिखरी हुई है ना, इसका आनंद जरूर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, ठीक 4 बजे लेकर आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जन, अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: कहते हैं इलाज से बेहतर है बचाव, और जब बचाव सिर्फ एक टीके से संभव हो तो उसे नजरअंदाज क्यों करें। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी

0: बीमारी की, जिसके बारे में जागरूकता और समय पे टीकाकरण लाखों महिलाओं की जिंदगी बचा सकता है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन। आज हम जानेंगे एचपीवी वैक्सीन क्या है, किस उम्र में लगवानी चाहिए और कैसे ये हमारी बेटियों और महिलाओं को एक गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के माध्यम से बचाव पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है।
1: जी, आम भाषा में कहूँ तो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको हम यूट्रस के बाद सर्विक्स के नाम से जानते हैं, तो सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से लेकर के 65 साल से भी ज्यादा तक की औरतों को इन्वॉल्व कर सकता है, और इसके लक्षण जो है वो काफी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखावट दुखने वाले होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है मरीज को, पेन हो सकता है, नीचे से गंदा पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, और इस तरह की तकलीफ है, और या फिर संबंध करने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो आप बिल्कुल जागरूक हो जाइए कि ये सब जो निशान है वो सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं, और इमीडिएटली आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन चेकअप करा के इलाज कराना चाहिए।
0: तो इसके होने के और कोई कारण है?
1: जी, सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक वायरस के कारण होता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और ये एचपीवी इन्फेक्शन के बाद काफी लंबे समय तक, मतलब कैंसर के सिम्टम्स जो है वो डेवलप नहीं करते हैं, तो इसका बचाव जो है हम कैंसर के लक्षण आने के बहुत पहले हम कर सकते हैं। सो अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया है तो हम सही समय पर सही इलाज करके मरीज को कैंसर से बचा सकते हैं।
0: तो जैसे कि आपने अभी कहा कि इसके लक्षण अगर हमें पता लग जाएं तो हम इसको बचा सकते हैं, तो लक्षण और बचाव पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब जागरूकता हो। इसीलिए हम आज के शो में आपको, सभी महिलाओं को, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले कहा था कि अगर हमें लक्षण पता हो तो हम बचाव कर सकते हैं, तो क्या लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के?
1: जी, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं जैसे ब्लीडिंग होना, महावारी के बाद ब्लीडिंग का लगातार होते रहना, या फिर संबंध करने के बाद ब्लीडिंग होते रहना, या फिर नीचे के रास्ते गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज होते रहना। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं, और इसलिए तुरंत ऐसा होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा।
0: और हम बचाव कैसे कर सकते हैं?
1: जी, बचाव के लिए, चूंकि हमें पता है कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, तो आजकल हमारे पास HPV वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और HPV वैक्सीन्स लगाने से हम सर्वाइकल कैंसर को, HPV इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। सो अगर HPV इन्फेक्शन नहीं होगा तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो नहीं होगा। तो HPV वैक्सीन लगवाना होता है और इससे बचाव कर सकते हैं।
0: तो HPV जो वैक्सीन है, ये क्या काम करती है, क्या रोल रहता है इसका?
1: जहाँ जैसे कि मैंने अभी बताया कि HPV वैक्सीन से जो है वो HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। तो HPV वायरस के कुछ जैसे जो कैंसर वाले जो वो है वेरिएंट्स हैं, HPV 6, 11, 16, 18, ये कैंसर वाले वेरिएंट्स हैं, तो ये इन इन्फेक्शन को होने से रोकता है। सो अगर HPV वैक्सीन लगा दिया तो HPV इन्फेक्शन नहीं होगा, और HPV इन्फेक्शन नहीं होगा तो सेम वे सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा।
0: तो HPV वैक्सीन जो है, ये किस उम्र में लगवानी चाहिए, मतलब किस उम्र से महिलाओं को या बेटियों को, बच्चों को, गर्ल्स को, फीमेल्स को लगवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए?
1: जी, बहुत ही सही सवाल है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, और ये बहुत सही माध्यम है उनको सही जानकारी देने का कि HPV वैक्सीन जो है वो 9 साल की उम्र से ही लगा सकते हैं आप। अगर आपकी बेटी 9 साल की है तो 9 साल से लेकर के 26 साल तक पहले रिकमेंडेड था, लेकिन आजकल इसको 45 साल तक कर दिया गया है। सो 9 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक HPV वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं, और इसको लगाने से सर्वाइकल कैंसर से बचाव पॉसिबल है।
0: तो जैसे आपने कहा कि 9 साल की उम्र से लगवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो अगर ये एक बार लगवा दी तो वो लाइफ टाइम होती है, या इसके भी रिपीट लगवाना पड़ता है?
1: या हर वैक्सीन का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो HPV वैक्सीन के अगर 15 साल से कम की है बच्ची, 9 से 14 के साल की है, तो इसमें जो है 2 डोज, सिंगल या डबल डोज मैक्सिमम। पहला डोज लगाने के 6 से 12 महीने के बाद आप दूसरा डोज लगा सकते हैं, लेकिन 15 से 45 साल के एज ग्रुप में जो है वो 3 डोजेस रिकमेंडेड है, 0, 6 एंड 12 मंथ्स।
0: तो अगर कोई महिला मैरिड है तो वो आफ्टर मैरिज भी लगवा सकती हैं?
1: हाँ जी, बिल्कुल लगवा सकते हैं आफ्टर मैरिज। ऑल्दो बेस्ट होता है कि बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले ही लगवाया जाए वैक्सीन, बट इवन आफ्टर मैरिज वैक्सीन लगा सकते हैं। बट यहाँ पे एक चेतावनी है कि HPV वैक्सीन लगाने से आप ये ना समझें कि आपको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग से मुक्ति मिल गई। HPV वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको जो है अपना स्क्रीनिंग जो है वो कराना होता है, चाहे वो आप पैप स्मियर से कराएं या फिर HPV टेस्टिंग से कराएं। अलग अलग तरीके हैं जो कि जो आपके बगल के हॉस्पिटल में

0: जो भी अवेलेबल है आपको स्क्रीनिंग कराना ही होता है, इवन इवन दो आपको HPV वैक्सीन लग चुका है।
1: तो जैसे कि अगर सर्वाइकल कैंसर किसी को है तो, और उसने पहले नहीं ले रखा ये वैक्सीन वगैरह, तो बाद में लग सकती है वैक्सीन? नहीं,
0: एक बार सर्वाइकल कैंसर हो गया तो फिर अब उसका इलाज करना जरूरी है। वैक्सीन का रोल तब है जब उससे बचाव करना है।
1: जी
0: तो अगर आपको ऑलरेडी डायग्नोज हो गया है, बायोप्सी में प्रूव हो गया है कि अगर सर्वाइकल कैंसर है, तो उस समय वैक्सीन का रोल नहीं है। आपको उस समय जो है वो प्रॉपर पूरा उपचार करने की जरूरत है, जो कि आपको हॉस्पिटल में जाके कराने की जरूरत है। वैक्सीन का रोल तब नहीं है जब ऑलरेडी कैंसर हो चुका है।
1: तो जिन लोगों ने लगवा ली है तो वो पूरी तरह सर्वाइकल कैंसर से बच सकते, उसके बाद चांसेस तो नहीं कि हाँ हो जाएगा, यह होता है?
0: नहीं, इसीलिए मैं बता रही हूं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी संभावना है कि हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन्स हैं वो कुछ ही वेरिएंट्स के लिए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्सिनोजेनिक वेरिएंट्स हैं, जो अलग अलग तरह के वैक्सीन डेवलप हुए, किसी में 4 हैं, किसी में 9 हैं HPV टाइप्स, या फिर किसी में 2 ही हैं। तो फिर अलग अलग तरह के वैक्सीन हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 4 या 9 वेरिएंट्स HPV टाइप को टारगेट किया है, तो इन्हीं से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सारे वेरिएंट्स को ये कवर नहीं करता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि HPV वैक्सीन के बावजूद भी किसी और वेरिएंट से इन्फेक्शन होगा अगर, तो फिर खतरा रह सकता है सर्वाइकल
1: तो
0: कैंसर
1: जैसे
0: का।
1: आपने अभी स्क्रीनिंग का कहा, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
0: जी, स्क्रीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन है और आज तक प्रचलित है, उसमें हम पैप स्मियर कहते हैं। इसमें जो पेशेंट है, मतलब औरतों को हॉस्पिटल जाना होता है और वहां डॉक्टर जो है पैप स्मियर टेस्टिंग करते हैं, उनके बच्चेदानी के मुंह से सैंपल लेते हैं और उसको जो है वो भेजते हैं साइटोलॉजी के लिए। और उस पैप स्मियर की रिपोर्टिंग में अगर मतलब जो भी CIN, जो कैंसर के पहले के चीज है, वो अगर डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट तभी कर दिया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर तक वो प्रोग्रेस ना करे। तो एक तो पैप स्मियर टेस्टिंग होता है। आजकल HPV टेस्टिंग जो है उसको प्राइमरी स्क्रीनिंग की तरह से यूज किया जाता है। तो मतलब HPV वायरस का ही टेस्टिंग हो जा रहा है। सो अगर किसी महिला में HPV टेस्टिंग पॉजिटिव आता है तो फिर उसका आगे तुरंत इलाज कर दिया जाता है। तो दोनों तरीके हैं, मतलब आप जो अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में वो करा सकते हैं, पैप स्मियर या HPV टेस्टिंग। कहीं गांव वगैरह में जैसे ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे एक विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं, मतलब आंखों से देखना और उसमें जैसा सर्विक्स दिख रहा है और उसमें फिर एसिटिक एसिड लगा करके उसको टेस्ट करके, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि सर्विक्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो और एबनॉर्मल जिनका आएगा उनको फिर हम रेफर करते हैं टू हायर सेंटर, ताकि उनका पूरी तरीके से इलाज और जांच हो पाए।
1: तो कुछ ऐसा भी होता है कि किन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है, कुछ केसेस इसके लिए डिफरेंट होते हैं?
0: जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वैसे इसमें कुछ, इसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो वो महिलाएं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में काफी कम एज में एंटर कर जाती हैं, या फिर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या जो स्मोक करती हैं, या फिर किसी महिला को HIV है, तो इन सब औरतों में इसके कैंसर होने की संभावना जो है वो ज्यादा होता है, HPV इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर दोनों। तो इन बातों का ध्यान रखना है और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है ताकि इस तरह से हम बच सकें सर्वाइकल कैंसर से।
1: वैसे तो हम फीमेल्स पे आज बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं के साथ, क्या पुरुष में भी लगती है ये?
0: जी, मतलब HPV इन्फेक्शन जो है, जो वायरस का
1: जी
0: इन्फेक्शन है, वो मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है। फीमेल में सर्वाइकल कैंसर करता है एंड मेल में इट कॉजेज एनल कैंसर एंड एनल वॉर्ड्स। तो मतलब लेटरिन के रस्ते में कैंसर या जो वॉर्ड्स होते हैं वो भी HPV इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो मेल्स में इस वैक्सीन के कारण, जो HPV वैक्सीन जो होता है उसमें लगाने से प्रिवेंशन होता है एनल कैंसर एंड एनल वॉर्ड्स का, तो उसमें भी रिकमेंडेड है, उसमें भी लगा सकते हैं।
1: आज तो कुछ ऐसे, मतलब महिला हो गई या किसी को कोई बीमारी है या तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिनको नहीं लगवानी चाहिए?
0: नहीं, HPV वैक्सीन जो है, इवन वो महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनको भी लगा सकते हैं। लैक्टेटिंग औरतें हैं, जिन जो मतलब हॉस्पिटल में आई है महिला, अगर तो किसी भी कारण से आई हो, अगर अगर उसको HPV वैक्सीन नहीं लगा है, तो हम उसको तब के तब रिकमेंड कर सकते हैं कि वो HPV वैक्सीन लगाए, क्योंकि ये एक बचाव का तरीका है और काफी कारगर है। आप इतने बड़े कैंसर से आप बच सकते हैं, तो फिर क्यों ना HPV वैक्सीन मौका मिलते ही हॉस्पिटल में लगा दिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं लता फ्रॉम दिल्ली। पैप स्मियर टेस्ट कितने इयर्स के गैप में करवाना चाहिए? आई एम 56 इयर्स ओल्ड।
0: या पैप स्मियर टेस्टिंग जो है वो 3 साल के अंतराल

0: पे कराना चाहिए। और एटलीस्ट मतलब ये जो है 65 साल की उम्र तक महिलाएं जो हैं वो पैप स्मियर टेस्टिंग कराती रहें, ये सही रहेगा। तो हर 3 साल पे टिल यू आर 65 ईयर्स ऑफ एज और आपका पिछला पैप स्मियर नेगेटिव है, आपको पैप स्मियर कराना चाहिए। लेकिन अगर आप HPV टेस्टिंग करते हैं तो उसमें अंतराल जो है वो 5 साल का होता है।
1: हम आपको बता दें कि रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर। बातें हम और भी करेंगे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ये आशा ही तो है जो हमें जीवन में कुछ करने की, कुछ इच्छाएं हमारे अंदर जागरूक रखती हैं। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के माध्यम से बचाव पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो क्या HPV टेस्टिंग की हम सेल्फ सैंपलिंग कर सकते हैं, क्या मतलब खुद से टेस्ट किया जा सकता है?
2: हाँ जी, आजकल इस पे काफी रिसर्च आया है, तो HPV टेस्टिंग जो है वो खुद से महिला घर में कर सकती है। वो स्वाब्स होते हैं, टैम्पोन्स होते हैं, वो वजाइना में खुद से डाल करके और सैंपल लेके और हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। और ये ऐसा माना गया है कि जो डॉक्टर सैंपल लेते हैं और उसमें जो रिपोर्टिंग होती है, बिल्कुल उसके बराबर ही इसका एफिकेसी है। सो सेल्फ सैंपलिंग मेथड जो है HPV टेस्टिंग का, उससे भी जो है वो HPV टेस्टिंग जो है आसानी से हो सकता है और महिला को कोई घबराहट नहीं होगी कि मुझे चेकअप कराना पड़ेगा इस टेस्टिंग के लिए। तो काफी आराम से वो खुद से सैंपल ले सकती है और रिपोर्ट उसे मिल सकता है। तो सेल्फ सैंपलिंग वेरी बहुत ही अच्छा है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कुंवर सिंह
1: जी। बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मैडम, ये जो HPV वैक्सीनेशन है, क्या मेल में भी अप्लाई होती है? दूसरा, मेल में, जैसे फीमेल में तो हमें रिस्क पता है, रिस्क फैक्टर HPV होने के, मेल में क्या रिस्क फैक्टर है कि किस वजह से ये HPV जो वायरस है ये मेल को अटैक कर सकता है?
1: जी,
3: दूसरा, से दिल्ली में आजकल ये गवर्नमेंट भी HPV वैक्सीनेशन कर रही है स्कूल्स में, बट कई स्कूलों में ये मिथ है कि इसके लगाने से बाद में प्रेगनेंसी में इशू आ सकते हैं, तो थोड़ा इसे गाइड कीजिए ताकि सभी पेरेंट्स विलिंगली लगा सकें इसे। थैंक यू मैम।
2: जी, आपका सवाल था, पहला सवाल, कि मेल्स को क्या ये अफेक्ट कर सकता है HPV इन्फेक्शन? तो बिल्कुल कर सकता है, ये वायरस है और ये मेल फीमेल देख करके नहीं होता है, ये किसी को भी हो सकता है, तो इवन मेल्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। और कैसे मेल इन्फेक्ट होते हैं, तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जो रहते हैं मेल्स, उनमें इसका रिस्क ज्यादा देखा गया है। और आपने तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा था कि क्या इसके कारण आगे जाकर के जो कम्युनिटी हेल्थ में और स्कूल्स में जो बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसके कारण आगे जाकर के उन्हें प्रेगनेंसी करने में या आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आप आश्वस्त रहें, इसके कारण कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं, इसका माहवारी पे कोई असर नहीं होता है, इसको आगे जाकर के बच्चा करने में कोई परेशानी नहीं होती है और इसका आगे जाकर के हेल्थ पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाने का तरीका है। आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि इसको लगाने से मेंसेस रुक जाएंगे या फिर बच्चा नहीं होएगा लेडी को, ये सब बिल्कुल मिथ्स हैं, ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं जिसको कि दूर करने की जरूरत है, और ये प्रोग्राम इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने का एक जरिया है। सो आप इस बात को और लोगों में भी जो आपके संपर्क में हैं, एक दूसरे में बताएं कि इसको लगाने से कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है इससे आगे जा करके।
1: अक्सर जैसे कि आपने कहा था कि 9 साल की उम्र में बच्चियों को लगवा देनी चाहिए, तो यूजुअली पेरेंट्स इसलिए इग्नोर करते हैं या कई बार नहीं ध्यान देते कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो, कुछ हार्म ना हो। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी को लगवा लेनी चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: जी, डॉक्टर बोल, नमस्कार जी।
2: नमस्ते, नमस्ते
4: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला
1: जी। बताइए
4: जी, मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये 21 उम्र में होने के ज्यादा चांस है युवा वर्ग में या डेढ़ उम्र में या बुजुर्ग में, तो ये जानना चाह रहा हूँ
2: जी। ये युवा से लेकर के बुजुर्ग तक के एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। युवा एज जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, जब महिलाएं जो है वो महावारी के बाद से, ये कभी भी हो सकता है, और ये महावारी के बाद ये बुजुर्ग के एज तक में हो सकता है। तो इसलिए जो है इससे बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगाना है और हर 3 साल पे

0: करके पैप्समियर नाम का एक टेस्ट होता है, वो कराना है। अगर पैप्समियर नहीं है, एचपीवी टेस्टिंग की फैसिलिटी है आपके पास, आपके हॉस्पिटल में, तो एचपीवी टेस्टिंग कराना है।
1: एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखा है विभा पारिक ने, ये लिखते हैं, नमस्ते डॉक्टर, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ बाइवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन?
0: जी, बाइवेलेंट वैक्सीन और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो है वो एचपीवी टाइप पे डिपेंड करता है। अगर दो वायरस टाइप को इन्वॉल्व कर रहा है, एचपीवी 6 और 11, तो बाइवेलेंट वैक्सीन है, और चारों, सॉरी 16 और 18, और अगर चारों 6, 11, 16, 18 को इन्वॉल्व करते हुए अगर एचपीवी वैक्सीन बना है तो उसको क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। और ये वैक्सीन, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि ये वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के तरीके हैं। सो ये एचपीवी वैक्सीनेशन से एचपीवी इन्फेक्शन को हम रोकते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है ये सर्वाइकल कैंसर में डेवलप करता है आगे जा करके। सो अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाव देता है।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम और डॉक्टर साहिबा को गुड आफ्टरनून। मैम, आज का विषय खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी है। मैम, क्या स्कूल स्तर पर बच्चियों को ये स्कूल में लगाया जाता है? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: जी, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस है कि छोटी बच्चियां जो 9 साल की हो चुकी हैं उनको स्कूल में ही ये एज कम्युनिटी ड्राइव लगाया जा रहा है। सो 9 साल से 14 साल के बीच में सिंगल या डबल डोज वैक्सीन का लगा सकते हैं, और इससे सर्वाइकल कैंसर से बचने की संभावना जो है वो 95 to 98% प्रोटेक्शन मिलता है एचपीवी वैक्सीन से। सो स्कूल में भी लगाया जा सकता है।
1: तो मैम, जैसे कि अगर स्कूल में बच्चा कोई, जैसे आपने कहा 9 ईयर्स के बाद लगवा देना चाहिए, स्टार्ट हो जाता है लगना, तो क्या उसकी लाइफ टाइम मतलब प्रोटेक्शन रहती है, ये कुछ ईयर्स होते हैं कि इतने साल बाद फिर दोबारा हमें डोसेज लेनी पड़ती है?
0: नहीं, अगर डबल डोज लग रहा है तो उससे बिल्कुल देखा गया है कि लॉन्ग टर्म एफिकेसी है। कोई डबल डोज लेने बाद और आगे जा करके दोबारा दोबारा वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 9 से 15 साल के पहले जो है वो डबल डोज, और 15 से 45 के बाद जो है वो 3 डोजेज लगा करके आप आश्वस्त रह सकते हैं, और बीच बीच में जाकर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग थ्रू पैप्समियर या एचपीवी टेस्टिंग कराने की जरूरत है।
1: तो जैसे कि आपने अभी कहा डबल डोज या 15 के बाद ट्रिपल डोज लगवानी पड़ती है, तो एक डोज सफिशिएंट नहीं होती, हमें डबल या ट्रिपल लेनी जरूरी है, मैंडेटरी है?
0: आजकल रिसर्च हो रहा है और अभी लेटेस्ट आया है कि सिंगल डोज भी काफी है। ऐसा देखा गया है कि लोग जो है वो 3 डोज लगाने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा रिसर्च किया गया कि सिंगल डोज भी जिन महिलाओं को लगा था उनमें भी सर्वाइकल कैंसर की संभावना जो है वो बहुत कम होती हुई दिखी। तो इस बेसिस पे आजकल ऐसा रिकमेंड किया जा रहा है कि इवन सिंगल डोज इज एनफ, एंड सिंगल डोज इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर देन नॉट हैविंग एनी डोज ऑफ एचपीवी।
1: अगर जैसे कि किसी ने सिंगल डोज लगवा ली, सेकंड डोज जो डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, लेकिन बाय चांस वो भूल गए लगवाना, तो कोई उसका नुकसान तो नहीं? लोग क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, यार लगवानी थी हम भूल गए, 6 महीने में कहा था, अब 8 महीने हो गए या 10 महीने हो गए, हमने नहीं लगवाई,
0: जी
1: तो क्या उसका कोई नुकसान है या साइड इफेक्ट है?
0: आपने बहुत ही कॉमन सवाल पूछा है, और ये बहुत बार होता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हेल्थ को बिल्कुल लाइटली लेती हैं और एक डोज लगवा लिया, उसके बाद दूसरे डोज का अता पता नहीं। तो जब भी आपको याद आए, 6 महीना हो गया और उसके बाद आपको 8वें महीने पे याद आए या 9वें महीने पे याद आए, जब भी आपको याद आए आप सेकेंड डोज लगवा लें, और दोबारा से रिपीट शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक डोज मिस हुई है तो जब आपको याद आ रहा है 6 महीने के बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकती हैं।
1: तो जैसे कि एचपीवी वैक्सीन है, क्या इससे जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं? लोग आपके पास आते होंगे अपनी अपनी क्वेरीज लेकर।
0: जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स कहते हैं हमने तो वैक्सीन लगा लिया जी, अब तो हम सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो गए। तो ये एक ऐसी भ्रांति है जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इवन आफ्टर एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो होती है वो आपको नियमित तौर पे करानी चाहिए। तो अगर पैप्समियर करा रहे हैं तो हर 3 साल पे पैप्समियर टेस्टिंग कराना है, जब तक कि आप 65 साल की उम्र तक ना हो जाएं, और अगर आप एचपीवी टेस्टिंग करा रहे हैं तो हर 5 साल पे आपको जो है एचपीवी टेस्टिंग कराना जरूरी है हर महिला के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे एक बार वैक्सीन लग गया तो हम अब तो हमें ना कैंसर होगा और हमें कभी भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं ना, ये गारंटी नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बट हाँ एक उपाय है, एक तरीका है जिससे कि आप इससे बच सकते हैं।
1: एक बचाव है।
0: या बिल्कुल सही।
1: जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन।
0: यस।

0: एवं सर्वाइकल कैंसर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: सतबीर सिंह सोनीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, ये स्टार्ट में ये HPV वायरस कहाँ से एंटर करता महिला में?
2: ये स्टार्ट में एंटर नहीं, ये यूजुअली जो है वो एक संबंध जब शुरू करती है महिला उससे ही होता है ये। तो ये एक वायरस है जो कहीं भी उपलब्ध है और ये संबंध करने से ही होता है। तो ये यूजुअली जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही हमें ये वैक्सीन लगा लेना चाहिए ताकि ये वैक्सीन जो है वो बचाव कर सके।
0: अक्सर जैसे कि आपने कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो लेकिन कई बार होगा पेरेंट्स सोचेंगे कि हम बच्चों को अभी 9 साल या 15 साल की उम्र में क्यों लगवाएं, जब शादी हो जाएगी बाद में लगवा देंगे।
2: नहीं, वो एक्चुअली मतलब ये बहुत बार हम श्योर नहीं होते, बच्चे पढ़ाई के कारण बाहर जाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल क्या है ये हम इस बारे में बहुत श्योर नहीं रह सकते। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले 9 साल के समय ही आप लगवा दें और इससे आपका इससे बचाव फिर हो पाता है।
0: एक तो बचाव के लिए आपने HPV वैक्सीन का हमें बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी विमेन हेल्थ के लिए आप कुछ बताएंगे कि जिससे वो बचाव उनका रहे, उनको सर्वाइकल कैंसर से वो अपना बचाव कर सके, क्या कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें?
2: तो जैसा कि आपने कहा कि एक HPV वैक्सीन है, इसके अलावा और क्या उपाय हैं जिससे कि
0: जी
2: बचाव किया जा सकता है? तो इसके एक तो बचाव है कि सही लाइफस्टाइल रखें, अपना हेल्थ पे आप ध्यान दें, सही खान पान, भोजन, एक्सरसाइज, और प्लस मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। तो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें इसकी संभावना जो है वो ज्यादा होती है। फिर अर्ली एज ऑफ इंटरकॉर्स नहीं होना चाहिए, वो टाइम जो है वो जब महिला परिपक्व हो जाती है, महावारी शुरू हो जाती है उसके बाद ही वो संबंध वगैरह शुरू हो तो बेटर रहता है। और फिर तीसरा है जैसे कि मतलब आप HIV इन्फेक्शन से बचें, अगर संबंध कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करें और मतलब प्रोटेक्शन का यूज करें, तो इससे फिर जो है इन तरीकों से बचाव हो सकता है। स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकते हैं HPV वैक्सीन के अलावा।
0: और जैसे जिनको HPV वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ एहतियात बरतने होते हैं
2: नहीं, वैक्सीन लगने के बाद
0: कि मतलब ये खाना है ये नहीं
2: नहीं
0: खाना है
2: नहीं
0: या कुछ इस
2: बिल्कुल नहीं,
0: तरीके से किसी भी चीज में?
2: ऐसा बिल्कुल नहीं है। HPV वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है और इससे बहुत ही मिनिमल एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, थोड़ा लालपन हो सकता है, इसके अलावा कोई मेजर एडवर्स इवेंट नहीं देखा गया है। सो इससे ये बिल्कुल सेफ है और इसके कारण कोई परेशानी नहीं है और कोई खान पान में चेंज या अपने आदत में चेंज करने की जरूरत नहीं है।
0: आज रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पे, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पे। बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पे। तो डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं विवेक फ्रॉम मेरठ। ये लिखते हैं, हाय डॉक्टर, आई होप यू आर डूइंग वेल। लिखते हैं, आर मेल वॉट्स आर ऑन द फेस, हैंड्स और अंडर द आर्म पिट्स, यूजुअली कॉज्ड बाय द एचपीवी वायरस एज वेल, थैंक्स।
1: जी, एचपीवी वायरस मेल्स में जो है वो जेनाइटल एरिया में अगर वॉट्स हो रहे हैं तो वो अलग टाइप के एचपीवी इन्फेक्शन के कारण होता है। यूजुअली 6 और 11 वाले जो एचपीवी टाइप्स होते हैं वो जेनाइटल एरिया में इन्फेक्ट करते हैं, और वो वाले वायरस यूजुअली फेस या आर्मपिट पे नहीं होते हैं। फेस या आर्मपिट वाले जो वायरस हैं वो अलग टाइप के एचपीवी टाइप होते हैं जो कि नॉन कैंसरस वाले होते हैं। तो दोनों एरिया को अफेक्ट करने वाले अलग अलग एचपीवी टाइप्स होते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये अगर जैसे कि एचपीवी वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, तो क्या इससे पूरी तरह ये सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो गया, ये सब पूरी तरह खत्म हो सकता है?
1: जी, वैक्सीन एक तरीका है तो जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो पूरी तरह से अगर हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त देश बनाना चाह रहे हैं या फिर हर देश से हम सर्वाइकल कैंसर को अगर इलिमिनेट करने की बात कहें, तो उसके लिए जो है WHO ने ऐसा गोल दिया है कि अगर 90% महिलाएं, जो 9 से 45 साल का मैं कह रही हूँ, 90% अगर महिलाएं जो हैं वो अगर एचपीवी वैक्सीन लगवाती हैं, और अगर सिर्फ 70% महिलाएं भी अगर स्क्रीनिंग करवा लेती हैं, पैप्समियर स्क्रीनिंग या एचपीवी टेस्टिंग, और जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर उनमें से 90% महिलाएं अगर अपना ट्रीटमेंट करा लेती हैं, तो पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर को विश्व से इलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये ऐसा गोल है 90-70-90 का WHO ने दिया है, जिसके कारण हम सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से इलिमिनेट कर सकते हैं।
0: तो जैसे कि आपने अभी स्क्रीनिंग के लिए कहा, तो स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन दोनों जरूरी है
1: जी,
0: साइमल्टेनियसली, या फिर एक चीज लगवा ली तो हो गया?
1: नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटिबल कैंसर है, ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे अदर कैंसर्स हुए, ओवेरियन कैंसर हुआ या एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ, इनका बचाव के लिए कोई ऐसा अभी वैक्सीन नहीं है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एचपीवी वायरस से होता है, तो अगर एचपीवी वैक्सीन लगाते हैं तो इससे जो है वो सर्वाइकल कैंसर से आप बचाव कर सकते हैं। ये कैंसर के सिम्टम को डेवलप करने के पहले ही, मतलब जो है वो प्री कैंसरस लीजन्स को अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो कैंसर डेवलप नहीं हो पाता है। तो फिर एचपीवी वैक्सीन लगाएं, बट स्क्रीनिंग कराना ना भूले। ये मैं बार बार कहूंगी जब तक कि आप पूरी तरह ना समझ जाएं कि स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। आपको हर 3 साल पे पैप्समियर, जिसको कि हम कॉमन भाषा में पानी का जांच कहते हैं, कि पानी का जांच कराना चाहिए, या फिर अगर आप एचपीवी टेस्टिंग है आपके सिटी में उपलब्ध, तो हर 5 साल में एचपीवी टेस्टिंग कराएं टिल 65 ईयर्स हो और आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं हो।
0: कई बार देखा जाए तो आम लोगों में सोच होती है कि कैंसर क्यों होगा, हम क्यों लगवाएं ये वैक्सीन। तो हम चाहते हैं कि आप हमें, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कैंसर से बचाव के लिए ये कितनी जरूरी है।
1: जी, कैंसर जो है वो किसी को भी हो सकता है। ऑल्दो जो मैंने कुछ चुनिंदा रिस्क फैक्टर्स बताए, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके अर्ली एज एट इंटरकॉर्स है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट इस नॉर्मल महिलाओं को भी ये एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो डेवलप कर सकता है सर्वाइकल कैंसर्स। मैं खुद अपने डॉक्टर कम्युनिटी में ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने हेल्थ को इग्नोर किया और बाद में जाके उनको बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर हो गया, तब जाकर के डायग्नोसिस का पता चला कि वो खुद सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। और इसका बचाव कितना एक सिंपल टेस्ट जो हम एचपीवी वैक्सीन लगाने से कर सकते हैं या

0: लगाएं, और क्यों ना हम 3 3 साल पे, 5 5 साल पे जाके अपना टेस्ट कराएं, ताकि हम ये पता लगा सके कि ऐसा तो नहीं कैंसर डेवलप कर गया है। जब हम जान सकते हैं कि कैंसर होने की संभावना है और उसको हम कैंसर बनने के पहले ही ट्रीट कर दें, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये खास बात है सर्वाइकल कैंसर की, कि इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस में और डेवलप करने के पहले ही हम डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बार अगर कैंसर बढ़ गया तो 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है अर्ली स्टेज, दूसरा होता है एडवांस स्टेज। तो अर्ली स्टेज में जो है वो फिर भी इंसान का सर्वाइवल जो है वो ठीक रहता है, लेकिन जब ये एडवांस्ड हो जाता है तो वो हर जगह फैलता है, इंसान की पूरी बॉडी नष्ट हो जाती है, और फिर पेन दर्द इन सब से निवारण पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, समय समय पर चेकअप कराते रहें और फिर स्वस्थ रहें।
1: स्क्रीनिंग किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए?
0: जी, स्क्रीनिंग की एज जो है वो 30 साल है। 30 इयर्स से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए स्क्रीनिंग, हर 3 3 साल पे, अगर आप पैप स्मियर करा रहे हैं, और अगर एचपीवी करा रहे हैं तो हर 5 5 साल पे, टिल 65 इयर्स ऑफ एज।
1: तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो भी ये वैक्सीन लगवा सकती है?
0: हाँ, प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स हैं, मतलब महिलाएं हैं, वो भी ये वैक्सीन लगा सकती हैं। जिनको मेंसेस आ रहा है अभी, वो भी एचपीवी वैक्सीन लगा सकती हैं। ये टोटली सेफ है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे।
1: यानी एचपीवी वैक्सीन की एज 9 ईयर से स्टार्ट हो जाती
0: जी
1: है, और
0: हाँ,
1: कितनी एज तक लग सकती है?
0: 45 साल तक।
1: 45 ईयर्स
0: जी,
1: तक, और स्क्रीनिंंग की एज 30 ईयर
0: थर्टी
1: से।
0: ईयर्स से शुरू होती है और 65 साल तक तो मिनिमम है।
1: तो जैसे कि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो क्या ये बीमारी भी जेनेटिक है या फिर किसी की लो इम्यूनिटी है उसको इफेक्ट ज्यादा करती है, कुछ इस तरह से है?
0: जी, ये जेनेटिक नहीं है। अगर माँ को हुआ है तो बेटी को होगा, ये नहीं कह सकते। ये सेक्सुअली इन्फेक्ट होता है, और ये जो है मतलब ऐसा जेनेटिक्स में नहीं होता है इसका।
1: अगर किसी महिला को एचपीवी संक्रमण है तो क्या वो वैक्सीन का बाद में लगवा सकते हैं, या वायरस का जैसे डायग्नोस हो गया तो फिर उसके बाद लग सकते हैं, नहीं लग सकता?
0: नहीं, आप लगा सकते हैं। वो कौन सा वेरिएंट है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है। अगर बाईवेलेंट वाला लगा है तो, अगर आपको मतलब एचपीवी टेस्टिंग अगर आपकी हुई है, तो उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा वाला टेस्ट कराया है आपने और किस टाइप का इन्फेक्शन है आपको, तो उसके हिसाब से आप जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर बाईवेलेंट, अगर दो जो टेस्ट कराया उसमें 4 वाला है, तो आप दोबारा टेस्ट करा सकते हैं।
1: तो आप हमारे जो छोटी बच्चियां हैं 9 ईयर्स अबव हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो जागरूक हो, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा लें?
0: जी, मैं उनके लिए यही बोलूंगी कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इससे कोई आगे जा करके उनके माहवारी में कोई चेंज पैटर्न नहीं होगा, और उसको लगाने से उनको आगे जाकर माँ बनने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, उनके ओवरऑल हेल्थ पे इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, और इसको लगाने पे बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो एचपीवी वैक्सीन जो है वो 9 साल की उम्र के बाद आप बिना हिचके हुए आप लगवा सकते हैं।
1: जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर पे हम बात कर रहे थे, महिलाओं को हेल्दी रखने के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो हेल्दी रह सकती हैं, तो आप कैसा लाइफस्टाइल, कैसी डाइट सजेस्ट करेंगी कि जिससे सभी महिलाएं फिट रहें, फाइन रहें और हर बीमारी से उनका बचाव रहे?
0: जी, आमतौर पे ऐसा होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हम घर में काम कर रहे हैं, हम तो पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, और सोचती हैं कि इतना काफी है हमारे लिए। जी, वो बिल्कुल काफी नहीं है। आपको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब अपने ऊपर डेडिकेटेड टाइम देना होगा। आपको एटलीस्ट आधा घंटा जो है वो खुद के ऊपर समय देना चाहिए। एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग इन द फॉर्म कि आप जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां लें, प्रोटीन वाली चीजें लें डाइट में, और मतलब ऐसा ध्यान दें कि आपके खाने में ऐसा तो नहीं, बहुत बार देखा गया है कि घर की औरतें जो हैं वो सिर्फ चावल और सब्जी खा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको दाल देना चाहिए अगर वो नॉनवेज नहीं लेती हैं तो, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकती हैं, और वही है हेल्दी डाइट रहना है उनका, एक्सरसाइज करते रहना है हर दिन जो है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, और मतलब जो सरकारी नियम है हमारा जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का, उसको ध्यान में रखें। अगर आप 30 साल से ज्यादा हैं तो जरूर हॉस्पिटल जाएं और अपनी टेस्टिंग कराएं।
1: कई बार होता है कि महिलाएं शर्म या झिझक के कारण वो टाइम टू टाइम चेकअप नहीं करवाती, तो नियमित जांच इसके लिए भी और इसके अपार्ट भी कितनी जरूरी है?
0: जी, बहुत बार महिलाएं झिझक करती हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सेल्फ सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ एचपीवी टेस्टिंग होता है। तो उसमें जो है वो स्वाब स्टिक या फिर टैम

0: स्पून्स वगैरह दे दिया जाता है, जिसमें मरीज खुद से घर में ही अपना सैंपल ले सकता है और वो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। तो इससे भी बहुत देखा गया है कि बहुत एफिकेशियस है, और जो डॉक्टर सैंपल लेते हैं उसके कंपैरिजन में इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो सही सही तरीके से वो अपना करा, मतलब सेल्फ सैम्पलिंग मेथड से भी एचपीवी टेस्टिंग करा सकती हैं। और रही बात बाकी और नियमित क्या टेस्टिंग कराएं, तो बाकी और नियमित जो है वो अपना साल साल पे जो है अपना ब्लड टेस्ट करा सकती हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, और थायराइड लेवल्स, पेशाब का टेस्ट करा सकती हैं। और अगर उनको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है या फिर माहवारी में दिक्कत हो रही है, तो घर पे बैठकर उसको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत आप जो भी आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलें और वहां पे चेकअप कराएं और आगे उनके हिसाब से उसका उपचार फॉलो करें।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक

0: मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा गीत मूड को हमेशा रिफ्रेश कर देता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर पे, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर, तो यदि सर्वाइकल कैंसर का समय पर इलाज ना हो तो इसके क्या परिणाम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है?
1: जी, अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है और इसको सही समय पे नहीं पहचाना गया और ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये ना किसी भी कैंसर की तरह काफी तेजी से फैलता है। और फिर तेजी से फैल के ये यूट्रस, ओवरी, वजाइना, पहले तो नीचे के लोकल ऑर्गन्स, पेशाब की थैली, आंतों को इस तरह से इन्फेक्ट करता है और इन्वॉल्व करता है, और फिर धीरे धीरे करके ये बोन्स को भी अफेक्ट करने लगता है और पूरे बॉडी में ये कैंसर जो है वो फैल सकता है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर जो है वो मतलब शुरुआती दौर में ही इसको जो है वो पहचान करके उसका ट्रीटमेंट कर लें तो लाइफ जो है वो आगे सही रहती है, नहीं तो एडवांस स्टेज होने पर फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, गर्म सिकाई, ये सब करने की जरूरत पड़ती है।
0: तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है?
1: जी, तो अगर मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर जो है वो डेवलप करने के पहले ही, अगर प्री कैंसरस लीजन जिसको कहते हैं, अगर प्री कैंसरस लीजन है तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो कहते हैं कि थर्मल अब्लेशन कहते हैं उसको, कोनाइजेशन कहते हैं, और लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, तो लीप थेरेपी कहा जाता है उसको। तो ये सब तरीके जो हैं, इसमें हम जो सर्वाइकल

0: सर्विकल रीजन अफेक्टेड है उस एरिया को काट के बिल्कुल हटा दिया जाता है बिल्कुल शुरुआती दौर से, तो इससे फिर आप सर्वाइकल कैंसर के होने से आप बच सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका सर्वाइकल कैंसर हो चुका है लेकिन वो अर्ली स्टेज में है, तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि एज क्या है। अगर महिला की एज जो है वो ऐसी कम उम्र है और उसको अभी और आगे जाके बच्चे करने हैं, तो उसमें हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि वो आगे जाकर के बच्चा भी कर सके और मतलब कैंसर से मुक्त भी हो सके, तो उसको गोनाइजेशन कहते हैं या फिर रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर जितना अफेक्ट हुआ है उतने एरिया को काट करके बच्चेदानी के मुंह को हटा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कैंसर बहुत आगे तक चला गया है तो उसमें जो है वो हिस्टरेक्टमी करनी होती है, यानी कि यूट्रस को निकालने का ऑपरेशन किया जाता है और साथ में जो फलोपियन ट्यूब्स होता है ट्यूब और अंडेदानी जो होती है ओवरी उसको भी रिमूव किया जाता है, और सिमिलरली जितना ज्यादा स्प्रेड है तो जितना मैक्सिमम हम वर्डाइम्स हिस्टरेक्टमी कहते हैं, रेडिकल हिस्टरेक्टमी कहते हैं, जिसमें यूट्रस के साथ साथ बाकी और चीजें जो भी इन्वॉल्व है वहां पे उसको हम रिमूव करते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर और भी ज्यादा स्प्रेड कर गया है तो फिर उस समय ऑपरेशन से हम पूरी तरह से निजात नहीं पा सकते हैं, उसमें फिर हमें जो है वो गर्म दवाइयां जैसे कि कीमोथेरेपी देते हैं और या फिर रेडियोथेरेपी देते हैं, जिससे कि कैंसर मतलब उससे जो है वो आपके लोकल डिजीज को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। सो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज कैंसर हो गया
1: तो। यानी कि एक वैक्सीन हमें कितनी कुछ चीजों से बचा सकती
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो एक बार आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कितनी जरूरी है।
0: जी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, और इसके जो मैंने आपको बताया 9 से 45 साल की उम्र की महिलाएं इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं, और ये याद रखना है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आप इतने आश्वस्त नहीं हो सकते कि आप स्क्रीनिंग ना कराएं, तो आपको वैक्सीन तो लगाना है बट स्क्रीनिंग भी करानी है, तो पैप्समियर स्क्रीनिंग या एचपीवी टेस्टिंग आपको कराते रहना है जब तक कि आपकी उम्र 65 साल ना हो जाए। अगर आपको कभी भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि संबंध के बाद ब्लीडिंग होना या फिर ब्लीडिंग महीने के बाद लगातार होते रहना या फिर नीचे से गंदा पानी आते रहना, तो फिर आप इन चीजों को इग्नोर ना करें, ये लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप कराएं और फिर इलाज कराएं।
1: कोई एक मैसेज जो आप सभी महिलाओं और माता पिता को देंगे इसके लिए कि वो स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।
0: जी, मतलब रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। एक बहुत बड़ी बात है कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, सो एचपीवी वैक्सीन लगवाएं और आप इससे बच सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, और सही समय पर लिया गया एक फैसला जीवन भर की सुरक्षा बन सकता है। अपने परिवार की बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और समय पे टीकाकरण करवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और जागरूकता का ये संदेश दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही डॉक्टर अर्चना कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद आपका भी।
1: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, एक छोटा सा टीका एक बड़ा सुरक्षा कवच, यही है स्वस्थ भविष्य की पहचान। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत नेपाल को लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.79 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। और अंत में मौसम विभाग ने उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में यह दिवस मनाया जाता है। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है. That means they are interchangeably used. ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है. यह एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना. अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है. सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है. सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं. टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द. टीवी, गेम्स, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि. कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग. अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है. मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है. खाली दिमाग शैतान का घर है. व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी. दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी. मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है. एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता. इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा. मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है. धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं. इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है. शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो. इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे. परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है. आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे. यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे. उनका आभा मंडल विशाल होता था. आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी. भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है
feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता, आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist

बिल्कुल, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, एक बार फिर से लेकर आई हूं प्रोग्राम अल्फा जैन, जिसमें आज शनिवार के अंक में हम बात करते हैं डिटॉक्स के बारे में। लेट्स डिटॉक्स। आज का डिटॉक्स क्या होने वाला है बिल्कुल यहीं पता चलेगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरे साथ।

आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन। अल्फा जेन में आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स की। वेल, आपने भी पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि आज हम डिटॉक्स के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र करते हैं, कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें डिटॉक्स का जो उद्देश्य है वो शायद थोड़ा बेहतर समझ आ गया है कि डिटॉक्स की आवश्यकता है क्यों, डिटॉक्स आखिर है क्या। और ये भी कि जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो डिटॉक्स केवल शारीरिक नहीं होता है, केवल हम अपनी बॉडी को यहाँ पे क्लींस करने की बात नहीं करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चाहे हमें लीवर डिटॉक्स की बात करें, फुल बॉडी नेचुरल डिटॉक्स की बात करें, या इस तरह के किसी भी डिटॉक्स की जिससे हमें हमारी सेहत पे बेहतर प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं, आज डिटॉक्स की बात मानसिक रूप पे भी की जा रही है कि किस तरह से आपको मेंटली भी डिटॉक्स कभी कभी करना पड़ता है, ताकि जब डिसीजन मेकिंग जैसी हमारे सामने कोई सिचुएशन होती है या जीवन को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता होती है, तो शायद हमारे ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है और हमारे मेंटल बीइंग को ध्यान में रखते हुए मेंटल डिटॉक्स भी आज बहुत रेलिवेंट है। उसके साथ साथ इमोशनल, जिसे हम कहते हैं कि भावनात्मक डिटॉक्स है, उसकी भी ज़रूरत है। तो हमने बहुत बात की, हमने बहुत पढ़ा है कि इस तरह की डिटॉक्स होते हैं और किस तरह से समय के साथ चलते हुए जब भी ज़रूरत हो कुछ समय के अंतराल पे इस तरह की डिटॉक्स जो है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और इस तरह की जो प्रक्रिया है वो हमें करते रहने चाहिए, चाहे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, चाहे अपने

मन के लिए करें, अपने मेंटल वेलबिंग के लिए करें, या फिर थोड़ा सा आप भावनात्मक अपनी प्रक्रिया को देखते हुए उसके लिए करें। लेकिन कभी कभी ना हम शायद एक चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि जिन सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, चाहे वो हमारा लिविंग स्पेस हो जिसे हम अपना घर कहते हैं, चाहे हमारा ऑफिस हो, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम एक कंसिडरेबल अमाउंट बिताते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम बिताते हैं, जहाँ पर हम अपना जो समय है वो बिताते हैं काफ़ी देर तक, उसे हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं। क्या होता है अपनी सराउंडिंग्स को डिटॉक्स करना या डिटॉक्स करना अपने लिविंग स्पेसेस को, इसकी ज़रूरत क्यों है और कैसे किया जा सकता है, बस आज करेंगे इसी पर बात। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर मेरी यानी दीपांशी के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम अल्फा जैन।

क्यों जरूरी है उन लिविंग स्पेसेस को भी समय समय पर डिटॉक्स करना जहाँ पर हम बहुत काफ़ी समय बिताते हैं, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारा ऑफिस हो। क्योंकि मुझे पता क्या लगता है कि जहाँ पर आप रहते हैं बहुत अधिक समय बिताते हैं, वहाँ केवल जो हमारे साथ लोग होते हैं केवल हम उन्हीं की ही जो एनर्जीज हैं उनको नहीं अट्रैक्ट करते, बल्कि जिन स्पेसेस में हम लोग रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, चाहे भले ही हमारा घर हो भले ही हमारा ऑफिस हो या कोई ऐसा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ बिताया जाता है, ऐसी कोई भी जगह हो, उन जगहों को भी उन नेगेटिव एनर्जी से डिटॉक्स करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम और अच्छे से कर सके और सक्सेसफुली कर सके। अब इसके कई तरह के तरीके हो सकते हैं। ये तरीका भी हो सकता है कि वहाँ से कुछ ऐसा मुझे लगता है कि एक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, डी क्लटरिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डी क्लटरिंग में क्या किया जा सकता है, किस तरह से उन एनर्जीज़ को जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करने से हमें रोक रही है ना, उनको कैसे डीक्लटर किया जा सकता है, कैसे अपने काम की जगह से अपने रहने की जगह से उन्हें हटाया जा सकता है, यही आज सोचा कि आपसे बात की जाए। अगर आप इससे जुड़ा कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं या अपना कोई थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070। कोशिश करूंगी आपके मैसेजेस को शामिल करने की अगर वो इस टॉपिक से रिलेटेड हुए। और कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे वेज जिससे ये जो डिटॉक्स है ये और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, यही आप सभी के साथ साझा करूंगी। बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जेन में।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम अल्फा जन में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, जहां हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने रहने के स्थान को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, जहां पर आप काफी समय बिताते हैं और चाहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। रुकावट कभी कभी ना यहाँ पे मानसिक ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है कि नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हम शायद अपना जो काम कर सकते हैं, जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को जैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसा शायद नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले बात, अपने रहने की जो जगह है, हमारा जो घर है, उसको डिटॉक्स करना, यानी जितने भी प्रदूषक तत्व हैं या नकारात्मकता है, उससे उसे साफ करना होगा, उसे हटाना होगा वहाँ से। तो जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिटॉक्स है वो है एयर डिटॉक्स, जहाँ पर आप सांस लेते हैं, जहाँ पर इतना समय बिताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, घर में वेंटिलेशन प्रॉपर होना बेहद ज़रूरी है। ये बात हम जानते सभी हैं, लेकिन शायद समझते नहीं हैं।

और हमें लगता है कि बाहर प्रदूषण इतना है कि शायद अपनी खिड़कियाँ खोल देंगे या दरवाजे खोल देंगे तो शायद जो बाहर की बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ना वो बाहर आ जाएगी। लेकिन सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, उस समय आप ये कर सकते हो जब बाहर वातावरण थोड़ा साफ होता है, तो कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए अपनी घर की खिड़कियों को खुला रखें ताकि जो ताज़ी हवा है वो घर के अंदर आ सके और जितनी भी अंदर की प्रदूषित हवा है वो घर के बाहर जा सके। और आपको भी जो एक डिफरेंट फील होगा ना, वो आप जब इसे करना शुरू करेंगे रोज़ाना, तब आप इसका अंतर समझ पाएंगे कि केवल एक ये छोटा सा काम करने से कितना इम्पैक्ट आता है घर के एनवायरनमेंट पे। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि बाहर बहुत पोल्यूशन है, बाहर बहुत प्रदूषण है, चलिए खिड़की को खोलेंगे, कितना देर खोल सकते हैं आप सुबह जब वातावरण थोड़ा साफ है, बाहर एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन है, तब तो आप ये कर पाएंगे। लेकिन हाँ, दिन के समय या शाम के समय भी कर सकते हो उसके बहुत, लेकिन लंबा जो समय है उस समय तक आप खिड़कियाँ खोल के रखना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, उस केस में आप जो हवा साफ करने वाले पौधे हैं उन्हें अपने घर में रख सकते हैं, उन्हें अपने घर में प्लांट कीजिए। मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, स्पाइडर प्लांट है, ये इस तरह के पौधे हैं जो हवा के जितने भी हानिकारक टॉक्सिन्स हैं उसे सोख लेते हैं और हवा को थोड़ा साफ कर देते हैं। और आई एम श्योर हम सभी को जो प्लांटिंग है, गार्डनिंग है, वो हम सभी को पसंद है, लेकिन जितना हमारे घर के बाहर का बगीचा सुंदर लगता है ना, उसमें से कुछ पौधों की ज़रूरत हमें घर के अंदर भी है। हमें ये तो पता है कि एयर प्योरीफायर लाना है, उसे घर में लगाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपना काम नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, ऐसे प्राकृतिक साधन भी हैं, पौधों के उपयोग भी हैं, जिससे हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर घर के अंदर इस तरह के जब हम पौधे लगाते हैं, इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं, वो आपकी घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, इसे बताने की शायद अलग से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कई बार ये आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है उससे भी घर में जो हवा की थोड़ी सी नमी है या किसी तरह की अगर ऐसी कोई वहाँ से दुर्गंध आ रही है घर के अंदर से या शायद बाहर से घर में प्रवेश कर रही है, तो एक्टिवेटेड चारकोल भी आप अपने कमरों के कोने में रख सकते हैं ताकि इस तरह की जो हवा है उसे घर के बाहर भेजा जा सके और अच्छी हवा जो है, साफ हवा जो है, उसे घर में वेलकम किया जा सके।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम अल्फा जन में। आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को, अपने लिविंग स्पेसेस को डिटॉक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम बात करते हैं कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें फिजिकली डिटॉक्स होना जरूरी है, अपने मेंटल वेलबींग के लिए मेंटली डिटॉक्स करना जरूरी है, इमोशनल डिटॉक्स करना जरूरी है।

हमने थोड़ी सी बात की नेचुरल क्लीनिंग की, है ना, एयर डिटॉक्स की बात की, जहाँ पे हमने कहा कि किस तरह से आप पौधों को प्रयोग करके घर में प्लांट लगा कर किस तरह से हवा को शुद्ध कर सकते हैं। उसके साथ एक और चीज़ है कि नीम ट्री और टी ट्री या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स, इसका प्रयोग करके भी आप थोड़ा सा घर के जो अंदर का वातावरण है उसे स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हवा की सफाई का काम करते हैं।

और ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी घर की जो साफ़ सफाई है उसे हमें करते रहना चाहिए, बखूबी करना चाहिए। दिवाली की वेट नहीं करनी चाहिए कि साल में जब दिवाली आएगी तभी हम घर को पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में आज हम लोग रह रहे हैं, जितना प्रदूषण बाहर हमको देखने को मिल रहा है और जिसके साथ कहीं ना कहीं हम जूझ रहे हैं, तब ये इस तरह का जो क्लीनिंग है ना, इसका महत्व थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और ये क्लीनिंग स्पेशली उन सारे घर के कोनों की जहाँ पे इस तरह के बैक्टीरिया, जो इस तरह के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं, उनका करना बेहद ज़रूरी है। जैसे घर के जो कालीन हैं उनकी नियमित सफाई करें, घर के जो मैट्रेसेस हैं, गद्दे हैं या घर के जो पर्दे हैं जहाँ पे इस तरह की जो डस्ट है वो चिपक जाती है, जहाँ पे इस तरह के जो कीटाणु हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं घर के अंदर ही रह जाते हैं काफ़ी समय तक, क्योंकि हम घर की सफाई भले ही करें लेकिन इस तरह के जो कोने हैं, चाहे घर के कर्टन्स हो, मैट्रेसेस हो, इनकी सफाई हम कभी कभी करते हैं। तो इसे भी नियमित कीजिए, इसे भी रेगुलर इंटरवल्स पे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के यदि कोई भी कण धूल के साथ अंदर प्रवेश किया है, घर के बाहर आए हैं, तो वो अच्छे से साफ किया जा सके। इसके साथ एक बेहद ज़रूरी चीज़ ये है, हम बहुत बात करते हैं कि शायद हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है उसे नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम में से कोई भी इस बात से अज्ञानी नहीं है कि प्लास्टिक का जो यूज़ है, उसका जो प्रयोग है, किस तरह से ना केवल हमें हमारी सेहत को, बल्कि हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको भी कितना नुकसान पहुंचाता है। कोशिश कीजिए अपने उन पुराने दिनों में जाने की जब हम मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे या स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किया करते थे। तो इस तरह के जो भी प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, या इस तरह के कोई भी बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं जो प्लास्टिक के हैं, उसे थोड़ा सा डिस्कार्ड करेंगे, घर से निकालेंगे, और इस तरह के कांच कांच के, मिट्टी के या स्टील के बर्तनों को, बॉक्सेस को का प्रयोग बढ़ाइए, जिससे हमारा जो घर है वो कहीं ना कहीं एक बेटर वे में डी क्लटर होता है। और जब हम डी क्लटरिंग की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं जो चीज़ें आपकी काम की नहीं हैं उन्हें घर से निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पुराने कपड़े हों, क्योंकि हमें कपड़े खरीदने का शौक है, वी ऑल लव शॉपिंग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नए तो ले आए लेकिन जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी घर में किसी कोने में पड़े हैं लेकिन उनका कोई भी यूज़ नहीं है। घर के टूटे बर्तन हों, कोई भी ऐसा सामान जिसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, उसे ये समझ कर कि शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, बाद में इसका यूज़ करेंगे, अब शायद हमें वो जो थोड़ा सा एक इस तरह का जो एक थॉट प्रोसेस है, ऐसा जो एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रमाणित किया गया है कि घर पे किसी भी तरह का अगर आप अननेसेसरी सामान इकट्ठा करके रखते हैं, उससे घर में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बढ़ती हैं, नकारात्मकता जो है वो बढ़ती है। तो प्लीज सबसे पहले डी क्लटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काम की चीज नहीं है उसे प्लीज अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाइए।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, आपसे जुड़ रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ प्रोग्राम अल्फाजन में। आज हमने बात की किसकी? अपने लिविंग स्पेस के डिटॉक्स की, और जितने भी वेज हमने जाने, जितने भी तरीके हमने जाने कि किस तरह से डीक्लटरिंग की जा सकती है। ये डीक्लटरिंग सिर्फ आपके घर की नहीं होती है, ये डीक्लटरिंग या डिटॉक्स आपके उन सराउंडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होता है जहां आप चाहे पढ़ाई करते हैं या आप काम के लिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए ये थोड़ा सा अपनाने की, अपने जीवन का इसका छोटा सा परिवर्तन करने की, क्योंकि आई एम श्योर जब आप ये इसके इफेक्ट्स को आप महसूस करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से इस तरह का जो डिटॉक्स होता है ना, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट करता है, और किस तरह से हम जो भी काम से जुड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे और इफेक्टिवली कर पाते हैं और एफिशिएंटली कर पाते हैं। और अब आपसे इजाजत लेने का समय है, जाना इसलिए है क्योंकि आपसे एक बार फिर से मिलने आना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी आपको छोड़कर, इन गुनगुनाती आकाशवाणी FM रेनबो की गलियों को छोड़कर कहां जाऊंगी, होगी मुलाकात आपसे फिर किसी दिन यहीं पर। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन उसके साथ आपको जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, शाहिद जुड़ेंगे आपके साथ लेकर प्रोग्राम

सिटी लाइट्स, उनके साथ बने रहिएगा और जानेगा ना भाई अपनी दिल्ली में क्या कुछ हलचल है, क्या है ऐसा जो आज शाहिद आपको स्पेशल बताने वाले हैं। हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड, टेक केयर।

शाम के 5 बज गए हैं। पेश है फिल्म रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 30 घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

जसपिंदर नरुला और रीमा फर्नांडिस की आवाज है, खूबसूरत ट्रैक, टाइटल ट्रैक प्यार तो होना ही था। आप सुना मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और प्रोग्राम सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं अपने अपने फेवरेट रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर। तो आज के सिटी लाइट्स में बहुत सारी हैं काम के बेट्स आपके लिए, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के खराब हो रहे पुराने हो चुके फ्लाईओवर्स के रिनोवेशन के बारे में। लगभग 10 साल के इंतजार के बाद दिल्ली के खराब और कमजोर हो रहे फ्लाईओवर्स की कंडीशन सुधारने का काम शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने करीब एक दर्जन फ्लाईओवर्स के रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया है और मॉनसून के फौरन बाद ही फेज्ड मैनर में काम शुरू हो जाएगा। ये फ्लाईओवर्स कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये फ्लाईओवर्स हैं जखीरा, सीलमपुर, शादीपुर, नारायणा, मंगोलपुरी, सराय काले खां, नेहरू नगर, एम्स लूप, कश्मीरी गेट लूप, बारापुला फेज वन, कड़कड़ी मोड़ और अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको रेनोवेट किया जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ साथ ही 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवर्स की टेक्निकल स्टडी के लिए भी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है ताकि उनके इसके बाद उन पर भी काम किया जाए और उनको भी मरम्मत करके पब्लिक के यूज के लिए बेहतर बनाया जाए।

और आज के सिटी लाइट्स में मैं आपको बताऊंगा, हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि ये कनेक्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स किस तरीके से डिसकनेक्ट कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। आप बनाए मेरे साथ 102.6 रेनबो पर, दिल से दिल तक।

आपको बता दूं कि ट्रैफिक रूल वायलेशन दिल्ली में बड़ी आम बात है और लोग जो है अक्सर जब सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उनको लगता है कि बस अब जो चाहे करें, हेलमेट लगाएं ना लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं ना लगाएं, स्पीड लिमिट में गाड़ी को ना चलाएं, स्पीड में भगाएं और जिगजैग चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मी अगर कहीं खड़े हैं तो उनसे डर करके थोड़ा हम लोग बचने की कोशिश करते थे, लेकिन अब से दिल्ली पुलिस भी आपका चालान काट सकती है। आप अगर कोई ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं तो वो फोटोग्राफ लेगी आपकी गाड़ी का और वो सीधा डिजिटल ई चालान ऐप पर आपकी डिटेल्स अपलोड करके आपके पास पहुंच जाएगा चालान। और जो डिटेल्स आपकी गाड़ी की जिसने ट्रैफिक रूल वायलेट किया होगा उस गाड़ी की डिटेल्स को ऑटोमेटिक

के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा अपलोड करके, और फिर फॉर्मल चलान नोटिस पहुंचा दिया जाएगा जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो आप अब अगली बार कहीं भी गाड़ी लेकर के जाएं और सोचें कि ये तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नहीं, दिल्ली पुलिस कर्मी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब चलान काटना उनके पास भी अथॉरिटी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखें। वैसे भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो भी रूल्स बना रही है, जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, हमारे लिए वो फायदे के लिए हैं, ना कि नुकसान के लिए, और उसमें हमारी सेफ्टी है, ना कि चलान काटना उसका पर्पस है, हमारी सेफ्टी उसका है पर्पस। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद, और एक्साइटिंग ट्रैक्स बैक टू बैक आपके लिए।

सरकारी दफ्तरों में पेपर वर्क की वजह से काम डिले होने को लेकर के हम लोग अक्सर बड़े इरिटेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अब इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी इसको शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार

के पीडब्ल्यूडी में पेपर वर्क कम करने और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इजियर एंड स्मूथ बनाने के लिए सिंगल फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पूरे अरेंजमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज को स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट ने 3-member कमेटी फॉर्म की है। कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस पूरे प्रोसीजर के फंक्शनल होने के बाद फाइलों का निपटारा ऑनलाइन होगा, जिससे काम तेज होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं पेपर वर्क की वजह से जो डिले होते हैं, वो डिले अब कम हो जाएगा और सारा प्रोसीजर हो जाएगा ऑनलाइन और फाइलों का निपटारा होगा बहुत ही तेजी के साथ।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: 102.6 देश नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स और सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। आज था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 13th कॉन्वोकेशन फॉर BA LLB एंड PhD प्रोग्राम, और बहुत ही शानदार ये कॉन्वोकेशन रहा आज, और दोपहर तक ये संपन्न हुआ। हम इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर GS वाजपेयी, जो हैं वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर हमारे प्रोग्राम सिटी लाइट्स में।
1: जी बहुत धन्यवाद
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे हमसे बात करने के लिए। सर आज का ये बहुत ही शानदार जो 13th कॉन्वोकेशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में किया गया है फॉर BA LLB एंड PhD प्रोग्राम के लिए, जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो सर किस तरीके का रहा, इतना शानदार प्रोग्राम यह रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल शाहिद जी, एक बहुत शानदार प्रोग्राम था, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है कि देश की नंबर 2 रैंक यूनिवर्सिटी है
0: जी,
1: जो पिछले 8 बार से नंबर 2 की स्थिति में बनी हुई है, और आज की एक कन्वोकेशन जो ऑर्गेनाइज की गई वो BA LLB और PhD प्रोग्राम के लिए थी
0: जी।
1: और उस कॉन्फ्रेंस में आज हमारी जो विजिटर है यूनिवर्सिटी की, ऑनरेबल जस्टिस बीबी नजरत्ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जज भी हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की विजिटर भी हैं, वो इस कार्यक्रम में आज चीफ गेस्ट थी और उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस आज डिलीवर किया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वो ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और NLU दिल्ली के चांसलर हैं, वो मौजूद थे। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट के अनेक जजेस, जिनमें जस्टिस तेजस कारिया, जस्टिस शकभर और भी काफी लोग मौजूद थे जिनकी उपस्थिति आज विशेष रूप से रही। इसके अलावा हमारी जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो कि गवर्निंग काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें अनेक वाइस चांसलर, देश के काफी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो आज इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने 132 स्टूडेंट्स को, जिसमें 8 PhD और 124 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनको डिग्री आज कंफर की
0: जी।
1: और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि कन्वोकेशन के दौरान अनेक मेडल्स भी कन्फर किए जाते हैं, जो कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं
0: जी,
1: तो उस

0: मैं आज विशेष रूप से बताना चाहूंगा जिनको
1: जी
0: ऑनरेबल जस्टिस नलरत्ना ने सम्मानित किया, उसमें
1: जी
0: हमारी जो ग्रेजुएटिंग बैच की जो स्टूडेंट है खुशी नायब, उन्हें 5 गोल्ड मेडल मिले और जो योगिता है उनको भी 6 गोल्ड मेडल मिले,
1: क्या बात
0: अनुष्का को
1: है
0: भी 3 गोल्ड मेडल मिले।
1: जी सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़े सम्मान की बात है।
0: जी, और यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम है कि हम एक विशेष रूप से वाइस चांसलर गोल्ड मेडल भी रखते हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट की होती है
1: ओके
0: उसके लिए हम एक बेस्ट फीमेल स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं और एक बेस्ट मेल स्टूडेंट, जो
1: जी
0: कि एकेडमिक के अलावा भी ऐसी गतिविधियां रहती जिनमें स्टूडेंट अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते, तो आज जो मेल स्टूडेंट जिसको ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल दिया गया उनका नाम है मानस महाजन, और जो फीमेल स्टूडेंट थी वो थी पलक खन्ना।
1: जी तो सर, मैं बस यही आपसे पूछना चाह रहा था जिसका आपने मुझे बता दिया, कि मैं जानना यही चाह रहा था कि रिजल्ट कैसा रहा और स्टूडेंट्स के अंदर सर कैसा जोश है और आगे के लिए उनके क्या प्लानिंग्स हैं और क्या उनके अरमान हैं, लेकिन आपने सब चीज़ें बताई दी हैं। तो सर, आपके वेलकम एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने सुना था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बच्चों में आपकी बात को लेकर के बड़ा ही जो है जोश रहता है और आपकी बातों को बड़ा मन से सुनते हैं।
0: जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि वेलकम एड्रेस जिस मौके पर मुझे देना रहता वो एक सिस्टम है, एक रिचुअल है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखा जाए, और इसमें चूंकि स्टूडेंट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ और
1: बिल्कुल
0: अपने गेस्ट को एड्रेस कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी की जो उपलब्धियों का एक कैटलॉग है उसको एक बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से मैं प्रस्तुत करूँ। तो इस
1: जी
0: पूरी प्रक्रिया में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो एक पूरा सिस्टम है उसमें किस तरह से हमें खासतौर से जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया
1: जी
0: कि एनआईआरएफ रैंकिंग में पिछले 8 वर्षों से नंबर 2 पे बनी रहने के अलावा
1: जी
0: ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है साल जिसने ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग,
1: क्या
0: उसमें
1: बात है सर,
0: इसकी प्रवेश हो चुका है, और हम पूरी दुनिया में जो लॉ टीचिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें 223वें नंबर पे अब हम मौजूद हैं।
1: क्या बात है सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस लैंडमार्क अचीवमेंट सर।
0: जी जी, और ये बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा भी आप देखिए कि जो यूएन का, जो यूनेस्को का जो एक सिस्टम है जिसको वो कहते हैं Fortune 100 इंस्टीट्यूशन इंडेक्स,
1: जी
0: जो SDG गोल्ड के अप्रिसिएशन के लिए उस 100 में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रवेश पा चुकी है।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इन सब अचीवमेंट्स के लिए, और आज के सर इस कामयाब कॉन्वोकेशन के लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी, और सर आपने अपना समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी रेनबो पर हमारे प्रोग्राम सिटी लाइट से जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज के इस बहुत ही कामयाब 13th कॉन्वोकेशन जो किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसके लिए हम बात कर रहे थे NLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर GS बाजपाई जी से।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
8: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
7: फिर भी आप

0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

इस रात की सुबह नहीं से ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक चित्रा और एमएम क्रीम की आवाज आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और प्रोग्राम सैटेलाइट्स अभी है जारी। तुम और जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए कि दिल्ली समेत पूरे देश में स्वाइन फ्लू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बरसात के मौसम में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। भारत में इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी मानसून और विंटर दोनों में बढ़ती है। इसी के मद्देनजर मौजूदा बढ़ोतरी के बाद नवंबर से फरवरी के दौरान केसेस बढ़ सकते हैं। स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बॉडी पेन, हेडेक, ठंड लगना, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी, सांस लेने परेशानी और सीने में दर्द होने पर फौरन डॉक्टर से आप जरूर मिलें। और प्रिकॉशंस हैं कि आप अवॉइड करें भीड़भाड़ में जाना, और अगर भीड़भाड़ में जाना पड़े आपको जरूरी हो तो मास्क लगा लें, सफाई का बहुत ख्याल रखें, हाथों को साबुन से धोएं, बहुत अच्छी तरीके से आपको सफाई का ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा एक प्रिकॉशन है। खांसी और छींकते हुए कृपया रुमाल से मुंह को ढक लें या अपने बाजू की तरफ। सिम्टम्स नजर आने पर डिस्टेंस को मेंटेन रखें और घर पर ही रहें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो बाहर निकलना।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों को आपस में कनेक्ट रहने, दूरियों को मिटाने और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्रिएट किए गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके भयानक रूप जब सामने आए तो पहले की थोड़ी डिस्कनेक्टेड लाइफ अब ज्यादा डिस्ट्रॉयड नजर आती है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार बन चुकी है, जो जोड़ कम रही है और काट ज्यादा रही है। बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े इसके माया जाल में ऐसे फंसे हैं कि पर्सनल लाइफ तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा नशा है जिसकी एक बार लत लग गई तो हाल वो हो रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है स्कूल गोइंग किड्स और टीनेजर्स का। इतनी डेलिकेट उम्र में उनके सामने चाहे ना चाहे ऐसा कंटेंट आ जाता है जो उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर रहा है, उनके फ्यूचर को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। देश के नंबर वन रेडियो रेनबो पर आप सुन रहे हैं मुझे, मेरा नाम है शाहिद और मेरा सभी समझदार बड़ों से बस यही एक गुजारिश है कि कंट्रोल इट और इट विल कंट्रोल योर लाइफ।

तो शायद इज नाउ साइनिंग ऑफ. आ गए हैं विकास लेकर के मैसेज मसाला मिक्स. तो गेट रेडी विद योर मसालेदार मैसेजेस. विकास विल बी विद यू. टेक केयर एंड बाय बाय.

पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमरीका के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और कारोबार के लिए भी मजबूत आधार उपलब्ध कराता है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबर दहन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। हालांकि मौजूदा 60 दिन की राहत अवधि अभी लागू है। और अंत में, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह थे अब तक के मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, लेकर प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स हाजिर हो गया हूँ। मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और जी जरूर, दिल की बात क्या है, आप भी बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि आज मैं अपने दिल की बात क्या पूछूंगा। मेरे दोस्त मुझसे पूछना शुरू हो गए हैं कि आज क्या टॉपिक है, तो मैं बता ही देता हूं। चलिए इंतजार ज्यादा नहीं कराता हूं। जहां पर अभी पिछले प्रोग्राम में शाहिद ने जो बताया था आपको कि सोशल साइट्स के बारे में जो मिसयूज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ही देखिए इत्तफाक की बात है। और कितनी मजेदार बात है कि जो घटनाएं हो रही हैं हमारे

चारों तरफ हमारे समाज में, सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड मेरे दिल में कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, मतलब कि कुछ चल रहा था कि मैं पूछूं अपने दोस्तों से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो छोटी सी दिल की बात है, लेकिन बड़ी गहरी है, संजीदगी है इसमें, और जरूरत नहीं है कि इसमें दिमाग में टेंशन देना है। बस जो महसूस करते हैं आप अपने आसपास, उससे रिलेटेड आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं हम तक। कैसे जी? 9868107070 नंबर है हमारा। और जी, दिल की बात वो ये है कि हम जो सोशल साइट्स पर दोस्ती करते हैं, उस दोस्ती पर इतनी जल्दी एतबार क्यों कर लेते हैं? बहुत सीधी सी सवाल है ना, बहुत सीधा सा सवाल है, और दिल में मेरे था। अब आंसर, जो जवाब है, जो आपके दिल की बात है, वो मुझ तक आपको पहुंचाना है। नंबर एक बार फिर से बता देता हूं, 9868107070। जो सोशल साइट्स हैं उसके जरिए जो हम दोस्ती करते हैं, सो कॉल्ड कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कई अप्रत्याशित घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं उसका जो लिंक होता है वो वहां से ही होता है कि बहुत जल्दी हम किसी अजनबी पर एतबार कर लेते हैं। तो क्या है आपका कहना, बताइए मुझे। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

अजी, मुझे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, वे तो आप जानते ही हैं और आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मैं भी जानता हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून जी कह रहे हैं हितेंद्र दास जी आसाम से। हितेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा आदाब नमस्कार है और स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन इसके बाद आपने आज से जो रिलेटेड है हमारे टॉपिक जो है, टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा अगला जो मैसेज आपका आएगा वो जरूर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर अपनी बात रखेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और गाने भी पसंद आ रहे हैं, शुक्रिया जी। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी, पूरी गुप्ता फैमिली है जी, सभी गुप्ता जी का स्वागत है। और आज की टॉपिक से रिलेटेड, आज के दिल के बात से रिलेटेड भी आप लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल आएगा जी। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, क्या लिखते हैं सर? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं इसलिए हम जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं इसलिए हम जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं या नहीं करते हैं? मैं थोड़ा सा यहां कंफ्यूज हूं आपके इस बात से कि अगर दूर के ढोल सुहावने हैं तो फिर पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन आप लिख रहे हैं कि आप चले जाते हैं, तो थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा जी। MMM अनूप कुमार झारखंड से, परफेक्टली टोल कंट्रोल एविल ऑफ सोशल मीडिया और सोशल मीडिया कंट्रोल यू सच एज मनी कंट्रोल यू और यू कंट्रोल मनी सोशल मीडिया राइट्स डोंट मेक फ्रेंड्स अननोन पर्सन। जी बिल्कुल कहते हैं अनु कुमार जी, लेकिन स्टिल हम कहीं ना कहीं तो चल देते हैं उस तरफ और जा रहे हैं उस तरफ। तो बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात चल रही थी कि मैं बहुत सारे जो हैपनिंग्स हो रही थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने देखा कि बैड हैपनिंग्स जो हो रही हैं हमारे चारों तरफ वो सोशल मीडिया पे जो दोस्ती होती है और उसके बाद जो परिणाम होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों से बात पूछी जाए उनका क्या ख्याल है। तो मिलता जुलता है जी बिल्कुल भी, और होना भी चाहिए। पंकज अमरावती महाराज से लिखते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और आगे लिखते हैं, सोशली साइट पर दोस्ती बहुत जल्दी बन जाती है लेकिन वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अगर दोस्ती सिर्फ अपने निजी स्वार्थ पर बनी है तो ज्यादा दिन तक रहती है, दोस्ती अपने पर हुई है तो हमेशा के लिए सलामत रहती है। सोशल साइट की दोस्ती निजी स्वार्थ पर बनी रहती है, हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कहते हैं। और लास्ट में आपने लिखा है, मतलब आखिर में लिखते हैं कि बचपन की दोस्ती हमेशा सलामत रहती है। बचपन की दोस्ती का तो कोई भी कहते हैं कि आसपास नहीं है, वो तो अनमोल होती है, वो घड़ी भी अनमोल होती है और वो समय भी बहुत अनमोल है, वो दोस्ती भी यकीन मानिए बहुत अनमोल है। और हमारे एक दोस्त हैं महेश जानू मंडावा झुंझुनू राजस्थान से, लिखते हैं कि मेरा मानना है सोशल साइट्स के माध्यम से किसी अजनबी से बात करते समय या फिर उससे दोस्ती करते समय हम एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में जी रहे होते हैं। राइट, ये मैं

ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम खुद ही एक दुनिया बना लेते हैं, सामने वाले प्रति अलग ही वर्चुअल दृष्टिकोण बना लेते हैं, और हर बार वो दृष्टिकोण सकारात्मक ही बनता जा रहा होता है, इसलिए हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। इसके बाद जब काल्पनिक से हकीकत वाली दुनिया में आते हैं, तब उन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, आपने भी बखूबी इसका जो चित्रण किया है और बताया है कि जो वर्णन आपने किया है बहुत ही उम्दा किया है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। मैं शाहदरा से शाइस्ता, मेरे बेटे का नाम है अयान खान और बेटी का नाम है आल्फिया खान। आपका म्यूजिक सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे शहर का नाम है, उसके बाद लाइन गायब है जी, और मैं कहूंगा कि पूरी बात अगर लिख देंगे तो हम आपके शहर का नाम भी यकीनन ऑन एयर करेंगे। गंज दुंदवारा शमशूल कमर राही लिखते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बाहर से कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और, इसीलिए बहुत जल्दी किसी आदमी को अपना मत बनाओ, क्योंकि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, पहले उनको आजमाना चाहिए फिर उन्हें अपना बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि वक्त देना चाहिए काफी ज्यादा। गुड इवनिंग राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हमारा तो यही कहना है कि सोशल साइट पर दोस्ती सिर्फ निलेश स्वार्थ के लिए होती है जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास जाने पर असली पोल खुल जाती है। नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया जी। किशन रंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिख रहे हैं, और एक मैसेज और है हमारा। नमस्कार सर, शुभ संध्या, आज का टॉपिक क्या है? यशवंत आड़मुटे धाराशिव महाराष्ट्र से। आज का टॉपिक ये है यशवंत जी कि सोशल साइट्स के माध्यम से जो हम दोस्ती कर रहे हैं, हम मतलब समाज का कोई भी इंसान, तो हम उसके परिणाम देख रहे हैं वो ज्यादातर अच्छे नहीं आ रहे हैं। यानी कि हम इतनी जल्दी एतबार भरोसा क्यों कर लेते हैं सोशल साइट्स के माध्यम से जब हम किसी की तरफ बढ़ते हैं? इसका जो जवाब है वो आपको देना है, और जवाब क्या कहूं, मेरे दिल की बात है तो आपके दिल की बात मुझ तक पहुंचाइए। 9868107070 नंबर है हमारा। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना मिक्स।

0: मैसेज मसाला मिक्स का ये कार्यक्रम, ये सफर आगे भी जारी रहेगा। लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
7: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
10: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्री

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। राजकुमार के संतानिया अंकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग सरकार, वेलकम जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। गीत संगीत आपकी बातचीत भी गीतों के साथ साथ बहुत अच्छी है, शुक्रिया जी। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है, शुक्रिया जी। और आगे लिखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दोस्ती हो भी जाए और नहीं भी होनी चाहिए, सावधान सतर्क होशियार होना चाहिए जी। आपका दिन सदैव खुश हो, अच्छा हो जी। विकास जी, लव यू जी, लव यू टू जी। और आपका भी दिन हमेशा खुश हो, हम तो हमेशा ये दुआ करते हैं, कहने की जरूरत है ही नहीं जी, बिल्कुल। प्लीज प्ले एक गाने की फरमाइश आई है मेरे दोस्त की तरफ से। दोस्त ने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे गुमनाम दोस्त, ये गीत मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन जो है वो यकीनन आपको पसंद आएंगे। कांड से मोहम्मद फुरकान जी। विकास भाई, गुड इवनिंग सरकार, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। इस बार आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया? हमेशा की तरह बिल्कुल जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाया, अच्छे से मनाया जी। और हमारे साथ भी शेयर कीजिए, बस यही कहूँगा कि जैसे हम हर साल मनाते हैं, इस साल भी वैसे ही मना और अच्छे से मना, खुशियों से मना। और यही मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी अच्छे से ही सेलिब्रेट किया होगा। और ये समय जो होता है, बस उस समय को एंजॉय करने से अच्छा कोई पल होता ही नहीं है। फिलहाल आज के टॉपिक से रिलेटेड कांत भाई, आप लिखना, फुरकान जी आप लिखना भूल गए हैं, तो आप प्लीज, मैं कहूंगा कि आज के टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिखेंगे तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि विचार जो आपके होते हैं ना एक दूसरे के, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ये बात तय है कि हाँ हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। मोनिश इद्रिसी बिलासपुर रामपुर से लिखते हैं, दोस्ती बुरी नहीं है, बस आपको असली दोस्ती और ऑनलाइन दोस्ती में फर्क पता होना चाहिए। सही तरीका यह है कि कल की आप ऑनलाइन दोस्तों से जरूर जुड़ें, लेकिन अपने रियल लाइफ के दोस्तों और परिवार को नजरअंदाज ना करें। हाँ, ये बात भी गौर करने लायक है कि जो रिश्ता पहला है, पहले से हमारे पास है, उसको नजरअंदाज करके अगर हम आगे बढ़ते हैं किसी रिश्ते की तरफ, तो कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है। मोहल्ला हलवैया शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी साहब आ गए हैं, और हमेशा की तरह बहुत ही उम्दा लाइन लिखी है, अभी पढ़ता हूं। आपको मेरा प्यार भरा सलाम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, आपका स्वागत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। काफी दिन बाद आज रेनबो सुन रहा हूं जी, उम्मीद करूंगा सब खैरियत हो। सरकार, जिंदगी में मुझे सबसे प्यारा, अच्छा और सच्चा दोस्त एफएम रेनबो मिला, जो हमारा मनोरंजन करता है। मैं तो रेनबो को अपना दोस्त मानता हूं। बिल्कुल मानिए, और कह सकता हूं हम जुबां हम दर्द भी समझिए, इसलिए कहता रहता हूं कि अपने दिल की बात जरूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए हमारे साथ। अपने विचारों पर ध्यान दें, वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्म पर ध्यान दो, वो तुम स्वयं बनोगे। क्या बात है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत जी। टॉपिक से क्या बोलूं, मुझे तो टॉपिक ही पता नहीं है। मेरा नाम जावेद आलम है, मोहम्मद जयान जयपुर से। तो मैंने तो इतनी सी बात पूछी थी सरकार कि जो ये सोशल मीडिया है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से हम किसी से जुड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, तो उस दोस्ती पर हम एतबार इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं और फिर हमें धोखा ही मिलता है आखिर में ज्यादातर, तो उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? आपका क्या ख्याल है जो ये घटनाएं हो रही हैं आजकल उस सिलसिले में? अरे वाह जी, जैसे ही फोन

फोन किया तो अच्छा जी, मैं अपना नाम अपने मुंह से लूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी प्रशंसा के लिए अपनी आत्म प्रशंसा खुद कर रहा हूं, लेकिन आपका प्यार सर आंखों पर है। आपकी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। देर से हाजिर होने की वजह, आज मैंने घर पर ही कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया था, लंच में मजा आ गया जी, आप आए तो दावत हो गई। कस्बा गुंदौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, आज का टॉपिक बताइएगा जी। तो सरकार, मैंने बताया भी कि हम ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो उससे हमें अक्सर धोखा ही मिलता है, तो इतनी जल्दी हमें एतबार क्यों होता है इस दोस्ती पर? इसके बारे में अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। शुभ संध्या डियर जी। नहीं सरकार, मैं हूं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विकास। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया की दोस्ती कई बार भारी पड़ती है, लिहाजा अपरिचित लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। देहरादून से आलोक, पवार और मिन्नी, ये जो आपने सजेशन दिया है, ये एडवाइस जो दिया है, बहुत ही अच्छी है। और इसके आगे की हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर हम करते भी हैं दोस्ती तो हमें और भी क्या सतर्क होना चाहिए करते वक्त। नया बारा भिराई से जिला बालोद से लिखते हैं बसंत कुमार ठाकुर, गुड इवनिंग शाम सुहानी एफएम रेनबो। मैं दोस्ती करता हूं अनजान से, लेकिन पूरे उम्मीद रखता हूं और सामने वाले भी मुझसे दोस्ती से इनकार नहीं करते, मेरे ऊपर पूरा विश्वास घात रखता है और मैं भी जान से प्यारा चाहता हूं। सरकार, ये बहुत मिक्स हो गया कि आप भरोसा करते हैं लेकिन सामने वाला विश्वास घात करता है, तो मुझे लगता है लिखना कुछ चाह रहे थे और पहुंच कुछ और गया है, तो थोड़ा सा देखिएगा आप क्या लिखना चाह रहे थे और दोबारा से उसे जरा सही क्रम में लिख के अगर भेजेंगे तो मैं सही क्रम में पढ़ पाऊंगा। हेलो जी, जर्मनी से सनी कपूर, आई डू जस्ट फॉर टाइम पासिंग, आफ्टर फ्यू डेज आई डिलीट, विश यू गुड डे। जी, अगर मैं आपकी बात समझूं तो आप ये कहते हैं कि कुछ दिनों की दोस्ती आप करते हैं और उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं, आप ज्यादा खतरा मोल लेते ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ दिनों का जो वो समय होता है उसमें भी एहतियात बरतिएगा सरकार। वेलकम टू द शो विथ फ्लावर्स, हाँ हमेशा की तरह अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से अपने निराले अंदाज के साथ। विक सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और क्या लिखा है? उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखा नहीं है, तो मैं यही कहूँगा अंशी टॉपिक से रिलेटेड जरूर लिखें सरकार, तो मजा ही आ जाएगा। नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं भी एकदम अच्छा हूं। ये लिखते हैं कौन? ये हमारे दोस्त हमेशा की तरह बहुत सारे हैं और इनकी लंबी फहरिस्त है, अभी पढ़ता हूं। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवीर, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी, पूरे परिवार को सादर प्रणाम है जी। और आज के टॉपिक से रिलेटेड भी लिखिए ना, मजा आ जाएगा। कन्हैया लाल जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी, प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, नीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दोस्ती उसी से करो जो दोस्ती निभा सके, ऐसा रिश्ता होना चाहिए एक दूसरे का। बात तो बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन बात यही तो है कि ऐसा कैसे पता लगेगा कि ये वही है इंसान जिससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। कार्यक्रम आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, और जानकारी भी अच्छी लग रही है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस महफिल में बने रहने के लिए। और तमाम दोस्त जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, दिल की बात फिर से दोहरा देता हूं कि सोशल साइट्स के माध्यम से की गई दोस्ती पर हम इतनी जल्दी एतबार क्यों कर लेते हैं, इससे रिलेटेड अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाइए। 9868107070 नंबर है हमारा।

सभी दोस्तों का स्वागत होगा, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद तो बने रहिएगा आकाशवाणी रेनबो के साथ। अब भी लौटता हूँ।

ब्रेक के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और काफ़ी दोस्त हैं जो हमें अभी अपने दिल की बात लिख रहे हैं, तो जल्दी से उनके दिल की बात शेयर करते हैं। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, सोशल मीडिया पर 95% लोग धोखेबाज ही हैं क्योंकि अच्छे लोगों के पास वेबसाइट पर जाकर दोस्ती का टाइम नहीं होता है। और दोस्ती तो कभी कभी कहीं भी हो सकती है अगर आप बहुत अच्छे हो। मैं सोशल मीडिया नहीं हूं, जहां हूं लोग दोस्त बन जाते हैं। क्या बात कही है जोया आपने। डियर फ्रेंड, शुभ संध्या।

शुभ संध्या जी। सोशल मीडिया से दोस्त बनाना ऐसा है जैसे किसी अन्य व्यक्ति को किताब पढ़ने के लिए कहना। रवि जोशी मेरठ से। अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं लेकिन जज्बात बिल्कुल जो हम समझ रहे हैं वही है सरकार। नमस्कार, अजय ठाकुर फ्रॉम श्री अजीत सिंह नगर मोहाली पंजाब से। आज के टॉपिक के हिसाब से पहले हमें खुद को पहचानना है, फिर उसके हिसाब से दोस्त बनाने चाहिए। आजकल के ज़माने में हमें ऐसे ही फ्रेंड नहीं बनाने चाहिए, हमें अपने परिचित लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। सोशल मीडिया में तो आजकल सब पैसे का खेल है, ये भी एक अपना एक तजुर्बा है और साझा किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से। अनजान मित्रों का मित्र अनुरोध स्वीकार ही ना करें, यही बचने का सबसे अच्छा साधन है। जी दुरुस्त फरमाया आपने सरकार, कोई हमसे बहुत जल्द करीब आने की कोशिश करे तो हमें भी सोचने की जरूरत होनी चाहिए। फारूक अली खान साहब, ये बात भी बहुत अच्छी है। मतलब देखिए ना, कितने सारे आइडियाज हैं और एडवाइस जो आप कर रहे हैं, अपने विचार हम सभी से साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो फायदा ही होगा। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। दोस्त ऑफलाइन के हों या ऑनलाइन के, बस तकलीफ में आपके साथ खड़े होने चाहिए, यही सच्चे दोस्त की पहचान है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा जी, ये तो निशानी है सच्चे दोस्त की। लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा था कि जो हम एतवार कर रहे हैं सोशल साइट्स के माध्यम से दोस्ती पर, वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

वेलकम बैक जी। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सर, हेलो जी, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट पीपल इजिली ट्रस्ट द फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज द सिंपल रीजन इट्स एडिक्शन। पीपल बिलीव द फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया टू बी रियल, यस वेरी ट्रू एंड अट्रैक्टिव विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर फेक और नॉट। As a result of their addiction, they go away from the real world. Agreed, my friend. And I think building friendships on social media requires clear boundaries, thoughtful communication, and realistic expectations to stay safe and positive. Yes, we must take care of ourselves. नया पारा भिराई से जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर लिखते हैं, मैं सर जी हर किसी को सच्चे दिल से दोस्ती बना लेता हूं मगर मेरे दिल की सच्चे बात को मजाक में लेकर मेरे से ही खर्च करवाते हैं। अच्छा, खर्च भी करवा देते हैं मगर मैं हार नहीं मानता, मेरे लिए ऊपर वालों का सच्ची दुआ है और मैं कभी किसी को निराश नहीं देखना चाहता हूं, मैं सबका ख्याल रखता हूं। मजा आ गया जी, बहुत अच्छे और निराले इंसान है, मैं उम्मीद करूंगा हमेशा ऐसे ही बने रहें आप सरकार।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

थोड़ा सा पल बचा है, लेकिन इस पल को भी यादगार बनाएंगे। और अगली बार कब मिलूंगा, रात 8 बजे तो होगी ही मुलाकात आज, और 13 तारीख को फिर से मुलाकात करेंगे आपकी याद आती रही प्रोग्राम में। फिलहाल कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह शाहजहां बेगम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, शुक्रिया जी। और दोस्त हैं हमारे बबन कुमार दास, गांव रोनिया खिजर सराय गया बिहार से, और गाने की फरमाइश की है, ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है लेकिन जो है वो यकीनन आपको पसंद आएगा सरकार।

और वक्त हो गया है कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते कुछ मैसेज ले लेते हैं जी। आपने इतना मस्त शो सुनाया, मेरा तो सुनकर दिमाग कंप्यूटर की तरह हो गया। और आपको जाते जाते मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी। बसंत कुमार ठाकुर नयापारा बिरई जिला से, जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुरलिया से, कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, उनके मम्मी पापा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका लाइव सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं। सुनते रहिए सरकार। रात को 8 बजे फिर मिलता हूँ आपसे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। द वीकेंड इज फाइनली हियर, द डेडलाइंस, द ट्रैवलिंग, द स्ट्रेस, लेट्स हिट स्नूज टू ऑल ऑफ दैट बिकॉज योर होस्ट शुभांकर इज बैक ऑन दिस हॉट सीट फॉर योर फेवरेट शो ऑफ द वीक, सैटरडे सिजलर्स, वेयर वी ब्रिंग यू एन आवर ऑफ स्कॉर्चिंग हॉट ट्यून्स फॉर योर लिसनिंग प्लेजर। So, let's set the tone for the weekend with our first sizzling track. Here's Fire by BTS.

0: So that was B.O.B. by Outkast. And dear listeners, it's time for a quick break, but don't go anywhere. More sizzling tracks are waiting for you on the other side.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: Welcome back, dear listeners, to Saturday Sizzlers, only on Akashvani Rainbow, 102.6 MHz. So, let's keep the scorching hot tracks coming with a brand new track by the pop sensation Ariana Grande. It's called Stay.

0: So that was Eyes on You by Jay Sean, and it's time for another short break, dear listeners. You're listening to Saturday Sizzlers only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz.
1: Yaadein ateet se, baatein bas dil se, kyunki aapki yaad aati rahi. Rainbow par raat 9 baje. रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back, dear listeners, to Saturday Sizzlers, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Up next, let us take you back to the 90s, which is arguably the golden era of modern pop music. It is one of those eras of music which is often imitated but rarely duplicated. And this next track is considered to be a monolith, a track which is considered to be the monumental track of 90s pop. Here's Baby One More Time by Britney Spears.

0: So that was Soul Meets Body by Death Cab for Cutie, and here's time for another break.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।

0: खबरें भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: And dear listeners, with that, we have reached the end of our weekend program, Saturday Sizzlers. We hope you had a great time as much as we had playing these great tracks for you. But don't forget to join us at 10 p.m. for our show, In the Groove. It's your host, Shubhankar, signing off with the last track of the night, Bye Bye by Mariah Carey.

नमस्कार, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफक मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत के लिए 6 दिन के अमरीका के दौरे पर हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों और स्थिर को किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज से लागू हो गई है। वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित बूचा जिले में हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। और अंत में, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, वादे के अनुसार लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हाजिर हो गया हूं मैं कौन, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का है और इस सफर में एंजॉय करेंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक्स का साथ होगा और हमेशा की तरह उन दोस्तों को जो कहते हैं, मैं जो कहता हूं अपने दिल की बात, इस वक्त जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर हमेशा कहता हूं कि अपना ख्याल रखना है दोस्त, लेकिन दूसरों का ज्यादा ख्याल रखना है, फिर ये प्रोग्राम का मजा देखिएगा दुगना हो जाएगा सुनने का। एंजॉय कीजिए और मैं यहां स्टूडियो में एंजॉय करूंगा आप ही के साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती।

गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। हमारे दोस्त कह रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिखा है, और जिस जगह से लिख रहे हैं उस जगह का नाम भी नहीं लिखा है। तो मेरे दोस्त, ये ज़रूर लिखा कीजिए आपका अपना नाम और जिस जगह से आप लिख रहे हैं। लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और मैसेज भी बहुत पूरा सा हो जाएगा ना, कुछ अधूरा सा लगता है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती बहुत बढ़िया, गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया जी, बने रहिए, और भी बेहतरीन ट्रैक आ रहे हैं म्यूजिक मस्ती के इस सफर में। और भी बढ़िया बढ़िया ट्रैक्स लाया हूं मैं आपके लिए, एंजॉय।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ब्रेक के बाद छोटे से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। आदाब आदाब सरकार। सॉन्ग पसंद आ रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से और एंजॉय करते रहिएगा ब्यूटीफुल ट्रैक्स। अभी और भी आएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सुरेश वैष्णव देगाना से लिख रहे हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ लिखना है चाहते हैं, दिल में है तो लिख दीजिए। सरकार नमस्ते जी, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज आपका शो है, पता ही नहीं चल पाया। अभी हाल ही में एक दोस्त ने फोन करके बताया कि शो में आप हैं, तो तुरंत आपको शो सुनने बैठ गया। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का, सम्मान का, और ये दोस्ती हमेशा बनाए रखिएगा। और दोस्तों के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो दोस्त लिखते हैं वो हेलो हाय तो लिख देते हैं, नमस्कार नमस्ते भी लिख देते हैं, लेकिन अपना नाम और जिस जगह से हैं वो नाम नहीं लिखते हैं। तो जरूर लिखा कीजिए, मैसेज पूरा सा हो जाएगा।

0: गुलफाम खान दिल्ली शाहदरा से, सॉन्ग सुन के काफी अच्छा लग रहा है आपको मेरा आदाब, आदाब सरकार, एंजॉय करिए, और भी अच्छे ट्रैक आएंगे। आकाश चावड़ा ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा सरकार, ब्यूटीफुल ट्रैक्स लाए हूँ आपके लिए। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से, प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, स्वीकार किया सरकार और हमारा भी स्वीकार कीजिए, प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिएगा, गाने अच्छे हैं इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। ओके सुरेश वैष्णव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और भी अच्छे ट्रैक आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक जी, मैं भी हाजिर हूँ सर, मैं भी हाजिर हूँ। लिखते हैं जावेद आलम मोहम्मद जयान जयपुर से। बिल्कुल आइए, हाजिर हो गए हैं तो देखिए एंजॉय भी करेंगे इस ब्यूटीफुल ट्रैक को, इस सफर को म्यूजिक मस्ती के। म्यूजिक मस्ती में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स प्रोग्राम म्यूजिक

साइस्ता खान, अयान खान, दिल्ली शाहदरा से सॉन्ग सुन के काफी अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। आपको मेरी तरफ से आदाब, नमस्ते, आदाब, आदाब सरकार, एंजॉय कीजिए।

और दोस्तों वक्त हो गया है तकरीबन कि मुझे इस प्रोग्राम से विदा लेना पड़े, और 13 तारीख को आपकी याद आती रही प्रोग्राम में करेंगे फिर से मुलाकात। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट। नमस्कार, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास शख्सियत को लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि हर चेहरे के

0: पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर किरदार के पीछे कई सारे अनुभव होते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं और आज हमारे गेस्ट भी हैं। इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत खूबसूरती से अपनी रियल लाइफ में यूज किया और अपनी कला को और गहरा और निखारा। जी, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर निलय मिताश। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच हरप्रीत जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
0: प्लेजर इज आवर्स। और मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी रियल जिंदगी के अनुभवों को अपनी एक्टिंग में यूज किया, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरा पर हम सब ने देखा है कि निलय मिताश कौन है, क्या
1: जी
0: करते हैं। सबको आपने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा निलय कौन है?
1: हरप्रीत जी, आपने तो पहला ही क्वेश्चन एक तरह से लाइफ का जवाब मांग लिया, बिकॉज ये जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से कि निलय है कौन। आई मीन निलय मिताश तो मुझे नाम दिया गया है। अगर मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ और दे दिया होता तो क्या मैं कोई और होता? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ दिया है।
0: तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल
0: सो निलय कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपकी
1: जी
0: जर्नी कैसे रही और क्या बचपन से इंटरेस्ट था एक्टिंग में?
1: जी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ। और देखिए, आप छोटे शहर में ना आप ये नहीं सोचते हो कि आप एक्टर बनोगे। एक्टर वर्ड तो यूज भी नहीं होता, हीरो बनोगे,
0: हीरो बनोगे। ओके
1: ये आपके सोच के मच बियॉन्ड है।
0: जी
1: कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या हीरो बनूंगा, पर हाँ फिल्मों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। मैं हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था
0: ओके
1: और बाथरूम में जाके एक्टिंग प्रैक्टिस करता था,
0: लवली।
1: क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकता था वहां।
0: बाहर करते तो डांट पड़ती।
1: हाँ डांट पड़ती,
0: अच्छा।
1: कर क्या रहे हो भाई, ये पढ़ाई करो जाओ, बिकॉज दैट्स वॉट आई थिंक माई माइंड वॉज ट्रेन्ड कि बचपन से पढ़ाई करो।
0: जॉब करो।
1: इंजीनियर तो बनना ही है, इंजीनियर तो आपका मतलब ऑप्शन, अगर आप आईएएस नहीं बनते तब इंजीनियर बनना। सो दैट इज व्हाट द मेंटालिटी वाज ओवर देयर। सो पर मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार था और मैं बचपन से ही थोड़ा ड्रामेटिक इंसान रहा हूं।
0: तो आप बचपन से एक्टिंग करते थे दरवाजा बंद करके,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: कभी स्कूल में एक्ट किया या कभी कुछ प्ले में पार्टिसिपेट किया?
1: नहीं, मैं स्कूल या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं एक्टिंग रियल लाइफ में करता था,
0: रियल लाइफ में करते
1: रियल
0: थे।
1: लाइफ में।
0: प्लीज
1: या
0: हमें बताइए कैसे।
1: उधर अपने बिहार तरफ ना, उसको एक्टिंग नहीं कहते थे, नौटंकी कहते थे। आपने सुना होगा ना, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते थे।
0: जी
1: मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं बिलीव करता था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है।
0: मतलब आप पहले बिलीव करते थे और
1: हाँ
0: फिर एक्ट करते थे।
1: एक्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं एक्ट एक्टिंग कैसे करते हो। एक अच्छे एक्टर को ना एक्ट नहीं करना होता है, दे जस्ट हैव टू लिव अ कैरेक्टर। सो विडंबना ये है कि एक अच्छे एक्टर को अगर सक्सेसफुल होना है रियल लाइफ में एक्टिंग करना होता है और रियल लाइफ में जीना होता है।
0: तो आप उस एक्सपीरियंसेस को उन एक्सपीरियंसेस को जीते थे कि
1: जीता था,
0: अभी मेरे पेट में दर्द हो
1: मुझे
0: रहा
1: बिलीव
0: है,
1: होने
0: आपको
1: लगता था।
0: बिलीव होने लगता था।
1: सो उसको अपेरेंटली मुझे बाद में पता चला कि उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं।
0: वाह। तो इसमें हम
1: बट
0: जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती
1: जी
0: हूँ कि चलिए पेट दर्द का बहाना किया, स्कूल
1: हाँ
0: नहीं गए, और
1: हाँ
0: इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पेरेंट्स को पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एक्टर बन सकते हैं?
1: हाँ देखो, उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, बट हाँ उन्हें ये यकीन हो गया कि
0: एक्टिंग
1: ये लड़का का पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा है। एक बार मुझे, मैं ना बहुत ही नटखट था, बहुत ही नॉटी था, तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था। एंड आई वॉज लाइक, मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है। एंड माई डैड वॉज लाइक जाना तो पड़ेगा। उस समय मुजफ्फरपुर से रांची बस चलती थी, वो एक अलग ही जमाना था, बस चलती थी, उसमें वीडियो कोच लगा रहता था एंड वी यूज्ड टू वॉच, उसमें पायरेटेड मूवीज दिखाते थे। एंड मैं रास्ते में अपने पापा को बोलते रहा कि पापा सोच लो एक बार, मुझे नहीं जाना है। ही वाज लाइक, मैं सोच लिया तो मैं तो जाना ही पड़ेगा, तुम बैठे हुए हो।

0: वी रीच रांची बस स्टॉप पे। मैं एक बार आखिरी बार पूछा, पापा पक्का? उन्होंने बोला पक्का। मैं वहां जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे किडनैप करके ले जा रहा है।
1: ओह माय गॉड,
0: मतलब वहां भीड़ गैदर हो गई थी, पापा को पीटने वाले थे लोग।
1: ओह माय
0: ही
1: गुडनेस,
0: समहाउ कन्विंस देम कि मैं उनका बेटा हूं।
1: मुझे लगता है कि आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था आपका बचपन
0: आई
1: में
0: कन्विंस सो मेनी पीपल कि आई वॉज बींग किडनैप्ड।
1: मासेस को आपने
0: हाँ,
1: मतलब एक
0: मासेस को
1: रियल टाइम में कन्विंस
0: रियल थे,
1: कर दिया।
0: हमें बच्चा था।
1: जी
0: सो तभी मुझे पता चला कि हाँ, नौटंकी तो अच्छा कर लेता हूँ।
1: नौटंकी कर लेते
0: हाँ
1: हैं। एंड देन उसके बाद जैसे आपने बताया कि हमारे इंडियन
0: जी।
1: हाउसहोल्ड्स में एक कन्वेंशनल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, स्टेबल जॉब करें, फिर कैसे एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, कैसे कन्विंस किया घर वालों को और खुद को सबसे पहले?
0: कुछ डिसीजन आप अपने लिए खुद लेते हो, कुछ डिसीजन बस आई डोंट नो डेस्टिनी ले लेती है। मैं कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा। मैं तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के भी बाद एमबीए करने का प्लान था,
1: अच्छा।
0: बट समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ। आई लॉस्ट माय मदर एंड देन यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ठीक है, सक्सेसफुल हो के पैसे कमा के भी उसका क्या फायदा? पैसे तो जान नहीं बचा सकता ना। एंड ऑल्सो वेन यू लूज एवरीथिंग, यू नो, वेन यू लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हारने का डर खत्म हो जाता है। तो मेरा हारने का डर खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या था, अगर जीना है तो जो मन कर रहा है तो वो करता है। तो मुझे मन किया उस समय ये भी, तब भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्सीडेंटली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया बैंगलोर में ही, एंड दैट वॉज एन इम्प्रोव थिएटर ग्रुप।
1: मतलब अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए कह
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: हाँ सॉर्ट ऑफ शुरुआत में इट वॉज एन एस्केप। मैं बस कुछ करना था, देखता हूँ कुछ तो करूँ, एटलीस्ट एक्टिंग करने में मजा आता है, इसलिए ज्वाइन किया था।
1: एंड यू हैड अ स्टेबल जॉब साइड बाय साइड, आप काम भी कर
0: यस
1: रहे थे।
0: यस
1: और मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि बचपन से ही आपको फिल्मों से बहुत प्यार था और आज हम बैठे भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, तो वो दिन भी ऐसे थे जब दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म्स आती थी, तो कुछ ऐसा याद है कि स्क्रीन पर आपने किसी हीरो को देखा, बिकॉज हीरो यू नो वहां पर
0: हीरो
1: हीरो ही होते हैं,
0: हीरो
1: एक्टर्स
0: हीरो
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हीरो को देखा और सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ या मेरा मन कर रहा है कि मैं भी करूं?
0: मुझे तो बचपन के विजुअल्स याद है, DD1 पे चंद्रकांता की कहानी। ये माना है पुरानी शक्तिमान, मैं पागल था ये सब देखने के। उस समय छोटे शहर में लाइट कट जाती थी, तो अब आई वॉज लाइक ढूंढो किस घर में जनरेटर है। बिकॉज
1: एपिसोड मिस नहीं होना
0: एपिसोड नहीं
1: चाहिए।
0: मिस होना चाहिए, बिकॉज उस समय ये नहीं था ना OTT की, फिर कभी भी देख लो। आई वॉज लाइक ये हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी घर जनरेटर ढूंढ के लाओ। एंड आई वॉज सो जिद्दी, आई वॉज लाइक माई डैड, आई वुड स्टार्ट क्राइंग। आई वुड से कि अगर अगर मैं मिस कर गया ना ये, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आई यूज इमोशनली ब्लैकमेल माई पेरेंट्स फॉर दिस।
1: तो
0: तो
1: पढ़ाई में आप कैसे थे?
0: मैं एक्चुअली पढ़ाई में काफी अच्छा था। आई हैड अ वेरी एनालिटिकल ब्रेन, लाइक मैथ्स फिजिक्स, सो उन चीजों में काफी अच्छा था। इनफैक्ट नाउ आई थिंक कि एक्टिंग में भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है।
1: फिर जब एक्टिंग का सोचा, थिएटर ज्वाइन किया, तो कब वो मोमेंट आया जब लगा कि नहीं अब इसी रास्ते पर चलना है, जॉब को पीछे छोड़ देते हैं और नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं लाइफ में, कब लगा ऐसा?
0: लाइक आई टोल्ड यू आफ्टर दैट मदर्स डेथ आई वॉज डूइंग दैट, बट अ डे हैपेंड व्हेन जब मैं सोच रहा था मैं करूं या ना करूं। एंड दैट डे व्हेन आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑटो से। एंड फॉर मी इन माई माइंड इट वॉज हैपनिंग इन स्लो मोशन, धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ। एंड आई थॉट आई लॉस्ट माई लाइफ, बट आई डिड नॉट। बट मुझे जवाब मिला एक, तुम रिस्क एनालिसिस कर रहे थे, जिंदगी खत्म होने वाली थी।
1: वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड यहां पर
0: टेक्निकल
1: चला।
0: माइंड रिस्क एनालिसिस का मतलब ही चेंज हो गया एंड मैं नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया।
1: तो हम आपके इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर और रिस्क टेकर भी जोड़ सकते हैं।
0: मेरी कहानी पूरी फिल्मी है, तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे। मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ, बहुत फिल्मी कारनामे किए हैं मैंने। लाइक मुझे तो कभी कभी लगता है मैं रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलता हूँ। लाइक

0: नॉर्मली बात नहीं करता हूँ. लाइक माई पेरेंट्स एंड पीपल क्लोज टू मी, दे क्रिटिसाइज.
1: तो ऑफ
0: अच्छा
1: कैमरा भी हम कह सकते हैं कि नीले एक्टिंग करते रहते हैं.
0: हाँ, ऑफ कैमरा ही मैं एक्टिंग करता हूँ,
1: अच्छा
0: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ.
1: ओके, बट आई होप यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी.
0: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ, कैमरा ऑन है.
1: ऑलराइट. अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ज्वाइन किया थिएटर और इससे आगे बढ़ने की सोची, तो डेफिनेटली सबका सपना होता है कि मुंबई जाना है, माया
0: मुंबई
1: नगरी
0: जाना है.
1: बोलते हैं. अब यहाँ पर आना और स्ट्रगल करना, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है पर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने डिसीजन फाइनल लिया फाइनली, तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल गया? उन्होंने कहा खुशी खुशी जाइए मुंबई में और अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, ऐसा कुछ था? जा निले जी ले अपनी जिंदगी, समथिंग लाइक दैट.
0: नहीं, अमरीश पुरी जी नहीं थे
1: जी
0: मेरे डैड. सो थिंग इज, लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो. एंड दे वुड हैव स्टिल सपोर्टेड मी अगर मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता. मैं डायलॉग मार के आ गया ना, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, मैं खुद से अचीव करके आऊंगा.
1: कदम कदम पर एक्टिंग की है आपने.
0: हाँ,
1: ऑल
0: तो ये
1: राइट.
0: जो मैंने बोल दिया ना, ये लाइन मुझे हॉन्ट किया है बहुत बार.
1: तो
0: जब
1: अभी
0: पैसे खत्म हो गए,
1: यस, अब वापस कैसे
0: क्यों बोला
1: जाएं?
0: था
1: ऑल
0: मैंने. मैं
1: राइट.
0: मांग लेता ना, क्यों बोल के आ गया मैंने.
1: सो एक रिस्क लिया, मुंबई आ
0: हाँ.
1: गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था? कहाँ रहेंगे, खाना पीना, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनें, सो कैसे प्लान किया वो सब?
0: शुरू में ये प्लान ही नहीं था. शुरू में प्लान था एक्टिंग कोर्स करूंगा,
1: ओके.
0: एंड आई हैड दिस थिंग, मैं जो भी कोर्स करूं या कोई भी पढ़ाई करूं, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर. एंड आई हैड दिस थिंग कि मुझे करना ही है. एंड वहां भी आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स. एंड मेरे माइंड में तो मैं निकलूंगा प्रोड्यूसर्स
1: अच्छा,
0: लाइन
1: लाइन
0: में कि
1: लगी होगी
0: हाँ
1: प्रोड्यूसर्स की आराम से.
0: हाँ आई चूज. मेरे दिमाग में था कि
1: ओ
0: ठीक है
1: यस.
0: यार, कॉमेडी नहीं करना
1: ओके
0: है,
1: ओके.
0: थोड़ा सीरियस से स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी बाद में करेंगे फॉर अ चेंज.
1: लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर, यू नो, लेट मी
0: यार
1: जस्ट पिक
0: राइट
1: एंड
0: राइट
1: चूज.
0: राइट. मैं दिमाग में कैलकुलेट करता था कि ठीक है देखना, स्टीरियोटाइप मत हो जाना शुरू में ही, ठीक है, एक ही टाइप के रोल मत करना. मैं अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग कर रहा था.
1: तो अपने दिमाग में आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्टर थे, क्योंकि बचपन से ऑलरेडी काफी एक्टिंग कर ही ली थी आपने.
0: हाँ. मैं निकल के भी था, प्रोड्यूसर्स नहीं पहचाने थे, उनकी गलती थी.
1: बिल्कुल. सो एक्टिंग जब आपने
0: हाँ
1: सीखी, सो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर एक्ट करते वक्त पहली बार ना सुनने को मिला होगा, ये अच्छा नहीं किया, तो वो जो टॉपर माइंडसेट है उसको कहीं धक्का लगा, अरे मैं तो हमेशा सबसे आगे, अभी क्या हो गया?
0: देखिए, ना सुनना ये बात पे कि ये अच्छा नहीं किया, उससे पहले मुंबई ने बहुत ना सुना दिया.
1: जैसे
0: आप लाइन में खड़े रहते थे वहां ऑडिशन के लिए, एंड द वे एक न्यू कमर को, एक्टर को वहां ट्रीट किया जाता है, फिट फिट फिट नॉट फिट. हर एक जगह ऐसे बोला, हटो क्या कर क्या रहे हो, बोला ना नॉट फिट हटो. मैं तो शॉक में था शुरू में, ये क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, और अगर मैं बन गया तो.
1: तो ऐसे जब ना सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट होती है,
0: जी
1: क्योंकि आप एक अनजान शहर में हैं, फैमिली भी साथ में नहीं है कि घर चले जाएं तो थोड़ा वो पैम्पर कर दें,
0: जी
1: ऐसे वक्त में कैसे खुद को संभालते, स्पेशली एज एन आउटसाइडर? आप एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत सारे सपने हैं आपके, बट द वर्ल्ड इज नॉट वेरी काइंड टू यू.
0: मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं मानता भी हूं कि एक एक्टर को, अच्छा एक्टर बने रहने के लिए ना, वल्नरेबल होना बहुत जरूरी है. तो वो मैं छोड़ नहीं सकता था, और मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ. मैं तो इनफैक्ट बहुत बार रोता हूँ.
1: तो इस माया नगरी में जहां पर कई
0: हाँ
1: प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमोशनल होना एक वीकनेस नहीं माना जाता?
0: माना जाता, लोग मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है. इनफैक्ट मैं जहां से आया हूँ, मैं छोटे जगह से आया हूँ, वहां तो रोना बाई अ मर्द इज नॉट कंसिडर्ड गुड.
1: पर
0: मर्द मर्द होके रो रहे हो भाई.
1: आप रोते हैं.
0: मैं तो सिनेमा देख के रो देता हूँ. मुझे लगता है अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोना. आई थिंक दैट इज ब्रेव. एंड वाई टू टर्म इट कि मर्द होके, उसमें तो बहुत सारे कंसेप्चुअली गड़बड़ है कि ओके मर्द आर सपोज टू बी ब्रेव. नो आई डोंट थिंक सो. आई मीन इवन अगर आप बायोलॉजिकली

0: हिस्टोरिकली भी देखिएगा, आई फाइंड वुमेन आर ब्रेवर देन मैन. दे हैव ऑलवेज बीन. देयर इज अ रीजन गॉड, प्रकृति, साइंस, किसी ने, आई मीन दे हैव गिवन वुमेन द राइट टू गिव बर्थ.
1: सो वुमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी ब्यूटीफुली, यू नो, अपने दोस्तों से बातें कर ली, रो लिया, खुद को कहीं ना कहीं वे एक्सप्रेस करती हैं. आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जब डाउन फील करते हो, लो फील करते हो? व्हाट्स योर कोपिंग मैकेनिज्म?
0: एंड आई जस्ट गो क्वाइट. आई मे बी आई क्राई समटाइम्स एंड आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट समटाइम्स.
1: लिखते
0: आई
1: लिखते भी
0: हाँ
1: हैं?
0: कभी कभी लिखने लगता हूँ. इनफैक्ट एक बार बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था. मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था. आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस एंड मैंने कुछ लिखा था. इफ यू
1: प्लीज
0: परमिट मैं
1: प्लीज
0: सुनाना
1: जी.
0: चाहूंगा. एंड उस समय मेरा बहुत डाउन चल रहा था. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है. हाउ डू आई फाइट.
1: मुंबई में थे आप?
0: मुंबई में हाँ. तब मैंने लिखा था, आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे. अधूरे से जो ख्वाब रह गए थे उसे पूरा यही कराएंगे. दर्द जो लिया है उधार में, अब उसका कर्ज उतारना है. मुस्कुराहटों के पीछे जो छुपा रखे हो, अब उस समुंदर में डूब जाना है. तेज लहरें आएंगी, मझधार में तुम फंस भी जाओगे, लेकिन उसका सामना ही ना किया तो कभी तैरना ना सीख पाओगे. दुनिया की बातों पे जो एतबार करने लगे हो, शायद खुद से ही थोड़ा कम प्यार करने लगे हो. कभी आंखें मूंद करके देख लो, शायद वो अनदेखा सच देख पाओगे. अंधेरे में जो देखना सीख लिया, शायद मन के उस शांत पुकार को भी सुन पाओगे. आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे.
1: दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. बहुत डीप है. मुझे लगता है कि शायद मैं पोइट वर्ड मिस कर गई आपके इंट्रोडक्शन में. आप बहुत अच्छा लिखते हैं.
0: क्यों
1: और आई थिंक मैं अब मेकआउट कर सकती हूँ कि कैसे आप उन लो मोमेंट्स से खुद को उबारते हैं, बाहर लेकर आते हैं. आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आपने बताया,
0: जी.
1: लेकिन ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको एक्टिंग में हेल्प करते हैं? आपने कहा आपने एक्टिंग सीखी है,
0: जी
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? सीखकर आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, या ऐसे ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जिंदगी के अनुभवों को अपने आगे रख के आप अच्छे एक्टर बनते हैं? क्या है ये अच्छा एक्टर बनने का फॉर्मूला?
0: देखिए, अच्छा एक्टर बनना या किसी भी फील्ड में एक्टिंग, किसी भी फील्ड में अच्छा करना, बेसिकली आप बात करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल इनफ होना.
1: जी
0: तो उसके लिए आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा, बट उस सीख को कैसे आप परसीव करते हो. जैसे अगर एक्टिंग में देखे, बहुत सारे थ्योरीज है, माइजनर,
1: जी
0: मेथड एक्टिंग, स्टीफन बुक, मैंने सब पढ़ा, सब पढ़ा. बट अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ले लूं कि दैट इज नॉलेज, तो मैं वहीं पे फंस गया. दैट इज अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन,
1: राइट
0: उनका एक्टिंग का परसेप्शन है. मैं पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो उनका सोच किधर जा रहा है.
1: राइट
0: अगर वो इंफॉर्मेशन लेके मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के साथ कंबाइन करूंगा ना, तब शायद नॉलेज की तरफ बढ़ पाऊंगा. पर अगर उसको मैं फिक्स कर लिया, डिफाइन कर लिया कि यही सच है, तो मैं वहीं पे बंध गया. तो एक्टर तो छोड़ो, आप एक्टिंग तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे.
1: तो कभी ऐसा हुआ कि एक्टिंग करते करते कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपको लगा कि अभी इससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, कुछ ज्यादा ही आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगे?
0: अभी हमारी जो सीरीज है हेलो हम बोल रहे
1: जी,
0: हैं,
1: इस पर हम बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे. जी बताइए.
0: पर उसमें सुष्मिता मुखर्जी जी, शी प्लेड माई मदर. एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन है बिटवीन पप्पू एंड
1: पप्पू योर
0: हिज
1: कैरेक्टर.
0: या वो उनका एक बहुत ही इमोशनल सीन है सुष्मिता जी के साथ.
1: जी
0: एंड इट एंड्स विद ना बहुत ही प्यारा सा हग. माँ उसको ऐसे करती है एंड पप्पू उसके गोद में है. एंड आई वॉज एक्टिंग एंड सडनली वेन दैट हग हैपेंड ना,

0: आई रिमेम्बर्ड अ फीलिंग जो शायद बहुत सालों से नहीं किया था
1: आप मिस कर रहे थे.
0: या मिस क्या, वो महसूस जो है ना, वो एहसास समो में भूल रहा था, एंड अचानक से वो एहसास जो फील हुआ ना, आई रिमेम्बर, ओ ओके, आई यूज्ड टू हैव दैट. सो दैट वाज समथिंग, यू नो, अच्छा भी लगा, हैवी भी लगा. एंड देन कट.
1: तो कट के बाद उस जोन से बाहर आने में टाइम कितना लगा?
0: सी दिस पर्टिकुलर इमोशन आई हैव ट्रेन माई माइंड, नाउ आई नो इट हैज, मतलब शुरुआत में ऐसे जब भी हुआ तो मैंने अपने अपने तरीके बनाए निकालने के, बट बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो मुझे इफेक्ट किए हुए. आई मीन
1: जैसे
0: वयम, वयम मूवी अगर
1: या वयम पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पहला प्रोफेशनल जो असाइनमेंट था आपका एक्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. कैसे मिला, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली आपने एक्टिंग सीख ली और
0: हाँ
1: कुछ अपने इमोशंस से उसको निखार भी लिया, तो वो
0: हाँ
1: पहला असाइनमेंट क्या था?
0: ओके. मैं जब बैरी जॉन से निकला तो मुझे तुरंत एक असाइनमेंट भी मिल गया था, एंड मुझे लगा हो गया. यही तो मैं बोल रहा था तुम
1: यही तो
0: लोग को,
1: चाहिए था.
0: चाहिए था, दूर की बात है, मैंने तो
1: ओ
0: बोल दिया था, तुम ही नहीं सुन रहे थे. मैं ही क्या, देखो अब आगे देखना. वो सुपर फ्लॉप हो गई. शायद किसी ने नहीं देखा.
1: ओके तो किसी ने नहीं
0: सो मैं
1: देखा.
0: उसको एक्टिंग डेब्यू ही नहीं
1: अच्छा ठीक है, तो
0: माना.
1: आप बताना चाहेंगे वो क्या था, कि ढक कर रखना चाहेंगे उसको राज की
0: जब किसी ने
1: तरह?
0: देखा ही नहीं तो मैं तो
1: शायद
0: डेब्यू
1: आप
0: अभी
1: देख लें.
0: डेब्यू अभी कर रहा हूं.
1: ओके सो फिर यानी बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, यू नो, और एक्टिंग जॉब्स आते हैं जो एक एक्टर करता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है. व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नाउ आई हैव अराइव्ड? वाज इट वयम?
0: आई स्टिल डोंट थिंक आई हैव अराइव्ड, बट एटलीस्ट वयम गेव मी समथिंग जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 14 साल में आपका नेटवर्क बन जाता है, यू स्टार्ट यू नो हैंगिंग आउट विद पीपल, फिर वो देखे, फिर वो दूसरों को देखे दिखाए, एक इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क बनता है. तो उनके अंदर ये बिलीव हुआ कि अच्छा ये ऐसे ही नहीं है, ये तो अच्छा एक्टर है, राइट. उससे पहले इट वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है, हर जगह टॉप किया है, ये किया है, बट वयम ने उन्हें कुछ और एक प्रूफ दे दिया.
1: वयम आपकी जो सीरीज है उसमें आपने 10 डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल संजीव कुमार जी की मूवी नया दिन नई रात. कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पा रही थी, उसमें उनके 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वहां पर भी नवरस की बात होती है, बट वयम समवेयर इज अ बिट डार्क. सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? और क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं इस फील्ड में, और वयम जैसा आपको एक उस मूवी में एक किरदार निभाने को आपको मिला, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रे शेड्स भी हैं, कभी ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी आई नीड मोर ट्रेनिंग, आई नीड मोर एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा मोमेंट आया?
0: नहीं, ये कभी नहीं आया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट आई न्यू व्हेन वयम वाज रिटन. आई न्यू, आई टोल्ड अभियांग जो डायरेक्टर है उनको, आई टोल्ड हिम कि मैं अवार्ड लेके आने वाला हूँ इसमें. आई टोल्ड हिम दैट टाइम ओनली, बनाने से पहले, कि मैं इसमें अवार्ड लेके आऊंगा. वो भी बोले कि हाँ पता है. वो तो आप लेके आओगे.
1: राइट.
0: एंड आई वॉन्ट 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स. मैं तीन चीज हूँ, एन ऑडियंस, अ राइटर एंड एन एक्टर. एज एन ऑडियंस आई लव रोमांटिक कॉमेडी, आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी, इवन गोविंदा वाली कॉमेडीज, आई वॉच दोज कंटेंट्स. एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई हैव अ विजन, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं और वो है चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को. एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैरेक्टर को.
1: हम सबके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी लाइफ में, जब बहुत इट गेट्स टू मच, तो फिर कोई वेकेशन पर चला जाता है, कोई रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो थेरेपी की तरह होता है.
0: या लेटली आई मीन आई गो ट्रेवलिंग. इनफैक्ट तमाशा मूवी आपने देखा है, उसमें हाय आई एम वेद,
1: यस.
0: आई डू दैट.
1: वाओ दैट्स नाइस.
0: दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, आई नो, बट ठीक है, क्योंकि अब मैंने वो डायलॉग खत्म कर दिया ना कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा. वो डायलॉग दैट डजंट स्टैंड एनी
1: तभी
0: मोर,
1: वापस
0: अब
1: जाने
0: मैं ले
1: का,
0: सकता हूँ
1: अच्छा
0: आपसे.
1: यानी वापस जाने का स्कोप है, ले सकते हैं जाके,
0: हाँ, अब ले
1: अब
0: सकता
1: ले
0: हूँ.
1: सकते
0: तो
1: हैं.
0: अब क्या है कि जरा मैं घूम के आता हूँ, पर्सपेक्टिव लेके

0: आता हूँ, कार्ड दे देना बस।
1: तो घूमते घूमते आप निकल गए ओटीटी पीबी वेव्स की तरफ और किया हेलो हम बोल रहे हैं। तो
0: हेलो।
1: हेलो हम बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं
0: तो
1: बताएं।
0: पप्पू प्रसाद पांडे एकदम ही केयरफुली लड़का है, जैसे गांव के लड़के होते हैं। तो एक ऐसा इंसान, एक दिन उसके दोस्तों ने उन्हें बोला कि भाई तेरे पास लड़की क्यों नहीं है। एंड उस चैलेंज में एक दोस्त ने मास्टर प्लान निकाला कि मैं 100 लड़कियों के नंबर ला रहा हूं,
1: अच्छा
0: एक ना एक तो कोई लड़की तुमको प्यार हो ही जाएगा, एक ना एक भाभी होगी। एंड उसी बकवास में ना ही एक्सीडेंटली कॉल्स अ गर्ल हु इज द हीरोइन ऑफ द शो, पाखीदारी, प्रतिभा तिवारी।
1: जी
0: एंड देन एवरीथिंग टेक्स अ पॉलिटिकल एंगल,
1: पॉलिटिकल एंगल, आई थॉट
0: पॉलिटिकल
1: इट्स
0: एंगल।
1: कॉमेडी।
0: इट, अगर आप ट्रेलर देखें ना,
1: जी
0: उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया ये है क्या, क्या ये कॉमेडी है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, क्या ये पॉलिटिकल एंगल
1: अब तो
0: है,
1: मुझे सस्पेंस भी नजर आ रहा है इसमें।
0: क्या ये सस्पेंस है। ये हमारी जो जिंदगी है, आपकी ही
1: जी
0: जिंदगी, अगर मैं आपकी जिंदगी को जॉनर दे दूंगा, ठीक है, आपकी जिंदगी रोमांटिक है, आपकी जिंदगी पॉलिटिकल, कैसा लगेगा आपको?
1: जी
0: वैसे ही ये पप्पू प्रसाद पांडे, पाखीदारी, पवन, सिंदूरी पान सिन्हा जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं, मेरी माँ सुष्मिता मुखर्जी,
1: जी
0: ये इन सब की कहानी है।
1: जी
0: कोई भी कहानी को जॉनर क्यों देते हो? कहानियां तो बस कहानियां होती है, उसमें हर जॉनर आते हैं। हमारी जिंदगी में दिन भर में 10 जॉनर आते हैं। तो वैसे ही हेलो
1: जी
0: हम बोल रहे हैं, जॉनरलेस है, बस कहानी है।
1: और ये कहानी बहुत रिलेटेबल भी है, गांव
0: जी
1: देहात की कहानी। यहाँ पर इमोशंस हैं, आपस में बॉन्डिंग नजर आ रही है फ्रेंड्स की।
0: जी
1: आपने एक मदर और सन के रिलेशनशिप की बात करी और फिर वो जमाना जब कॉल कर कर आप
0: हाय,
1: मिस कॉल में हम सोचते थे मिस
0: मजा
1: कॉल देंगे,
0: आता
1: ब्लैंक कॉल करेंगे और आवाज सुनेंगे।
0: था।
1: तो ये जो है, हम जब आज बात करते हैं
0: हाँ
1: इंक्लूजन की, हर कोई वो कंटेंट देखना चाहता है जो रिलेटेबल हो। एक यूथ
0: राइट
1: को उसके
0: राइट
1: जैसा कंटेंट चाहिए, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस,
0: राइट
1: और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको उनके जैसा कंटेंट चाहिए। गांव देहात के लोगों को भी अपनी भाषा, अपने जैसा कंटेंट चाहिए। सो इसमें किस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उस चीज को कैसे जिया आपने, कितने अपने पर्सनल एलिमेंट्स आपने पप्पू प्रसाद पांडे जी में डाले।
0: काश काश पप्पू प्रसाद पांडे जो काम करते हैं वो मैं कर पाता। वो
1: जी
0: मैं बस माइंड में करता था बचपन में, ओके, साइकिल पे अगर आगे लड़की को बैठा के घुमाना वो सब नहीं कर
1: अब रोड्स रोड्स पे ही करना
0: पाता
1: भी मुश्किल हो गया एक्चुअली।
0: था। वो मैं दिमाग में तो करते, कितने बार किए
1: हाँ,
0: होंगे बचपन में, पर वो
1: इमेजिनेशन।
0: होता नहीं
1: जी
0: था। तो जैसे हमारे सेट पे भी हुआ था ये बात कि साइकिल पे आगे चलाना था, और मुझे साइकिल चलाना उतना अच्छे से आता
1: मैं
0: नहीं
1: पूछने
0: था।
1: वाली थी, साइकिल चलानी आती है आपको?
0: बचपन में मैंने चलाया था, पर किसी लड़की को तो आगे नहीं बैठाया था।
1: अच्छा, उन्हें एक्सपीरियंस था।
0: हाँ, तो मैंने बोला प्रैक्टिस करना है, और उन्होंने प्रैक्टिस करा दिया बर्थडे से। सही से पूछो, मैंने ये नहीं बोला था हीरोइन के साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए। तो वो एक्सपीरियंस इज नॉट द सेम, बट इट वॉज फन, इट वॉज फन। आई वॉज ट्राइंग टू से, हाँ, पप्पू प्रसाद पांडे जो है, मैं कॉलेज लाइफ में ना जो थोड़ा केयरफ्री था एंड थोड़ा बिंदास था,
1: अरे गांव की जो स्लो लाइफ होती है, उस स्लो लाइफ में रहने वाला इंसान, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, वैसा है कुछ।
0: हाँ वैसे ही है, वैसे ही उन लोग, आई मीन उसमें डायलॉग है, चल भाई काम करने चलते हैं। हाँ चल, क्या काम?
1: अच्छा
0: चाय पीने।
1: अच्छा या वो देख लेंगे क्या करना है।
0: हाँ, वो चलो तो सही,
1: जी
0: देखो तो सही, चाय पियो तो
1: राइट,
0: सही,
1: काम भी निकल जाएगा,
0: हो जाएगा,
1: हो
0: देखेंगे
1: जाएगा चाय।
0: काम क्या करना।
1: अभी आपने कहा कि हीरोइन की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए साइकिल पर
0: हाँ
1: बैठने के लिए। अभी जब हीरोइन बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग हो गया
0: हाँ
1: होगा सीन। मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर के लिए
0: हाँ
1: उसके जो को एक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में।
0: देखिए, ये जब मैंने एक्टिंग शुरुआत किया था ना, इवन बैरी जॉन में, मैं बहुत अच्छे मोनोलॉग्स देता था। ओके, एट द रिस्क ऑफ नॉट साउंडिंग वेरी हम्बल, आई वाज वंस टर्म किंग ऑफ मोनोलॉग्स,
1: ओके ग्रेट।
0: बट गिविंग अ मोनोलॉग इज समथिंग एल्स, ओनिंग अ स्टेज, यू परफॉर्मिंग, वो था। लेकिन जब आपको सीन करना होता है ना, तो एक दूसरा इंसान भी है।
1: जी
0: अब यहां आप अपना मोनोलॉग नहीं दे सकते हो, आपको समझना होगा। तो मैं शुरू में जब करता था, और अगर दूसरा एक्टर वीक

0: तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमारा सीन खराब हो गया, और मैं खुद में सोचता था यार काश ये अच्छा एक्टर होता या होती, अच्छा सीन हो जाता।
1: तो
0: लेकिन आज
1: रीटेक रीटेक ले लें।
0: रीटेक, अगर वो उन्हें उतना इमोशन ही देने नहीं आता है या वो उतने अच्छे एक्टर ही नहीं है, तो मुश्किल हो
1: तो
0: जाएगा।
1: कम्युनिकेशन करना, बताना उनको इजी होता है।
0: मैं नहीं बताता था ना, मैं क्यों बताऊंगा, डायरेक्टर का काम है। ये एक्टर्स का, एक एक्टर दूसरे एक्टर को ये नहीं बोल सकता है भाई, थोड़ा एक्टर्स का ईगो होता है।
1: अच्छा,
0: तारीफ कर सकता है, बुराई नहीं।
1: क्रिटिसाइज नहीं कर
0: हाँ,
1: सकते।
0: क्रिटिसाइज नहीं, दे टेक इट पर्सनली। अब एक दूसरी बात समझ में आई है कि एक्टर वीक कोई नहीं होता है, ठीक है, आपका परसेप्शन है। हो सकता है वो एक्टर कम इमोशन दे रहा हो सकता है वो फंबल कर रहा हो। व्हाट इफ मेरा जो पर्सन सुन रहा है उसको, वो उसको वैसे ही रिसीव करे जैसे वो पर्सन बोल रहा है या बोल रही है। अगर आप अपना रिसेप्शन चेंज कर दोगे ना, आपका एक्टिंग शायद उतना अच्छा ना लगे जितना आप करने वाले थे, पर
1: जी।
0: उसका एक्टिंग अच्छा लगने लगेगा और उससे सीन बेहतर हो जाएगा।
1: राइट।
0: और अगर सीन बेहतर हुआ, प्रोडक्ट बेहतर हुआ, फिल्म बेटर हुआ, तो फिर आपका भी फायदा।
1: बिल्कुल।
0: तो अब ये बात समझ में आई है कि हर जगह आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो।
1: या इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द अदर पर्सन एज वेल।
0: राइट राइट
1: जी।
0: समटाइम्स टेकिंग अ बैक सीट
1: या
0: फॉर द फिल्म,
1: इज द
0: बिकॉज आई कम
1: वाइजेस्ट।
0: फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस कि मैं अभी भी ओल्ड स्कूल हूं, कर्म ही धर्म है, मतलब फिल्म मेरे लिए भगवान है, दैट्स इट,
1: जी।
0: आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ इट। सो फिल्म का फायदा होगा, मेरे भगवान का फायदा होगा, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है।
1: तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता, लाइफ कम्स ए फुल सर्कल। बचपन में दूरदर्शन देखना और आज पीबी वेव्स के साथ जुड़ना, हेलो हम बोल रहे हैं के जरिए। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, लाइक जिस एक स्क्रीन पर आप सोचते थे कि आप भी जाएं एक्ट करें, शक्तिमान आपने बताया,
0: शक्तिमान,
1: चंद्रकांता आपने बताया,
0: चंद्रकांता,
1: और आज पीबी वेव्स के साथ आप जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
0: एक्सपीरियंस मेरे लिए तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीबी वेव्स। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन प्रसार भारती डिजिटलाइज हो गया,
1: जी।
0: सो पीबी वेव्स इज लाइक द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया, लाइक सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और मुझे पीबी वेव्स का ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे ना बहुत सारे रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं,
1: जी।
0: तो बहुत सारे जो प्राइवेट एप्स है वो वहां पे नहीं खुलते हैं, कहीं खुलते हैं कहीं नहीं खुलते हैं।
1: जी।
0: बट इफ यू नो पीबी वेव्स इज प्रेजेंट इन लाइक आई थिंक
1: या
0: 137 कंट्रीज और वन
1: वेल
0: थर्टी
1: नाउ
0: एट
1: इट्स
0: कंट्रीज
1: डिजिटल सो यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनीवेयर।
0: नो, बट दे आर मेनी एप्स, प्राइवेट
1: ओके।
0: एप्स जो
1: या
0: इंडिया के बाहर एक्सेसिबल नहीं
1: हाँ
0: है।
1: एग्जैक्टली।
0: सो ऑल मैं बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ऑल, वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, बट दिस एवरीवन इज एबल टू वॉच,
1: तो व्यूज बढ़ रहे हैं
0: व्यूज बढ़ रहे हैं। एंड जैसा कि आपने बताया, मैं
1: फिर।
0: DD1 पे वेट करता था कि आज कोई नई मूवी लगाने वाले हैं,
1: जी
0: उसमें दिखाता है ना एड कि ये मूवी आने वाला है किसी दिन, कोई नई मूवी। नई मूवी मतलब बस एक ही दो साल पुरानी मूवी,
1: जी
0: दैट वाज न्यू मूवी।
1: सो मुझे लगता है कि आप काफी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि रेडियो पर गाने सुने तो आज आकाशवाणी में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन पर मूवीज देखी और पीबी वेव्स पर खुद एक्ट भी किया। मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की सीरीज होती हैं, इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, कोई इसे क्यों देखे, क्या यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके इसको बनाया गया है, मैं इसको क्यों देखूं, और क्योंकि वो भी तब जब भैया जी कौन है ये मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है।
0: देखिए ये मुझे तो आप इसलिए, मुझे लगता है आप इसलिए देखिए ना कि हर जगह बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आइए ना चाय पी के गप हो रहा है।
1: जिसकी बहुत जरूरत है, एक लग्जरी एक्चुअली है।
0: कुछ कोई बहुत चीजों का तो मतलब नहीं है। अब इस सीन का क्या मतलब है भाई, ये 100 नंबर लाए हैं, कॉल करो, एक ना एक तो भाभी निकल जाएगी। और वो कॉल किए जा रहे हैं, कोई किसी को
1: जी
0: लग जाता है कॉल, वो एंड पप्पू प्रसाद पांडे, हेलो हाँ कौन बोल रही है, वैसे जल्दी बताइए, जल्दी बात कीजिए, हमको स्कूल निकलना
1: जी
0: है। ईच वन टर्न्स आउट टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड दे आर लाइक शॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि अच्छा ये तो गुनाह हो
1: तो
0: गया।
1: कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पर इस को शूट करते वक्त।
0: शूट करते वक्त फनी इंसिडेंट्स बहुत हुए। वन थिंग आई रिमेम्बर वाज दैट साइकिल शॉट आई वाज सेलिंग. हाँ, तो वहां पे ना जब एडी को एंड ऑल प्रैक्टिस कराता था, एवरीवन यूज्ड टू लाफ. गांव था,
1: ओ यस
0: कर क्या रहे हो, कर
1: जी
0: क्या रहे हो, बना क्या रहे हो हीरोइन की जगह इसको. ही वाज अ वेरी स्वीट एडी बट स्टिल. एंड देयर वाज अ थिंग, सब मुझे बोलते थे, हो हीरो हीरोइन को गिरा मत देना. साइकोलॉजिकल प्रेशर था, गिरा मत देना.
1: तो आप कह सकते हैं आप हीरो बन गए हैं जो आप हीरो बनना चाहते थे।
0: हाँ, सो हेलो हम बोल रहे हैं, आई फेल्ट लाइक अ बिट हीरो.
1: हीरो
0: वाई एम आई वॉज जस्ट एन एक्टर, अ गुड एक्टर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स,
1: जी।
0: अलग अलग अलग 10 कैरेक्टर.
1: और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए,
0: अच्छा,
1: व्हाट्स नेक्स्ट?
0: दैट्स नॉट पप्पू प्रसाद. पप्पू प्रसाद पांडे का कोई
1: उस जोन से
0: अपकमिंग
1: बाहर
0: प्रोजेक्ट?
1: निकलना
0: पप्पू
1: पड़ेगा।
0: प्रसाद पांडे का भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है.
1: ओके
0: लड़की को भगाओ, लड़की और चाय पियो, वो पप्पू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो
1: अच्छा।
0: ज्यादा क्रिटिकल है. और मेरे भी एक दो है छोटे मोटे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पप्पूज बट है छोटे मोटे.
1: जी
0: सो आई एम फाइनली डेब्यूटिंग इन अ फिल्म एज अ
1: वाह,
0: लीड, एंड उसका
1: कंग्रेचुलेशंस
0: फाइनल शेड्यूल अभी आई थिंक अक्टूबर में होना चाहिए.
1: जी।
0: आई हैवन्ट गॉट द डेट्स बट दैट वुड बी माई डेब्यू
1: वाह,
0: अगेन.
1: दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, एक और बात की जाती है इंडस्ट्री में, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड।
0: राइट.
1: कहीं ब्रेक ले लिया, थोड़े दिन नजर नहीं आए तो
0: हाँ
1: इंडस्ट्री भूल जाती है आपको।
0: हाँ
1: सो पेन चाहिए या सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक एक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस कुछ भी करते रहो, बने रहो, साइट में रहो, नजरों में रहो, या थोड़ा सस्टेनेबल हमें रहना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो पिक एंड चूज करने की लिबर्टी होती है।
0: नहीं, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको करना है तो थोड़ा फेम तो चाहिए. फेम के बिना आप सस्टेन कैसे करोगे? लाइक यू नीड, क्योंकि फेम के साथ मॉनेटरी सक्सेस भी आएगा तभी. आई मीन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको, आपको पता है पीआर, मार्केटिंग, ये सब पे खर्च करना होता है बिकॉज दैट्स हाउ एन एक्टर स्टेज इन लाइम लाइफ. तो नहीं तो वो, नहीं तो फिर पापा को कॉल करो.
1: पापा को कॉल करो से याद आया कि अब पापा क्या सोचते हैं, पापा का विजन अब कैसा है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेकर? उस टाइम तो आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा। किसी भी पेरेंट के लिए होता है कि जॉब छोड़ दी, स्टेबल जॉब छोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने जिसका भरोसा नहीं है। सो अभी वापस जा सकते हैं? अभी लाइक हाउ डू दे सेलिब्रेट योर सक्सेस?
0: सी अगेन, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर, दे आर नेवर गोइंग टू टेल मी माई डैड इज नॉट गोइंग टू, बहुत अच्छा एक्टर है ये है, बट आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवेयर. ही वॉज टेलिंग समवन, हो सुनो हीरो के पापा हैं.
1: अरे वाह। सो आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको, आपके फादर को कह रहे हैं हीरो के पापा हैं, आपको हीरो कह रहे हैं, आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी नाउ? आपको लगता है कि हाँ वो मोमेंट आ गया जब ये सेलिब्रेशन लॉन्ग ड्यू था, बनता था, यू आर कंटेंट नाउ?
0: मैंने सोचा था मैं उतना खुश रहूंगा पर मैं अभी हैप्पी नहीं हूं. मैं आगे का सोच रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है अभी हैप्पी रहने का. सो समटाइम्स व्हाट यू वेट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ जब आ जाता है ना, तो शायद आपके पास वो वक्त नहीं होता है सेलिब्रेट करने का.
1: और कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो सब पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं बहुत डिटर्मिंड था कि मैं कर सकता हूं, उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं वो मन में रहता है, कसक सी रहती है मन में।
0: यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट. आई होप समडे इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द जर्नी. मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल, काश वो उस समय आए होते जब मैं डिप्रेशन में था, मैं फाइट किया, तब काश आए होते कॉन्ग्रेट्स यू वॉन योर फाइट अगेंस्ट दैट डिप्रेशन, कॉन्ग्रेट्स यू टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर जर्नी. काश ये मैसेजेस आए होते. ये मैसेजेस भी अच्छे हैं, आई फीलिंग गुड, पर काश उस समय भी आए होते.
1: तो अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तब कैसा लगता है?
0: वो गलत है, गलत है, उसको पता नहीं
1: अच्छा, उसको
0: है.
1: पता नहीं है। यहाँ सब ठीक है, उसको पता नहीं है।
0: क्यों यार, जाओ थोड़ा स्टडी करके
1: ग्रेट, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है से
0: आओ.
1: अपने आप को खुश रखने के लिए,
0: राइट
1: एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हाउ डू यू सी योर सेल्फ इवॉल्विंग एज एन एक्टर, लेट्स से ज्यादा लंबा टाइम ही लेते, 3 ईयर्स डाउन द लाइन,
0: क्या 3 ईयर्स डाउन द लाइन तक तो आई डोंट
1: फोर्टीन
0: नो.
1: ईयर्स की ऑलरेडी जर्नी हो चुकी है।
0: हाँ, 3 ईयर्स डाउन द लाइन.
1: चलिए 5 ईयर्स कर देते हैं।
0: हाँ, 5 ईयर्स. सी आई टेल यू वन थिंग, एज एन

0: फैक्ट है मैं रोज ग्रो करने वाला हूँ क्योंकि मैं रोज नया एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ. बट इफ यू मीन द सक्सेस एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट. अगर मैं वर्ड्स में पुट करूँ, वर्ड्स लिमिटेड है, इट्स गोइंग टू बी डिफाइन. फॉर मी इट्स अ फीलिंग. तो मुझे पता है, मुझे फील होता है, लेकिन उसको मैं वर्ड्स में पुट करके छोटा नहीं करना चाहता. सो फॉर मी इट्स दैट दैट इज द सक्सेस विच इज अनडिफाइंड, विच इज मेड ऑफ यू नो नॉट जस्ट अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फेलियर्स, जर्नी. एंड फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही यूनिक है, वो डिफरेंट है आपके फेलियर से. सक्सेस का जनरली लोग एक मापदंड दिए हुए कि ये है सक्सेस. फेलियर्स का कोई मापदंड नहीं है, सबके अलग अलग फेलियर है.
1: तो चलिए, आज आप एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं, और आगे सक्सेस मिलेगी. हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, अगर अगर एक्टर नहीं बन पाते इतनी यू नो स्ट्रगल के बाद भी, तो क्या वापस इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेते?
0: क्रिकेटर बन जाता. हाँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ. मे बी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, स्पिन कराना पड़ता.
1: राइट.
0: तो वो बन जाता.
1: चलिए, यानी आपने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था.
0: हाँ हाँ, क्रिकेटर तो मैं मेरा पहला ऑप्शन था.
1: okay.
0: फिर मुझे पता चला मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो फिर
1: एक्टिंग कर लेते.
0: एक्टिंग कर लेते लाइक एनी इंडियन किड, क्रिकेट एंड फिल्म.
1: या सो हमारी कंट्री में क्रिकेट और फिल्म बहुत पॉपुलर है, सबकी पहली पसंद यही रहती है.
0: right.
1: लेकिन सबकी पहली पसंद उनकी पहली जॉब बन जाए जरूरी नहीं है. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, मुंबई आते हैं, या मैं कहूंगी कि दिल्ली में भी आते हैं, यू नो, कि हम एक्टिंग करेंगे, हम थिएटर ज्वाइन करेंगे, और कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे, आपकी जर्नी से वो क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या टेक अवेज रहने चाहिए जो आपने खुद महसूस किया?
0: देखिए, मेरे जर्नी से एक्चुअली मुझे पता है कोई नहीं सीखने वाला है, कोई दूसरे के जर्नी से सीखता नहीं है. मैं बहुत चीज़ें बोल दूंगा, बट कोई कोई दूसरे के जर्नी से एक्चुअली सीखता नहीं है. गलतियां करना ज़रूरी है. मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एनालिसिस कर लो. अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, और आप वो छोड़ के यहाँ आने का कर रहे हो, आप कॉलम बनाओ, आप पेपर पेन लो, लिखो, शॉर्ट एनालिसिस करो. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है. फिर दो कॉलम बनाओ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन अचीव, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम आई कैन लूज. आप अब बिलीव करो कि वो मैक्सिमम आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लियो, और बिलीव करो जो मैक्सिमम लूज करना चाहते हो वो भी कर लियो. अब यहां से सोचो, ये अचीव करके, कि जो आप लूज करना चाहते हो कर लिए हो, क्या अब आपको ये अचीवमेंट वर्थ इट लग रहा है?
1: राइट.
0: अगर आपको वही वर्थ इट नहीं लग रहा है, तो इसमें घुस क्यों रहे हो? प्लानिंग तो बाद की बात है. लोग ये सब करने के बाद फिर देखते हैं, अरे क्यों कर लिया यार, पर टाइम निकल गया ना.
1: सबके सपने भी होते हैं ना, कि हमें बहुत जल्दी बड़ा ब्रेक मिल जाएगा. आपने भी सोचा था. प्रोड्यूसर्स खड़े हैं बाहर लाइन लगा के.
0: बताया, उनकी गलती, मेरी गलती.
1: आपके केस में तो उन्हीं से गलती हो गई. लेकिन अब कोई सोचे कि सीधा सिल्वर स्क्रीन पर ही आना है, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आज तक है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर है, ओटीटी है, फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं. सो कहाँ से शुरुआत करे एक एक्टर? एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, लाइक You name it and they have it.
0: अब तो बहुत चीजें बहुत आसान हो गई है. अब तो कास्टिंग कॉल्स ना आप घर बैठे भी भेज सकते हो. आप घर पे ही बना के भेज सकते हो. तो अब चीजें बहुत आसान हो गई है ये बनना. बट आपको एक्टिंग की शुरुआत करनी है ना, तो पहले खुद में करो.
1: घर पे एक्टिंग करो.
0: घर पे एक्टिंग करो, और अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो बाथरूम में के अंदर बंद करके आईने के सामने.
1: ओके. तो यहाँ से शुरुआत कर देनी
0: चाहिए,
1: और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करें.
0: हाँ,
1: कि थिएटर करना है.
0: थिएटर बात की बात है. अच्छा. पहले आईने के सामने अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हो या नहीं.
1: और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं. आपकी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपके एक्सप्रेशन पे वर्क करना है. कहीं कहते हैं कि डांस सीखना बहुत जरूरी है, उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर से बहुत एक अच्छा असर पड़ता है, आपके पोस्चर पे आपकी ग्रेस आती है. सो कुछ ऐसा है जो साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब अपना होमवर्क कर ही आते हैं.
0: मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं अभी डांस सीख रहा हूँ.
1: ओके. कौन सी डांस फॉर्म सीख रहे हैं आप? बॉलीवुड?
0: बॉलीवुड. बॉलीवुड. सी, मैं डांस तो करता हूँ ना, तो मैं एक्सप्रेशन तो दे देता था.
1: राइट.
0: पर मेरा बॉडी वैसे नहीं मूव कर रहा था. सो अब सोच रहा हूँ उसे भी थोड़ा बेटर कर लूँ. सो आई एम लर्निंग बॉलीवुड, लर्न अ बिट ऑफ कंटेम्पररी, थोड़ा बहुत सब कुछ सीख रहा हूँ डांस.
1: वेल, दैट्स वेरी नाइस, और एक बहुत ही अच्छी

0: दवा भी खा सकते हो और दवा खाने से वो ठीक
1: वो
0: हो
1: ठीक हो
0: जाएगा।
1: जाएगा। वेल दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर कि ये जिस तरीके से आपने एक्टिंग सीखी और भी लोग सीखे, और अपने ऑफ कोर्स अपने आपने बोला क्योंकि अपने एलिमेंट्स आएंगे
0: हाँ
1: तो वो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे।
0: राइट।
1: आपकी इस जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहती हूँ, और आप
0: ओके
1: यहाँ आए, आपने टाइम दिया और इतने कैंडिड तरीके से अपनी बातें शेयर करी। थैंक यू सो मच। इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, स्पेशली पप्पू प्रसाद पांडे जी।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरी वन वॉचिंग। थैंक यू टू पीबी वेव्स। थैंक यू टू आकाशवाणी। एंड इट हैज बीन अ प्लेजर। इट्स एन ऑनर बीइंग हियर।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये पॉडकास्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष

भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। संडे, द डे ऑफ पीस एंड हार्मनी, इज नाउ जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स अवे, सो इट्स ओनली राइट दैट वी सेट द टोन फॉर द डे अहेड विद ट्यून्स दैट आर चिल, लेड बैक एंड फुल ऑफ ग्रूव। And that's exactly what we are bringing tonight on our favorite show of the week, In the Groove. Here's your host Shubhankar, back again at your service to bring you just the finest tunes for the night to get you in the groove. So sit back, relax, grab a cold glass of your favorite beverage and get ready for the Moonlight Drive.

0: So that was Radiohead with Weird Fishes Arpeggi. It's time for the quick break, dear listeners. You're listening to In the Groove.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक टू इन द ग्रूव Only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. The last track we played were Feel by Robbie Williams and Weird Fish's Arpeggi by Radiohead. Up next, we are shifting the vibe from late night introspection to feeling free, fearless and liberated. Here's Pork and Beans by Weezer.

0: So that was John Mayer with Bigger Than My Body. Well, it's time for another short break, dear listeners. You're listening to In the Groove.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: And with that, dear listeners, we have reached the end of our program In the Groove, only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Thank you to all the listeners who joined us at this hour. We wish you blue skies, golden sunshine, and a glorious Sunday ahead. It's your host, Shubhankar, signing off with the last track of the night. Here's Bedtime Story by Madonna.

नमस्कार, लीजिए पेश हैं इस हफ्ते इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने हाइड्रो पावर सुरंग का जायजा लिया। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को

प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज से लागू हो गई है। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। और अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के प्रमुख समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। दोस्तों, खूबसूरत एहसासों का प्रोग्राम रंगे महफिल। कुछ बिछौड़े बहुत ही शांत होते हैं, ना कोई शिकायत ना कोई आखिरी इल्जाम, मगर धीरे धीरे दो लोग अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते अलग हो जाने से यादें तो अलग नहीं होती ना। कभी कोई जगह, कभी कोई मौसम, कभी कोई धुन और कभी बीता हुआ समय फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या नाम देंगे उसको, कैसे भुलाएंगे उस वक्त को और कैसे कद्र नहीं करेंगे उस एक लम्हे की। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल।
2: दोस्तों, आप पेश खिदमत है कलामे मिर्ज़ा ग़ालिब।

बहुत ही खूबसूरत गजल मिर्जा गालिब ने जैसे दिल निकाल कर रख दिया इस गजल में। वैसे दोस्तों, यादों की बिना अपनी एक आदत होती है, ये तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं। यादें तो तब आती हैं जब हम उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, और फिर कुछ पल के लिए हम वर्तमान से निकलकर अपने ही अतीत में आ तैरते हैं। शायद इसी को यादों का जादू कहते हैं। हर इंसान के भीतर एक कमरा ऐसा जरूर होता है जहां वो किसी को आसानी से आने नहीं देता। यहां उसकी सबसे निजी यादें होती हैं, उसकी कमजोरियां होती हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं होती हैं, और कभी कभी कोई एक शख्स जो है वो उस कमरे तक पहुंच ही जाता है। फिर वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वो हमारे भीतर का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाता है। एक बात बताइए, आपने कभी महसूस किया ऐसा?

0: उम्मीद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, शायद हम सभी ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जिसे हम भूल चुके हैं वो अचानक किसी मामूली सी बात में फिर याद आ गया। एक खुशबू, एक रास्ता, एक मौसम, यादें बहुत कम सामान लेकर आती हैं, लेकिन जाते जाते ना वो दिल भर जाती हैं। कुछ ऐसी ही यादें, कुछ मुलाकातें

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त 11:00 बजे मन की बात आकाशवाणी।

नी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, तन्हाई हमेशा दुख नहीं देती, कभी कभी तन्हाई खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय होता है। जब आसपास कोई आवाज नहीं होती तब सिर्फ भीतर की आवाज सुनाई देती है, और शायद यही हमें अपने कुछ पुराने जवाब भी मिल जाते हैं। आज की अगली गजल उसी खामोश तन्हाई के नाम।

ये आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 12 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयेव्स ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये 4थी यात्रा है। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीक दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल में गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई एहसास बहुत धीरे धीरे हमारे करीब आता है और फिर एक पल ऐसा आता है जब लगता है अरे ये क्या हो गया, फिर कब किसी के नाम हो गया पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा ही मासूम सा एहसास अपने भीतर समेटे है फिल्म स्वामी का ये खूबसूरत सा गीत। इसमें प्यार किसी बड़े वादे की तरह नहीं बल्कि सावन की हवा झूमते झूमके और मन में उठती मीठी सी बेचैनी की तरह महसूस होता है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे उतरते हैं कि उनकी मौजूदगी के लिए उन्हें हर पल हमारे सामने होना जरूरी नहीं होता। वो दूर होकर भी दिल के बहुत पास रहते हैं। उनकी बातें याद आती हैं, उनकी मुस्कुराहट याद आती है, और कभी कभी तो यूं लगता है जैसे खामोशी में भी उनकी आवाज सुनाई दे रही हो। शायद सच्चे लगाव की यही खूबसूरती है। फासले चाहे जितने हों, दिल अपनेपन का रास्ता ढूंढ ही लेता है। और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज देता है फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत, जिसे अपनी खूबसूरत ही आवाज में गाया है किशोर कुमार ने। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: दोस्तों, कभी किसी को देखते ही दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे उस एक चेहरे में दिन भर की सारी थकान और सुकून छुपा हो। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नज़र ही बहुत कुछ कह जाती है। प्यार शायद यही होता है, किसी को देखना और अचानक दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगने लगे, उसकी मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लेना और उसकी मौजूदगी को अपने दिल का सबसे प्यारा हिस्सा मान लेना। तो आज की इस खूबसूरत शाम में सुनते हैं एक ऐसा ही मासूम सा नगमा जिसमें मोहब्बत आंखों से होकर दिल तक पहुंचती है, और ये गीत है फिल्म तुम्हारे लिए का आवाज़, लता मंगेशकर की।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि दर्द भी जिंदगी का एक रंग है, और कभी कभी यही दर्द हमें अपने भीतर झांकना, अपनी भावनाओं को समझना और फिर से मुस्कुराना सिखाता है, क्योंकि हर दर्द अपने साथ एक कहानी लाता है और हर कहानी में आगे बढ़ने की एक वजह भी छिपी होती है। तो आइए संगीत की इसी भावुक दुनिया में कुछ पल ठहरते हैं और सुनते हैं फिल्म कर्ज का ये खूबसूरत नगमा, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 31 मिनट और 23 सेकंड हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस वक्त जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कहते हैं ना, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसे आने के लिए कोई दस्तक नहीं चाहिए, वो बस आता है और दिल को एहसास करा देता है कि अब किसी की मौजूदगी हमारी खुशियों का हिस्सा बन चुकी है। तो आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है शंकर हुसैन।

कभी कभी जिंदगी को बहुत गंभीरता से जीने के लिए बजाय बस थोड़ा सा मुस्कुरा लेना भी जरूरी होता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब दिल कहता है छोड़िए सारी फिक्र, आज बस इस पल की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो चलिए थोड़ी सी फुर्सत चुराते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और संगीत के इस रंगीन सफर में शामिल हो जाते हैं। इस खूबसूरत से गीत के साथ फिल्म कुर्बानी का ये गीत है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

जिंदगी भी एक खूबसूरत बाग की तरह है, जहां हर मौसम अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते झड़ते हैं, और कभी हवाएं पुरानी यादों को छूकर निकल जाती है। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर बदलते मौसम के बीच हम जीना, मुस्कुराना और उम्मीद रखना ना छोड़ें। जो पल आज हमारे पास है उसे पूरी शिद्दत से महसूस करें, क्योंकि गुजरता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। तो आइए आपको सुनवाते हैं शर्मीली फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की खूबसूरत बातें किसी शोर में नहीं बल्कि उस खामोशी में सुनाई देती है जहां हम बस आसमान को देखते हैं और अपने मन की सारी बातें उससे कहने लगते हैं। नीला आसमान, चांदनी रात और दिल में किसी अपने की याद, बस इतना ही तो चाहिए एक खूबसूरत एहसास को जन्म देने के लिए।

और दोस्तों, चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि हम आने वाले कल को जान नहीं सकते और बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकते। हमारे पास तो बस ये पल जो अभी हमारे सामने हैं, इसलिए जिंदगी को सिर्फ आने वाले कल की चिंता में नहीं बल्कि आज की खूबसूरती में जीना चाहिए। छोटी सी खुशी हो, अपनों का साथ हो या कोई प्यारी सी याद, हर पल को महसूस करना ही तो जिंदगी का हुनर है। तो आज कुछ पल ठहरिए, मुस्कुराइए और इस पल को पूरी तरह से जी लीजिए। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया फिल्म वक्त का ये गीत। और अब मुझे यानी अर्चना बिसारिया को जीरो आर शो समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीक दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:42 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।

दो बजे हैं, एफएम रेनबो पर आइए सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शवकत मिर्जोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक सफल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं और अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:02 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तीन बजे हैं, आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर में पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बूचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं और अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को समाप्त करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 3:51 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में कहा कि जो हिंदू ये मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया।

0: घायल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह

11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद की सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। यूक्रेन के बुचा जिले में रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी कामगारों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों से घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।